मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 अगस्त 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56:40 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्य

0: देशवासियों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे हैं। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जाँच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत

0: आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700142424।
1: ओ 8700142424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700042424 पर।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। जिसके सिर पर हाथ महादेव का हो, उसके जीवन में फिर डर कैसा। जिसके साथ स्वयं भोलेनाथ हो, उसके लिए मुश्किलों का सफर कैसा। शिव केवल एक नाम नहीं, शिव तो विश्वास है। शिव केवल देव नहीं, शिव तो स्वयं जीवन का आधार है। नीलकंठ बनकर संसार का विष पी लेने वाले, जटाओं में गंगा को धारण करने वाले, माथे पर चंद्रमा और शीश पर गंगा धार रखने वाले, त्रिशूलधारी डमरू वाले कैलाशपति भगवान शिव अपने भक्तों के लिए करुणा और कृपा के सागर हैं।

राम नाम की ज्योति जले तो अंधियारा मिट जाता है, जिस हृदय में राम बसे वो जीवन धन्य हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनके जीवन में सत्य है, जिनके आचरण में मर्यादा है और जिनके हृदय में करुणा है और जिनके नाम में ही भक्तों के लिए अपार शक्ति है, प्रभु श्री राम के जागरण का यह भाव केवल प्रभु को जगाने का भाव नहीं, बल्कि हमारे भीतर सोई हुई श्रद्धा, सद्भावना और मानवता को जगाने का संदेश भी है। तो आइए मन को राममय कर लीजिए, भावों को भक्ति में डुबो दीजिए और सुनिए प्रभु श्री राम को समर्पित ये मधुर भजन।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। माँ के दरबार में जो सिर झुकाता है, माँ उसके जीवन की हर राह सजाती है। जिसे मिल जाए माँ की ममता का सहारा, उसके लिए हर पल बन जाता है प्यारा। जहाँ पहुंचकर मन को सुकून मिलता है, जहाँ आँखें अपने आप नम हो जाती हैं और हृदय से बस यही भाव निकलता है, माँ अब सब कुछ आपके चरणों में है। माँ के द्वार की महिमा ही ऐसी है। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई अपनी पीड़ा लेकर, तो कोई सिर्फ माँ के दर्शन की चाह में आता है। लेकिन माँ के दरबार से लौटता हर भक्त अपने साथ विश्वास और आशा लेकर लौटता है।

कृष्ण की मुरली हमें अपने भीतर झांकने का संदेश देती है। बांसुरी के भीतर अपना कोई स्वर नहीं, ये पूरी तरह खाली है और शायद इसी खालीपन के कारण कृष्ण के अधरों पर आकर वही बांसुरी संगीत बन जाती है। हमारा मन भी इतना ही निर्मल और अहंकार से खाली हो जाए तो शायद

0: राधना आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए विचार बिंदु, आज सुनिए चंद्रशेखर आजाद के विचार।
1: ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का लंबा इतिहास है। इस मुक्ति संग्राम में सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन का अपना अलग संगठन था। इसमें कई तेजस्वी पुरुषों ने नेतृत्व किया। चंद्रशेखर आजाद उन इनगिने व्यक्तियों में थे जो ब्रिटिश सत्ता के महान शत्रु कहे जाते थे और जिनको क्रांतिकारी संगठन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी का सेनापति मनोनीत किया था। आज़ाद अपने दृढ़ संकल्प, दूरदर्शी विचारों और कूटनीतिक गतिविधियों के कारण कभी ब्रिटिश हुकूमत की गिरफ्त में नहीं आए और उनकी ये पूर्व घोषणा थी कि ब्रिटिश शासन मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकता। 29 फरवरी 1931 को जब वे तत्कालीन कंपनी बाग इलाहाबाद में 40 मिनट तक पुलिस सुपरिंटेंडेंट नॉट बाबर और उसके साथियों से युद्ध करते हुए शहीद हुए, तब उनकी उम्र 25 वर्ष भी नहीं थी। अंतिम एक गोली जब उनके पास शेष रही तब उन्होंने उसे अपनी कनपट्टी में मारकर स्वयं ही मृत्यु का वरण किया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनके पास जाने में नट बाबर को डर लग रहा था कि कहीं आज़ाद जीवित होकर मुझे गोली ना मार दें। उसने उनके पैर के तलुए में गोली मारकर उनकी मृत्यु होने का निश्चय किया। यह आज़ाद की आज़ादाना मृत्यु थी। आज़ाद साधारण ब्राह्मण परिवार के बालक थे। उनके पिता पंडित सीताराम मूलतः उन्नाव जिला के रहने वाले थे पर अलीपुर स्टेट मध्य प्रदेश में बगीचे के माली की नौकरी करते थे। वहीं पर आज़ाद का जन्म हुआ था। आज़ाद वहां से काशी में संस्कृत पढ़ने आए थे। वहीं उन्होंने आंदोलन में भाग लिया और उनको 15 बेतों की सज़ा मिली। तब उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी। तभी से एक वीर बालक आज़ाद के रूप में उनका नाम हुआ। मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद कहा था और पिता का नाम बताया था स्वाधीन। आज़ाद अपने क्रांतिकारी दल के मुखिया थे। इस नाते ये अपने दल के सभी सदस्यों का बड़ा ध्यान रखते थे। उन्होंने प्रत्येक सदस्य के लिए प्रतिदिन उस समय के 6 पैसे मात्र जलपान की अनुमति दी थी। साथ ही बिना दल की बैठक द्वारा प्रस्तावित किए गए किसी कार्य को करने की अनुमति किसी को नहीं थी। दल के सभी सदस्य उनको हृदय से अपना नेता मानते थे। इन सदस्यों में ही सरदार भगत सिंह, भगवती चरण, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, रामकृष्ण आदि देशभक्त नौजवान थे। एक विशेष बात थी कि अपने दल में आज़ाद की शिक्षा सबसे कम थी। वे एक कट्टर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। काशी में थोड़ी संस्कृत पढ़ी थी परंतु वे तीक्ष्ण बुद्धि, दृढ़ संकल्प, चरित्र तथा शील से युक्त थे। उनमें देश के प्रति त्याग की उद्दाम भावना थी। देशभक्ति तथा वीरता कूट कूट कर उनमें भरी हुई थी। आज़ाद के विचार प्रगतिशील थे। वे जब दल के नेता बने तब क्रांतिकारी संगठन में स्त्रियों का भी प्रवेश स्वीकार किया गया। भगवती चरण वोहरा के साथ उनकी पत्नी दुर्गा भाभी ने भी क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय भाग लिया था। आज़ाद शाकाहारी थे पर उनमें रूढ़िवादिता नहीं थी। छुआछूत की भावना से वो दूर थे। मितव्ययिता उनका आदर्श था। आज़ाद का व्यक्तित्व दुर्धर्ष था। ब्रिटिश हुकूमत का कोई भी पुलिस या अधिकारी उनको देखकर उनकी ओर आंख उठाकर देख नहीं सकता था। 20वीं शती के 3रे, 4थे और 5वें दशक में पूरे भारत में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का नाम आज़ादी का संदेश देता था। इन नामों ने जनता के दिलों में आज़ादी की आग जला रखी थी। ऐसे महान देशभक्तों के सम्मान में ही किसी कवि ने कहा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा।
0: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे चंद्रशेखर आजाद के विचार, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुने डॉक्टर प्रेमचंद्र से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत, पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व।
1: किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन का काम करते हैं, और किसान भाई ये जानते हैं कि चाहे मनई हो चाहे पशु हो, सबके जीवन में आहार का बहुत महत्व है। आहार में भी तमाम तरह के तत्वों का भी जरूरत पड़ता है, उसी एक तत्व होता है खनिज तत्व। तो पशु आहार में खनिज तत्व का काम महत्व है बतावे खातिर आज विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर प्रेमचंद जी आए बटन है, जो उनकी जानकार मनई है। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत बा। एक विशेषज्ञ के नाते हमारे किसान भाई इनके बतावें कि पशु आहार में खनिज तत्व का क्या महत्व है, ये खनिज तत्व होत का पहले तो ये बताएं आप।
2: खनिज तत्व एक पदार्थ है जो कि मिट्टी से
1: जी जी
2: या हमारी धरती से ही मिलता है, और वो चारे में जो है कि पाया जाता है। कहीं कहीं की मिट्टी में कुछ तत्व ऐसे जो नहीं मिलते हैं, कुछ कुछ की मात्रा ज्यादा हो जाती है
1: जी जी,
2: तो कमी की वजह से बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और ये दो तरह के होते हैं,
1: कौन
2: जिसको हम जिसे विभाजित करते हैं माइक्रो और माइक्रो के रूप में।
1: अच्छा,
2: तो माइक्रो में जो ज्यादा मात्रा शरीर में जरूरत पड़ती है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है और सल्फर है।
1: अच्छा,
2: और दूसरा जो है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म मात्रा में शरीर में ये रहता है जो है, लेकिन इसकी भी बहुत जरूरत है शरीर में, शरीर को सुचारू रूप से चलाने।
1: तत्व का अपना अलग अलग महत्व है।
2: तो जो माइक्रो में है वो कॉपर है, सेलेनियम है, जिंक है, कोबाल्ट है, आयरन है, आयोडीन है, मैग्नीज है और मॉलिब्डेनम है जो है।
1: अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप कहा है कि मतलब कि जौन भी चारा किसान भाई पशु के खियावत है ना, तो भाई वो चारा कहूँ न कहूँ जमीन से ही तैयार कर जाता था। जौन जमीन में जौन तत्व रहा था वो तत्व जौन बस चारा में आ जाता, वो चारा खियाए से वो तत्व पशुअन के मिल जाता है। तो अब आप बताएं कि एक एक कैके कौन कौन तत्व का महत्व बांटे है, काहे जरूरी।
2: जैसे अब हमने जैसे बताया कि माइक्रो मिनरल, तो माइक्रो में कोबाल्ट होता है।
1: अच्छा अच्छा,
2: कोबाल्ट बहुत ही जरूरी है, वो चारे से ही जो है शरीर में पहुंचता है। और दूसरा चीज, अगर कहीं से विटामिन B12 जो कि खून के रक्त को बनाने के लिए बहुत जरूरी विटामिन है जो है, अगर उसकी कमी हो गई तो उसकी वजह से भी कोबाल्ट की कमी हो जाती है।
1: अच्छा,
2: तो इससे और अगर इसकी कमी हो गई तो बीमारी क्या क्या हो जाएगी जानवर में, चारा नहीं खाएगा, शरीर का वजन घटता चला जाएगा जो है, और प्रजनन क्षमता जो है कि वो घटती चली जाएगी।
1: तो डॉक्टर साहब ये जानकारी चाहे आप, कब ये कोबाल्ट जो तत्व बांटे हैं कौन से चारा खियाए में मिल जाते पशु के?
2: चारा जो है कि आपको अधिकतम हरे चारे के रूप में जो भी लेंगे, अच्छा, बरसीम, अच्छा, जई, ये सब सारी चीज हरे चारे के रूप में वो तत्व आपको मिल जाएगा।
1: अच्छा, अगर ये पशुअन खियावत बांटे तो ये तत्व की कमी ना हो।
2: हाँ,
1: और
2: दूसरा है कापर है, तो कापर में ये भी जो है चारे के खाने चारे में न मिलने की वजह से ये भी होता है।
1: जी जी,
2: पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है कि दो और तत्व हैं इसके साथ साथ, मॉलिब्डेनम नाम है एक, और दूसरा सल्फर है। अगर ये चारे में किसी वजह से ज्यादा पहुंच गए जिस मिट्टी में
1: जी जी,
2: और चारे में, तो ये कापर की कमी कर देते हैं। कारण कि ये दो ये सब एक साथ रिएक्शन करके एक बड़ा सा जो है कि तत्व बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो कापर जानवर चारे में खा रहा है तो उसको पचने नहीं देंगे, वो रोक देते हैं।
1: अच्छा,
2: तो इस वजह से और इसकी कमी से सबसे खतरनाक बीमारी क्या होती है कि क्रॉनिक डायरिया बोलते हैं, वो डायरिया जो किसी भी मेडिसिन से जल्दी बंद नहीं होती है, और इससे जो है कि पशु जो है कि मर जाता है।
1: अच्छा,
2: और उसी जानवर में या उसी पशुओं में ज्यादा होता है जिनको, जैसे छोटे जो बच्चे हैं जिनको हम चरा करके पालते हैं।
1: अच्छा,
2: जो चराने पर रहते हैं अगर उस एरिया में अगर कमी है उस तत्व की तो सभी में हो जाएगा, और सभी में बीमारी जो है कि वो होती चली जाती है।
1: अच्छा,
2: तो कुछ तो जानवर डायरिया से मर जाते हैं जो है, और जो है कुछ

0: में ऐसी समस्या आ जाएगी, वो सही से खड़े नहीं हो पाते हैं।
1: जी जी
0: हाँ,
1: जी
0: और इसमें प्रजनन क्षमता की, जब बड़े हो जाएंगे प्रजनन क्षमता की कमी आ जाती है जो है,
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: ये सब समस्याएं कापर की वजह से हो जाती है। तीसरा
1: अच्छा।
0: है आयोडीन। आयोडीन, जैसा कि आयोडीन का बहुत बड़ा जो है कि
1: जी जी जी
0: एक तरह से रोल है, बहुत बड़ा रोल है आयोडीन का, जो कि बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: आयोडीन पहला चीज़ कि चारे के मतलब अगर खाते हैं तो चारे में अगर कमी हो गई तो उससे हो सकता है। दूसरा कारण है कि एक पौधा ऐसा, जैसे कि आप सरसों वाली फैमिली का ले लीजिए, सरसों का अगर वो ज़्यादा खिला देते हैं तो वो भी जो है कि आयोडीन की कमी कर देता है जो है।
1: अच्छा।
0: और उससे होता है क्या है कि एक घेंघा रोग होता है, जो कि खासतौर से आदमी में भी होता है, लेकिन ये पशुओं में भी हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, वो शरीर के सारे जो है उपापचय मेटाबॉलिज्म की क्रिया को प्रभावित कर देती है।
1: अच्छा।
0: तो और गाय में क्या करेगा, जो दूध देने वाली गाय है उसके जो है कि दूध के मतलब पैदा कम कर देगा,
1: प्रभावित
0: प्रभावित
1: कर।
0: करेगा।
1: जी
0: और जो सांड है, जिसे हम क्रॉस कराते हैं, उसमें जो लिब्डो मतलब कि सहवास करने की क्षमता घटा देता है जो है। और जो गाय जो है कि समय पे जो गर्म मतलब 20 से 21 दिन में उनका ऋतु आता है, साइकिल आती है, वो सो नहीं करेंगी,
1: अच्छा।
0: दिखाएंगे नहीं, दर्शाए। और ये बारसन, जिसे कि जो गाभिन पशु है, उसमें जो है कि गर्भपात की जो है कि दिक्कत जो है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो है
1: आयोडीन का कमी।
0: आयोडीन की कमी कारण। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चा समय से पहले जो है कि बच्चा आ जाता है और बाहर निकलता है, वो भी मर जाता है जो है। तो इसका बहुत जो है कि ज़्यादा रोल रहते हैं। और उसके बाद एक आता है लौह तत्व, जिसको आयरन अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन खास तौर से हम बताएंगे जो है कि जो सूकर के बच्चे हैं, जिनको पिगलेट भी हम बोलते हैं, उसमें लोहे की कमी बहुत ज़्यादा, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उसमें सांस लेने की जो है दिक्कत हो जाती है, और अचानक जो है कि मौत हो जाती है बच्चों की जो है। और इसमें भी गर्भपात की जो है कि जो बड़े मतलब सूकर हैं, गर्भपात की जो है कि शिकायत ज़्यादा आती है इसकी वजह से।
1: जी।
0: उसके बाद आता है नमक जो है। नमक को भाई सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, उसकी वजह से अगर उसकी कमी हो गई नमक की,
1: जी
0: तो बार बार जानवर पेशाब करेगा, बार बार प्यास लगेगी उसको, और नमक चाटने की कोशिश करेगा वो जो है। और एक बीमारी होती है पाइका। पाइका बीमारी वो होती है कि जो न खाने वाली चीज़ है वही जानवर खाने की कोशिश करता है,
1: अच्छा
0: जैसे
1: अच्छा
0: लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, कपड़ा हो। और जिस जानवर में ये कमी हो गई है वो यूरिन पेशाब बार बार पीने की कोशिश करता है अपना,
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: बगल में जो जानवर खड़ा रहेगा उसको चाटने की कोशिश करेगा जो है,
1: हाँ।
0: और जो है कि जानवर को भूख नहीं लगेगा, और वजन भी घटता जाएगा, दूध जो है कि घटता जाएगा, और बार बार पेशाब करेगा,
1: जी
0: और
1: जी जी
0: जिसमें पोटेशियम ज़्यादा जो है कि सोडियम, ये नमक कम निकलेगा, पोटेशियम की मात्रा जो है कि ज़्यादा निकलती जाएगी।
1: अच्छा।
0: और
1: और
0: एक उसके बाद आता है कि जिंक जो है, जिंक का मेनली सूकर में ये समस्या आती है जो है, सूकर में उसके पीठ पे मोटापा आ जाएगा, कान में मोटापा आ जाएगा, पूंछ में मोटापा आ जाएगा जो
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: और लाइनिंग पड़ जाती है, फट जाता है, तो उसका जो कि सुंदरता खराब हो जाती है जो है।
1: अच्छा। और भैया
0: और आप आ जाइए इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण हम बताएंगे, सेलिनियम जो है।
1: जी जी
0: सेलिनियम का अकेले कोई रोल नहीं होता है, वो जो है विटामिन ई के साथ मिल करके, अगर उसकी कमी हो गई दोनों के साथ साथ, तो बहुत समस्याएं आती हैं। जैसे कभी कभी जानवर तुरंत ही एक्सरसाइज करा के, हल जोत के आए, तुरंत जानवर आया घर पे, गिरा, तुरंत मर गया जो है। और कभी कभी जो जानवर फीमेल मादा है जो है वो बच्चे देती है, तो उसका जो आंवर, जिसको बोलते हैं खेड़ी भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो फंस जाता, वो नहीं निकलता है।
1: जी जी
0: और एक थनैला एक बीमारी होती है,
1: जी जी
0: उसके उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है,
1: सेलेनियम कमी
0: सेलेनियम
1: से।
0: कमी जो है।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम जानना चाहें कि जितना भी तत्व आप बताएं ना, ठीक है, ये सब तत्व चारा से किसान भाई के मिलते हैं, वातावरण क्षेत्र के हिसाब से कहूँ ये तत्व ज़्यादा रहा था, कहूँ कम रहा था, जैसे तमाम तरह के बीरामी पैदा होते हैं, तो एक का एक उचित उपाय बाटे कि का करें किसान भाई कि ये तत्व की कमी ना हो पावे,
0: हाँ, ये
1: कौन
0: पह
1: बात पर ध्यान दें।
0: उस बात पर ध्यान दें कि जो चारा जो अपना हम बोते हैं जो है, उसको अगर नज़दीकी कोई KVK वगैरह है या लैब प्रयोगशाला है, तो वहाँ ले जाकर के मिट्टी का जो है कि थोड़ा सा
1: जांच करा
0: जांच करवा लें,
1: लें।
0: उसमें देख लें क्या क्या हमारा जो है कि मात्रा सही है कि
1: जी
0: नहीं है,
1: जी
0: तो उसको फिर चाहे तो अलग से मिला सकते हैं, नहीं
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: फिर पशु को
1: जी जी
0: उसको
1: अलग से,
0: चारे के साथ अलग से देना
1: जैसे
0: पड़ेगा। जैसे
1: आयोडीन अलग से दही से
0: हाँ,
1: कहते
0: आयोडीन अलग
1: हैं,
0: से दे सकते हैं,
1: नमक अलग से
0: नमक
1: दही से
0: अलग दे
1: कहते
0: सकते हैं,
1: हैं।
0: लोहा अलग से, आयरन अलग दे सकते हैं, कॉपर दे सकते हैं, कोबाल्ट दे
1: या
0: सकते हैं,
1: संतुलित आहार बनाए
0: संतुलित
1: के
0: आहार
1: उनमें
0: बना
1: दे
0: के दे
1: सकते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं।
1: जी जी
0: और एक बहुत बड़ा, एक और मुख्य रूप से है कैल्शियम है। कैल्शियम कमी से क्या
1: जी
0: होता है कि एक तरह का बुखार होता है, जो कि इस बुखार में टेम्परेचर नहीं आता है,
1: जी
0: तापमान
1: जी
0: नहीं बढ़ता है, बल्कि घट
1: जी
0: जाता है।
1: जी जी
0: ये जैसे बच्चा देने के 48 घंटे के अंदर ही होने के चांसेस रहते हैं, और 10 दिन तक जो है कि हो सकता है। दस दिन तक
1: कैल्शियम की भी कमी अलग से दे के पूरी की जा सकता है,
0: और उसके साथ एक फास्फोरस भी है, तो ये दोनों का साथ साथ चलता है।

0: जी। हम कहे डॉक्टर प्रेमचंद जी, आप आयन पशु आहार में खनिज तत्व का महत्व एकरे विषय में बढ़िया से बताएं, हमारे पशुपालक भाई एकर लाभ ले ही। आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी किसान भाई सुन रहे थे डॉक्टर प्रेम चंद्र से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत, पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर केडी त्रिपाठी की वार्ता, स्लिप डिस्क कारण और उपचार।
1: नमस्कार, आज हम लोग स्लिप डिस्क और उसके कारण एवं निदान के बारे में बात करेंगे। स्लिप डिस्क एक बहुत ही सामान्य बीमारी है जो अधिकतर 30 से 50 वर्ष के वयस्कों एवं वृद्धों में पाई जाती है। कमर का दर्द जो पीछे होकर जांग और पैरों में उतरता है वह स्लिप डिस्क के कारण ही होता है और उसको बोलचाल की भाषा में सियाटिका भी कहते हैं। यह दर्द रीढ़ की हड्डियों के बीच में नसों के दबने के कारण होता है। रीढ़ की हड्डी उनके बीच में गद्दियां होती हैं, गद्दी को ही डिस्क कहते हैं और कभी कभी ये गद्दी धीरे से खिसक के नसों को दबाती है, इसलिए उसको स्लिप डिस्क कहते हैं। स्लिप डिस्क या तो धीरे धीरे होने वाली बीमारी होती है या कभी कभी अचानक चोट लगने से एक्यूट फॉर्म में भी आ जाती है। अचानक चोट लगने या रीढ़ के निचले भाग में झटके से सियाटिका और स्लिप डिस्क की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें कि लंबोसैक्युलर स्ट्रेन, डिस्क प्रोलैप्स या कभी कभी ये स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस और ऑस्टियोपोरोटिक कोलैप्स के तरह भी पाई जाती है। स्लिप डिस्क एक तरफ के पैर से कमर तक के दर्द होता है। कुछ लोगों में यह दर्द काफी ज्यादा एवं आक्रामक होता है और कुछ लोगों में रह रहकर उठता है। कुछ लोग काम करते समय बढ़ जाता है और कुछ को रात में बढ़ जाता है। कुछ लोगों में यह दर्द कमर में उतरकर जांग से पीछे होते हुए काफ, पंजे और पैर के अंगूठे तक पहुंच जाता है। यह दर्द कई प्रकार से महसूस होता है, कभी जलन के रूप में, कभी झंझनाहट के रूप में और कभी कांटों की तरह चुभन और कभी जकड़न के रूप में महसूस होता है। कमर और पैर का यह दर्द कभी कभी बैठने एवं करवट लेने में बढ़ जाता है। वैसे तो स्लिप डिस्क बहुत ही कष्टकारक दर्द देता है, लेकिन कभी कभी इसमें नर्व डैमेज की वजह से दर्द न के बराबर होता है या शून्य हो जाता है। ज्यादातर सियाटिका और स्लिप डिस्क नसों में सूजन के कारण होता है, जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। और चूंकि रीढ़ के निचले भाग में स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है, इसलिए इस बीमारी में पैरालिसिस का डर ज्यादा नहीं होता है। कभी कभी कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें कि स्लिप डिस्क क्वाइना नसों को दबा देती है, जिसकी वजह से पेशाब और टट्टी में परेशानी होती है। यह समस्या खासकर उन लोगों को होती है जो स्टेरॉयड, ड्रग्स या एचआईवी से संक्रमित होते हैं। स्लिप डिस्क बीमारी का इलाज दो सिद्धांतों पर केंद्रित है। पहला तो नसों का सूजन दूर करना और दूसरा नसों का दबाव हटाना। मुख्यतः स्लिप डिस्क दवाइयों और फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है, जो कि हल्के फॉर्म में होता है, लेकिन कभी कभी इंजेक्शन और सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। असाधारण दर्द को तुरंत ठीक करने के लिए गर्म या बर्फ से सिकाई करके निवारण करते हैं। सिकाई लगभग 20 मिनटों तक हर 2 घंटे में करने से मरीज को काफी राहत मिलती है। दर्द निवारक दवाइयां जैसे कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक, ट्रेमेडॉल या फिर इंजेक्शन के रूप में देने से मरीज को तुरंत राहत मिल जाती है। यदि इससे दर्द ठीक नहीं होता है तो फिर इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं, स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं, उससे मरीज को काफी राहत महसूस होती है। स्लिप डिस्क कभी कभी इन दवाइयों और इंजेक्शन नहीं ठीक होता है तो फिर उसको ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। बदलती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से माइक्रो डिसेक्टमी जैसे नए ऑपरेशन, जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत ही छोटे चीरे से करते हैं, जिससे कि मरीज अगले दिन ऑपरेशन के बाद चल फिर सकता है। इस ऑपरेशन के बाद हम लोगों को बहुत जल्दी काम पर वापस ला सकते हैं। जिन वृद्ध मरीजों में यह विधि कारगर नहीं हो पाती है, उसमें हम बड़े ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि लैमिनेक्टमी या डिसेक्टमी। उसमें क्या करते हैं कि रीढ़ के पीछे का भाग जिसने हड्डी काट करके डिस्क को निकाल देते हैं, तो मरीज को काफी राहत मिल जाती है, उसके दर्द का निवारण हो जाता है। वार्ता के अंत में हम यह संदेश देना चाहते हैं कि सियाटिका और स्लिप डिस्क जैसी कष्टकर बीमारी अब भी किसी भी स्टेज में लाइलाज नहीं रह गई है। उसके निवारण के लिए उचित चिकित्सा संपर्क करें और यदि आराम न मिले तो ऑपरेशन से न डरें, ऑपरेशन करवाकर स्लिप डिस्क से निजात पाएं।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर केडी त्रिपाठी की वार्ता, स्लिप डिस्क कारण और उपचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

श्रोताओं, ये आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। रात 8 बजे संसद समीक्षा और 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स। ये तीनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुनिएगा 7 बजे से, फिल्मों से भजन 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर विदुषी उमा डे का ख्याल गायन और 12:15 पर श्री प्रेम जैन का गिटार वादन। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज 8:45 पर होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:10:05 पर, शाम 5 बजे और रात 8:15 पर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर श्रेयस नायर और शाम 7:45 पर श्रुति मिश्रा से भजन और गीत सुनिएगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में 10:30 पर कलाकार होंगे राम कृपाल यादव और साथी। कार्यक्रम एक ही कलाकार से दिन में 11:30 पर कार्यक्रम बोलते नगमे होगा, प्रस्तुति होगी नेहा गुप्ता की। अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनिएगा 12:30 पर, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल की बहनें सुनेंगी डॉ आनंद लता कुशवाहा की वार्ता डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 2:30 पर।

शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम में दिव्या शुक्ला की वार्ता स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयागराज का योगदान। 6:30 पर पंचायत कर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे प्रतिभा मिश्रा से लोकगीत। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में काव्य कौमुदी में विजयानंद और डॉक्टर पीयूष मिश्रा का काव्य पाठ होगा और 8:30 पर कार्यक्रम सबरस। तो ये थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: चार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयकं 26,000 सर्वसम्मत्या पारितम्। अनेन विधेयकेन निगमाय स्वकीयानि कार्याणि औद्योगिक पण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमन्यन्ते। अथ च राज्यसर्वकाराः सहकारिता विकासकार्ये संस्थापिताय कस्मैश्चित् अपि निकायाय अस्याः संस्थायाः वित्तीयसाहाय्यं दातुम् अधिकृताः। एतद् अतिरिच्य संसदा संविधानस्य प्रथम अनुसूच्यां केरल इति राज्यस्य नाम परिवर्त्य केरलम् इति विधातुं केरल नाम परिवर्तन विधेयकं 26,000 अपि स्वीकृतम्। अपरतः वैदेशिक अनुदानानाम् उपयोगम् अधिकाधिकं पारदर्शिकम् उत्तरदायित्वपूर्णं च विधातुम् आनीतम्। वैदेशिक अंशदान संशोधन विधेयकं 26,000 विस्तृत सूक्ष्म परीक्षणार्थं संयुक्त संसदीय समितये प्रेषितम्। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजुः अवदत् यत् गृहमंत्री अमित शाहः लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला महोदयाय पत्रं लिखित्वा नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये प्रदर्शनकाले घटितानां विविधानां घटनानां उपरि पुनः एकवारं विस्तृत चर्चायै स्वकीयां सम्मतिं प्राकटयत्। संसद परिसरे पत्रकारैः सह सम्भाषमाणः मन्त्री अकथयत् यत् सर्वकारः स्वयं वदति यत् सः चर्चायै सन्नद्धः अस्ति तथा च प्रश्नानाम् उत्तराणि दास्यति, किन्तु विपक्षः उत्तराणि श्रोतुं न वाञ्छति, चर्चायाश्च पलायनं करोति।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: भारतीय रेल विभागेन पश्चिम रेल विभागस्य गेरातपुर अहमदाबाद खंडे चतुर्मार्गीय उपरि सेतोः निर्माणार्थं 53,00,000 कोटि रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृतास्ति। रेल मंत्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना पश्चिम रेल विभागस्य अम्ब्रेला वर्क इत्याख्यस्य छत्रक कार्यक्रमस्यान्तर्गतं मार्गीय परिष्कारार्थं सेतूनां पुनर्निर्माणार्थं स्वीकृता अस्ति। मंत्रालयेन उक्तं यत् रेल सेतु भागस्य समग्र दीर्घता 100 मीटर भविष्यति। अस्मिन् 53 मीटर परिमितं प्रत्येकमपि द्वौ संयुक्त गीडर भागद्वयं समाविष्टमस्ति। हरघर तिरंगा इत्यभियानस्य भागरूपेण जम्मू कश्मीरस्य रियासी मंडल प्रशासनेन जनसामान्यानां हृदयेषु देशभक्ति भावनायाः संवर्धनाय चिनाब नद्याम् एका विशाल तिरंगा नौका यात्रा आयोजिता। स्वतंत्रता दिवसात् पूर्वं एतत् अभियानं समग्रे देशे तीव्रगतिं भजते, यत्र विविध प्रदेशेषु देशभक्तिपूर्ण यात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां अन्येषां च विविधानां आयोजनानां उत्सवः आचर्यते। भारत ऋतु विभागेन उत्तर बंगाल खात्याः उपरि न्यून चाप क्षेत्रस्य निर्माणस्य पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति, येन अद्य ओडिशा राज्ये गांगेय पश्चिम बंगाल प्रदेशे च अत्यधिक वृष्टिः भवितुम् अर्हति। ह्यः नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप क्रीडायाः तृतीय दिने भारतीय फेंसिंग इत्यनेन दलेन विभिन्नेषु वरिष्ठ व्यक्तिगत स्पर्धासु त्रीणि स्वर्ण पदकानि एकम

0: रजत पदकम एकम कांस्य पदकम च प्राप्तम इति वार्ता।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ, स्वर था सुरेश वाडेकर का और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन।

अभी आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम इस फिल्म का ये भजन। आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत लिखा था पंडित नरेंद्र शर्मा ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनते हैं फिल्म केदारनाथ का ये भजन। आवाज है अमित त्रिवेदी की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। 7:20 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ

0: केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: समाचार।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने के लिए संसद ने पारित किया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी, चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर जिले के बांसगांव ब्लॉक को मिला पहला स्थान, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला पुरस्कार। और प्रदेश में फिर मानसून सक्रिय होगा, 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कल राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी, जबकि लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। यह विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: इस बीच विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। संसद के दोनों सदनों ने कल विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के व्यवस्था संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया कल पूरी हो गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रक्रिया के दौरान 18 आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्य चयन समिति ने पहले दिन करीब 10 आवेदकों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें रिटायर आईएएस अधिकारी दिनेश चंद्र, रिटायर आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे भी शामिल रहे। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभवों का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम 3 नाम की सूची तैयार करेगी। ये नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो के दूसरे दिन कल कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बायो एनर्जी की राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है।
3: देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक इथेनॉल पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और अगले दिनों में, जैसा कि आपके अपने प्रेजेंटेशन में आया कि कंप्रेस्ड बायोगैस में भी हम देश में सर्वाधिक उत्पादन कर रहे हैं, यह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की तस्वीर।
0: कार्यक्रम में दूसरे दिन भी प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रैंकिंग में गोरखपुर जिले का बांसगांव विकास खंड 1 चुना गया है। यह जानकारी नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में दी गई है।
4: इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए गोरखपुर को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का जोर समावेशी

0: विकास के जरिए नागरिकों के जीवन में सुगमता और गुणवत्ता की वृद्धि और समग्र रूप में जीवन स्तर के सुधार पर होता है। इसके अंतर्गत 5 थीम स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत ढांचा और सामाजिक विकास के कुल 39 संकेतकों पर संबंधित आकांक्षी ब्लॉकों का मूल्यांकन किया जाता है। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के कई जिलों में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई। लखनऊ में महापौर सुषमा खरकवाल के नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम मुख्यालय से गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकली। बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, संभल और अमरोहा में भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के मन में राष्ट्रीयता और एकता की भावना को मजबूत करना है। हापुड़ जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को 2.5 लाख झंडे बनाने का लक्ष्य दिया गया है। गांव अनवरपुर के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हेमलता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अभियान के लिए आभार जताया।
2: हमारे SSG अधिकारियों ने हमें 10,000 झंडे का टारगेट दिया था बनाने के लिए, हमने वो लक्ष्य पूरा किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ कार्य करने को मिला महिलाओं के लिए। और पहले गांव में महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, हम SSG से जुड़े तो हमें बाहर जाने का अवसर मिला और हम बहुत खुश हैं इस चीज।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रदेश में युवाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए रंग दे बसंती अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत कल लखनऊ में विश्वविद्यालय के पास भित्ति चित्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने माफिया मुक्त और बदलते उत्तर प्रदेश की थीम पर सार्वजनिक भित्ति चित्र बनाए। इस अभियान के क्रम में आज मुजफ्फरनगर में कॉमिक वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज ही रंग दे बसंती अभियान का गीत डर से आजादी भी लॉन्च किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल अयोध्या में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर राज्यपाल ने युवाओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।
3: नशा किसी भी युवक की शक्ति नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। यह व्यक्ति से उसका विवेक, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, परिवार का विश्वास और जीवन का उद्देश्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र की युवा शक्ति को सुरक्षित रखने का जन आंदोलन है।
1: प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश न होने के कारण उमस भरी गर्मी पड़ रही है। कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की खबर भी मिल रही है। उधर मौसम विभाग आगामी 18 अगस्त तक मानसून के फिर सक्रिय होने और राज्य के कई जिलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना जता रहा है। इस बीच पहाड़ों पर लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से मात्र 5 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहां बाढ़ से राहत के लिए विविध इंतजाम किए जा रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने के लिए संसद ने पारित किया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी, चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर जिले के बासगांव ब्लॉक को मिला पहला स्थान, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला पुरस्कार। और प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए श्रीमती उमा डे का ख्याल गायन। राग है भटियार, विलंबित रचना झप ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत की है अनिल कुमार साहा ने और सारंगी पर नज़ीर अहमद ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती उमा डे का ख्याल गायन। राग था भटियार, विलंबित रचना झपताल में निबद्ध थी। तबले पर संगत की थी अनिल कुमार साहा और सारंगी पर नजीर अहमद ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो कर

0: करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरली के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
5: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
4: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने ये कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
6: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ। समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया।

0: सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
2: पाकिस्तान सुराप में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश पे बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
3: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
5: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्र पत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुँच गया है।
6: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा

0: रही हैं।
1: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्णाकुलम के लुलु मॉल में और एजी माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
3: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
2: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। संसद के मॉनसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है। रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुनें। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
2: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत।

0: 7,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया था। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया है कि पंजाब सरकार ने जुलाई में हेल्थ साइंसेज की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के जेरे एहतमाम कराए गए फार्मेसी ऑफिसर्स भर्ती इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक मामले पर अवाम को गुमराह किया है। नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस इम्तिहान पर रोक लगा दी है और ये सवाल करते हुए सख्त रायजनी की है कि ये इम्तिहान पहले क्यों नहीं रोका गया और आया ये इम्तिहान नए सिरे से कराया जाना चाहिए या नहीं।
2: पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी, जबकि पेपर लीक हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने, छात्रों के सामने जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे, उनके सामने सच्चाई आई है।
1: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC के 14वें इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ उम्मीदवारों की तरफ से एहतजाज जारी है। उम्मीदवार इस इम्तिहान में हुई मुबैना बेजाबतगियों की गैर जिम्मेदाराना जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म फोरम की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें इस तहरीक की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एजाज दिए जाने की एक खसूसी तकरीब में 115 फनकारों को 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स अता करेंगी। इस मौके पर सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और सकाफत के वजीर मुमलिकत राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: एकेडमी अवार्ड्स देने का सिलसिला 1952 से जारी है। ये एजाज न सिर्फ उम्दा कारकर्दगी और कामयाबी के आला तरीन मयार की अक्कासी करते हैं, बल्कि इनके जरिए उम्दा इन्फरादी काम और अहम रोल को तस्लीम भी किया जाता है। एकेडमी फेलोशिप के एजाज के तहत 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि एकेडमी अवार्ड एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के साथ साथ 1 लाख रुपए पर मुश्तमिल होता है। फेलोशिप और अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए अफराद मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और इस तरह वो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। दिल्ली से ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: केरलम में यौम आज़ादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज रियासत में 3 मकामात पर मुसल्ला अफवाज की जानिब से मौसीकी से मुतालिक प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। तफसील हमारे नामानिगार से।
0: बहरिया और फजाइया के बैंड मौसीकी के जरिए मुल्क की यकजहती को फरोग देने के मकसद से आज तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और कोची में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। फजाइया का बैंड तिरुवनंतपुरम में निशा गांधी में, कोची जनूबी बहरी कमांड का बैंड अर्नाकुलम के लुलू मॉल में और एजिमाला नेवल अकेडमी बैंड कन्नूर के ताजवे चोवा में अपने फन का मुजाहरा करेगा। इन प्रोग्रामों का आगाज आज शाम 6 बजे किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुरुती की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: यौम आज़ादी से कबल पूरे मुल्क के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा मुहिम से लोगों में हुब्बुल वतनी का मजबूत जज्बा पैदा हो रहा है। पूरी रियासत में तिरंगा रैलियों और कई दीगर प्रोग्रामों का अहतमाम किया जा रहा है। तफसील हमारे नामानिकार से।
4: यौम आज़ादी से कबल मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ रही है। ये मुहिम 9 अगस्त से 17 अगस्त तक मुनक्किद की जा रही है। इसका आगाज वजीरे आला डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एक तिरंगा रैली के साथ किया था। इसके बाद रियासत भर में तिरंगा रैलियां, बाइक रैलियां और साइकिल रैलियां मुनक्किद की जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेला, नुमाइश और सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज रंगोली, पेंटिंग, मजमून नवेसी और हुब्बुल वतनी के नगमों के मुकाबलों का इनेकाद करके बच्चों और नौजवानों को इस मुहिम में शामिल कर रहे हैं। लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों, दुकानों और इमारतों पर कौमी परचम लहराने के लिए कहा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने

0: माली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी कल तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के सूराब जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं, दर्जनों लोग जख्मी भी हुए हैं। एक बयान में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ग्रुप ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फौज और फजाइया ने सूराब के गुदर मोहल्ले और आसपास के सिविलियन इलाकों में शदीद बमबारी और फायरिंग की, जिससे जानो माल का काफी नुकसान हुआ। मज़कूरा तंजीम ने इल्जाम लगाया है कि मकामी लोगों और हुक्काम को बचाव और राहत कार्रवाई अंजाम देने से रोका गया। उसने दावा किया है कि अस्पतालों को फौजी अहलकारों ने घेर लिया है और डॉक्टरों पर दबाव डाला गया। इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। मज़कूरा ग्रुप ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से अपील की है कि वो इस वाक़े का नोटिस ले और बलोच लोगों की जिंदगी और बुनियादी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए मुदाखलत करे। अपनी खसूसी सीरीज पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के आइंदा एपिसोड में आज हम विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से गुफ्तगू करेंगे, जो दुनिया की पहली हमा निस्वा फौजी बहरी मुहिम का हिस्सा थी, जिसके दौरान उन्होंने समंदरी रास्ते से दुनिया का चक्कर मुकम्मल किया। इस बातचीत को आज सुबह 9:10 पर 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। क्रिकेट में BCCI और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान भारत के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज की मेजबानी करेगा। ये सीरीज अगले महीने की 13-17 तारीख तक होगी। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये सीरीज अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के टूर प्रोग्राम का हिस्सा है और ये मैच भारत में खेले जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर ओपोजिशन को नीट पेपर लीक पर बहस के लिए आमादा करने पर जोर दिया। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला के इस बयान को अव्वलियत के साथ सुर्खी बनाया है कि ओपोजिशन के तमाम सवालात का जवाब देने को तैयार हूँ। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को अहमियत के साथ शाये किया है कि एहतजाज के दरमियान FCRA तरमीमी बिल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द JPC में बिल की दफात पर तफसीली गौर किया जाएगा। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त की रस्म इजरा के मौके पर वजीर आजम के इस बयान को अखबारात ने शह सुर्खी बनाया है कि साबिक सदर की जद्दोजहद और खिदमत एक काबिल तकलीद कहानी।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। गैर मुल्की एहतियात को मुंसबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द किया गया है। मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के शुरू करदा नए जाब्तों के तहत जारी किए गए सभी OBC सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने मुनज्जम धोखादही के इल्जामात के तनाजुर में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती पर रोक लगा दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के सूराब जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं। और क्रिकेट में BCCI ने सितम्बर में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज होने की तस्दीक की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं कहते हैं कि किसी की पहचान इस बात से नहीं होती कि वो भीड़ के साथ चलता है या अलग रास्ता चुनता है, बल्कि इस बात से होती है कि वो

अपने रास्ते को कितनी खूबसूरती से जीता है। आज 13 अगस्त भी हमें कुछ ऐसी बातें सिखाता है। एक तरफ है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, यानी बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों की विशिष्टता को पहचानने और सम्मान देने का दिन, और दूसरी ओर है ऑर्गन डोनेशन डे, जो हमें याद दिलाता है कि इंसान अपने जीवन के बाद भी किसी दूसरे इंसान के जीवन में उम्मीद बन सकता है। एक दिवस हमें कहता है कि अलग होना भी सामान्य है, और दूसरा कहता है कि अपने होने का सबसे सुंदर अर्थ ये है कि किसी और के काम आ जाना। हम में से अधिकांश लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं, खाते हैं या कोई काम करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए बायां हाथ उतना ही स्वाभाविक है। 13 अगस्त को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे इसी विविधता को समझने और सम्मान देने का अवसर है। इस दिन की शुरुआत 1976 में लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल के संस्थापक डीन कैम्बल से जुड़ी मानी जाती है। और एक दिलचस्प बात और है, बाएं हाथ से काम करने वाले को अंग्रेजी में अक्सर लेफ्ट हैंडेड कहा जाता है, जबकि खेलों की दुनिया में आपने साउथपॉ शब्द भी सुना होगा। खासकर बॉक्सिंग और बेसबॉल जैसे खेलों में साउथपॉ का इस्तेमाल बाएं हाथ से खेलने वाले खिलाड़ी के लिए किया जाता है। अब जरा अपने आसपास देखें, स्कूल की डेस्क हो, कैंची, स्पाइरल नोटबुक्स हो, कंप्यूटर माउस की सामान्य व्यवस्था, कई चीजें ऐतिहासिक रूप से राइट हैंडेड लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इसलिए लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति को कई बार ऐसी छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है जिन पर हम सामान्यतया ध्यान ही नहीं देते। यही कारण है कि ये दिन सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं, ये हमें इंक्लूजन यानी समावेशिता का संदेश भी देता है। बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो उसे केवल इसलिए अपना हाथ बदलने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है कि बाकी लोग दाएं हाथ से लिखते हैं। हर व्यक्ति का काम करने का स्वाभाविक तरीका अलग हो सकता है, और शायद यही तो प्रकृति की खूबसूरती है। एक ही दुनिया, लेकिन उसे देखने के करोड़ों अलग अलग तरीके हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, और अब बात करते हैं 13 अगस्त के दूसरे महत्वपूर्ण संदेश की, अंगदान। मृत्यु के बाद भी अपने जीवन का उपहार। हम अक्सर कहते हैं कि जीवन अनमोल है, लेकिन सोचिए यदि किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसके अंग दूसरे व्यक्ति को नया जीवन दे सकें, तो इससे बड़ा मानवीय उपहार और क्या हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ट्रांसप्लांटेशन यानी अंग, टिश्यूज या सेल्स का प्रत्यारोपण कई गंभीर और जीवन घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए जीवन बचाने का महत्वपूर्ण और कई परिस्थितियों में एकमात्र उपचार होता है। भारत में नोटों के अनुसार लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, हार्ट, लंग्स और इंटेस्टाइन जैसे अंग दान दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कॉर्निया, बोन, स्किन, हार्ट वॉल्व, टिश्यूज भी डोनेशन के दायरे में आते हैं। लेकिन अंग दान केवल चिकित्सा का विषय नहीं, यह विश्वास का विषय है, ये संवेदना का विषय है, ये उस विचार का विषय है कि मेरे बाद भी किसी की सुबह हो सकती है। अंगदान को लेकर समाज में कई भ्रांतियां भी हैं, इसलिए जागरूकता जरूरी है। नोटों के अनुसार अंगदान की प्रक्रिया में मेडिकल सुटेबिलिटी का निर्धारण चिकित्सीय विशेषज्ञ करते हैं, और अंगदान के मामलों में परिवार की सहमति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए केवल इच्छा व्यक्त करना ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ इस विषय पर बातचीत करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी एक परिवार की समझ और संवेदनशील निर्णय किसी दूसरे परिवार के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। कल्पना कीजिए, एक अस्पताल में कोई व्यक्ति जीवन बचाने वाले ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर किसी परिवार ने अपने प्रियजन को खो दिया है। एक ओर दुख है, दूसरी ओर उम्मीद, और अंगदान उस दुख और उम्मीद के बीच एक मानवीय पुल बन सकता है। यही कारण है कि ऑर्गन डोनेशन को केवल मेडिकल प्रोसीजर के रूप में नहीं, बल्कि मानवता और सह अस्तित्व की भावना से भी देखा जाना चाहिए। यहां एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि अंगदान का निर्णय हमेशा कानूनी, चिकित्सीय और अधिकृत प्रक्रियाओं के अनुसार ही होना चाहिए। भारत में नोटों, अंग और टिश्यूज डोनेशंस में संबंधित आधिकारिक व्यवस्था और जानकारी उपलब्ध कराता है। इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक डोनर प्लेज प्रक्रिया के बारे में वहीं से जानकारी ले सकते हैं।

तो श्रोताओं, आज 13 अगस्त हमें दो अलग लेकिन बेहद खूबसूरत संदेश देता है। लेफ्ट हैंडर्स डे कहता है, दूसरों से अलग होना कोई कमी नहीं। और ऑर्गन डोनेशन डे हमें याद दिलाता है कि दूसरों के जीवन में उम्मीद बनना इंसानियत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक हमें डाइवर्सिटी सिखाता है, दूसरा हमें ह्यूमैनिटी सिखाता है। एक कहता है कि हर हाथ का अपना अपना हुनर है, और दूसरा कहता है कि हर जीवन की अपनी कीमत है। तो आइए 13 अगस्त पर हम दो छोटी सी बातें अपने साथ लेकर जाएं। पहली, किसी बच्चे, सहकर्मी या मित्र को केवल इसलिए अलग न समझें क्योंकि वह किसी काम को हमसे अलग तरीके से करता है। और दूसरी, अंग दान जैसे संवेदनशील विषय पर अफवाहों के बजाय प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करें और अपने परिवार के साथ इस विषय पर जागरूक बातचीत करें, क्योंकि जिंदगी की असली खूबसूरती सिर्फ लंबे समय तक जीने में नहीं, किसी और के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने में भी है। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम आज का बस इतना ही। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मकता बांटते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए दिन, एक नए विषय और एक नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार, प्रयागराज।

0: अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना हमने लिया है फिल्म धुरंधर से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और शाश्वत सचदेव की। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म संयारा फिल्म का ये गाना, आवाज है विशाल मिश्रा की, गीत लिखा है राज शेखर ने और संगीत दिया है विशाल मिश्रा ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: की हलचल। आज सुनिए जालौन और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का।
1: जनपद जालौन में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ और संकटग्रस्त बच्चों की मदद की जा रही है। प्रदेश सरकार की यह योजना अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता, मुफ्त शिक्षा और विवाह सहयोग प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत कोविड 19 के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों को 4,000 रूपए प्रति माह की आर्थिक मदद मिलती है। अन्य कारणों से माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले अथवा बाल श्रम भीख मांगने वाले मुक्त

0: कराए गए बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। DPRO सुरेंद्र पटेल ने बताया,
1: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जिसमें इन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों को खोया है, उनको हमारी सरकार कोविड से अक्षरित बच्चों को 4000 रुपए प्रति महीने और कोविड से बिना अन्य कारणों से 2500 प्रति महीने सरकार के द्वारा राशि प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य है कि उनकी शिक्षा स्वास्थ्य और के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जनपद जालौन को 1273.96 करोड़ की लागत वाली 374 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें 216 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 158 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस परियोजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, विद्युत, नगर विकास, पुलिस एवं राजस्व विभाग से जुड़ी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, आयुष्मान भारत योजना, कृषि एवं पशुपालन विभाग सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, आवास की चाबी, ऋण स्वीकृति, सोलर रूफटॉप स्वीकृति, कृषि यंत्र, गोल्डन कार्ड एवं अन्य सहायता सामग्री वितरण की गई। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के खातों में 13,14,30,000 रुपए की CCL, RF एवं CIF धनराशि हस्तांतरित कर महिलाओं सशक्तिकरण और रोजगार की नई मजबूती प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जालौन को औद्योगिक, कृषि एवं निवेश के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरिडोर, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, डाटा सेंटर क्लस्टर और MSME आधारित उद्योगों के माध्यम से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप और डाटा सेंटर क्लस्टर जैसी परियोजनाएं लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगी। अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच रहा है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इस अवसर पर जनपद के प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार, विधायक विनोद चतुर्वेदी, मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे मौजूद रहे। कोतवाली उरई पुलिस द्वारा जींद हरियाणा निवासी ब्रजेंद्र मोर का अपहरण और हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त और घटना में साजिश में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया। इस बारे में पुलिस अधीक्षक जालौन ईशान सोनी ने बताया,
2: 4 मई 2026 को हरियाणा प्रांत के जीत जनपद के निवासी बिजेंद्र मोर के अपहरण के संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। अज्ञात अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए। अभियुक्तों के विरुद्ध 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसमें एक अभियुक्त मोहित मलिक वह गिरफ्तार किया गया है और एक महिला सपना उसको भी गिरफ्तार किया गया है। 120 का मूल्य मनाया गया।
0: प्रदेश के हर ग्रामीण घर तक नल में जल पहुंचाने के लक्ष्य में जुटी राज्य सरकार अब परियोजनाओं को पूरा कर मिशन मोड में ग्राम पंचायतों को हैंडओवर करने में जुट गई है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने कदौरा विकास खंड के चमारी गांव में जल अर्पण कार्यक्रम कर ग्रामीण वासियों को नल से जल पहुंचाने वाली इस योजना की कमान सौंपी। बताया कि केन वेतवा लिंक परियोजना से किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। किसान 3-3 फसलें ले सकते हैं।
3: जालौन जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का।
4: यूपी के हाथरस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 548 करोड़ की 143 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास तब होता है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हो रहे चौमुखी विकास का जिक्र करते हुए हाथरस के नए इंडस्ट्रियल एरिया में तेजी से आ रहे दोनों का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इससे यहाँ रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। आलू किसानों की समस्याओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में आलू प्रोसेसिंग केंद्र भी लगेगा।

जिससे क्षेत्र में किसानों को उनकी उपज का सीधा लाभ मिलेगा और कोल्ड स्टोरेजों की समस्या का समाधान भी होगा। उन्होंने कोसी कला में बने एक प्रोसेसिंग केंद्र का जिक्र किया और कहा कि आलू की अच्छी फसल के बीज के लिए आगरा में इंटरनेशनल सेंटर स्वीकार हुआ है और वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है। इससे किसानों का अच्छा उत्पादन होगा, लागत कम हो जाएगी और मुनाफा बढ़ जाएगा। जिलाधिकारी अतुल बस ने अवगत कराया है कि प्रदेश सरकार के कुपोषण मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से संभव अभियान 2026 का आयोजन जुलाई 2026 से सितंबर 2026 तक किया जा रहा है। अभियान के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए शासन द्वारा विस्तृत संयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान का संचालन बाल विकास एवं पुष्ट आहार विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पंचायती राज विभाग के संयुक्त समन्वय में किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी को जनपद स्तर पर अभियान का नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो संबंधित विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित

0: सिद्धांत जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान का संचालन बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पंचायती राज विभाग के संयुक्त समन्वय में किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी को जनपद स्तर पर अभियान का नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो संबंधित विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए अभियान की समस्त गतिविधियों का समयबद्ध एवं सफल संचालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने संबंधित विभाग अधिकारियों को एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे अभियान के दौरान निर्धारित दायित्वों का गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करें तथा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करें, जिससे जनपद को कुपोषण मुक्त बनाने के लक्ष्य को साकार किया जा सके। जिलाधिकारी अतुल बस ने जनपद के मध्य स्थलों की सूची को अंतिम रूप देने के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ कलेक्टर सभागार में बैठक कर विस्तृत चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मध्य स्थलों के संभाजन एवं परिवर्तन से संबंधित प्राप्त शिकायतें एवं सुझावों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव वित्त सभी मध्य स्थलों का संबंधित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जा चुका है। सत्यापन के दौरान प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का नियमानुसार परीक्षण एवं निस्तारण करने के उपरांत मध्य स्थलों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके पश्चात मध्य स्थलों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं सुगमता के साथ संपन्न की जा रही है। श्रावण मास के अवसर पर तहसील समाधान दिवस के पश्चात जिलाधिकारी अतुल बस ने पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के साथ अलीगढ़ आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ यात्रा व्यवस्था को स्थलीय निरीक्षण कर पूर्व में दी गए निर्देशों के अनुपालन का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मार्ग पर आवश्यक स्थानों पर चेक पॉइंट स्थापित करने तथा भारी वाहनों को गए डाइवर्जन को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि कांवड़ यात्रा पूर्णतः दुर्घटना रहित ये सुचारू रूप से संचालित हो सके। तहसील शासनी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त अलीगढ़ मंडल संगीता सिंह ने जिलाधिकारी अतुल बस व पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिन्हा के साथ जनसुनवाई करते हुए फरियादियों की शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता पूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: अभी आपने सुनी जालौन व हाथरस जिले की हलचल। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब सामाइन समाप्त फरमाएंगे उर्दू कार्यक्रम।
1: आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, मैं लाख कह दूँ कि आकाश हूँ ज़मीन हूँ मैं, मैं लाख कह दूँ कि आकाश हूँ ज़मीन हूँ मैं, मगर इसे तो ख़बर है कि कुछ नहीं हूँ मैं। इस शेर के खालिक जनाब राहत इंदौरी साहब हैं। सामीन, उर्दू शायरी की जदीद रिवायत में राहत इंदौरी का नाम एक ऐसी तवाना और मुनफरिद आवाज़ के तौर पर लिया जाता है जिसने गज़ल को नई तवानाई और असरी शूर से हम आहंग किया। वो न सिर्फ एक मकबूल शायर थे बल्कि एक मुअस्सिर दानिश्वर उस्ताद भी थे। उनकी शायरी में मोहब्बत, खुददारी, समाजी इंसाफ, कौमी यकजहती, इंसानी अकदार, जुल्म के खिलाफ एहतजाज और आम आदमी के जज्बात नहायत मौसिर अंदाज में

0: जलवागर होते थे। राहत इंदौरी साहब की शायरी की सबसे नुमाया खसूसियात ये हैं कि वो पेचीदा ख्यालात को बहुत ही सादा, रमा और दिन नशी जबान में पेश करते थे। उनके अशार में फिक्र की गहराई, जज्बे की शिद्दत और इजहार की बेबाकी एक साथ नजर आती थी। वो रिवायत से वाबस्ता रहते हुए भी जदीदियत के शायर थे, इसीलिए उनका कलाम अवाम और खवास दोनों में यकसा मकबूल था। आज हम राहत इंदौरी साहब की शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेंगे, जिनमें हम उनकी शायरी का इनकलाबी लहजा, इश्क मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज, कौमी समाजी शऊर, इंसानी अकदार का फरोग, ज़बानो बयान की दिलकशी और उनकी फ़न्नी इनफरादियत पर अपने ख़ास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। दोस्तों, यकीनन आप बखूबी जानते हैं कि राहत इंदौरी साहब की शायरी दरअसल उनकी शख्सियत, फिक्र और अहद की तर्जुमान है, जो आज भी हमारे सामीन और कारीन को यकसा तौर पर मुतासिर करती है। इन्हीं सब बातों के पेश नज़र आज हमने अहतमाम किया है एक गुफ्तगू का। मौजू है राहत इंदौरी अपनी शायरी के आईने में। इस उनवान पर गुफ्तगू करने के लिए आज की उर्दू बज़्म में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, जनाब डॉक्टर नाजिम बरेलवी साहब और नाचीज सैयद मोहम्मद उमर। हम सबसे पहले अपने दोनों खसूसी मेहमान का आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब बगैर किसी तमीद व ताखिर डॉक्टर नाजिम बरेलवी साहब से सवाल है। नाजिम साहब, अवलन मौजू की मुनासिबत से मुनासिब समझते हैं कि राहत इंदौरी साहब का शख्सी तारुफ मा अशार सबसे पहले हमारे सामिन के सामने वाज़ह फरमाएं।
1: जी, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं इस जमाने में जो कम ही बनते हैं कुदरत के कारखाने में। उन्हीं में एक बशर नाम जिसका था राहत, जमाना जिसको किया करता था बेहद उल्फत। तो राहत साहब का पूरा नाम राहतुल्ला कुरैशी था। 1 जनवरी 1950 में इंदौर में पैदा हुए और 11 अगस्त 2020 में कोविड-19 में मुब्तला होकर वफात पाई। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने बीए और एमए की डिग्री हासिल की और भोज यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से उर्दू में मुशायरे उनवान पर पीएचडी की डिग्री 1985 में हासिल की। मुशायरे के साथ साथ वो फिल्मी नगमे भी लिखा करते थे और पार्लियामेंट के रुकन भी रहे।
0: बहुत ही उम्दा आपने शख्सी तारुफ में उनके अशार का यहाँ पर किरदार पेश किया है। और ये हकीकत है कि राहत इंदौरी साहब जदीद उर्दू गजल के मुमताज शायर, उस्ताद, मुसव्विर और बेबाक तख्लीककार थे। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब हैं। दूसरा सवाल हम डॉक्टर साहब से करेंगे। मन्नान साहब, राहत इंदौरी साहब की शख्सियत और शायरी में किन औसाफ की झलक ज़्यादा नुमाया थी, इस पर आप क्या कहते हैं?
2: राहत इंदौरी साहब की शख्सियत में खुद एतमादी कूट कूट कर भरी थी
0: जी,
2: और उन्होंने मुशायरों के हवाले से आवाम को ऐसा जोड़ा है कि जो कोई दूसरा शायर आज तक नहीं कर पाया। हालांकि वो तरन्नुम के शायर नहीं थे, तहत में ही पढ़ते थे, लेकिन लोग उनके तहत को ही तरन्नुम समझकर इतना उनका इंतज़ार करते थे, जैसे ही मुशायरे में वो खड़े होते थे वाह वाह तालियों से नवाजा जाता था।
0: बिल्कुल,
2: इसी के साथ ही आवाम दोस्ती और उनका अनोखा अंदाज बयान, इसमें उनकी सादा जबानी का भी बहुत बड़ा रोल है। साथ ही गहरे मुताले को भी देखा जा सकता है।
0: बहुत
2: और शेर मुलाहजा फरमाइए कि मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में ना दीवार उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमीन तू ले ले। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। और एक शेर और मुलाहजा फरमाइए कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए।
0: बहुत खूब, बहुत ही अच्छी बात आप कह रहे हैं कि राहत इंदौरी साहब की शख्सियत में खुद एतमादी, बेबाकी, अवामी मिजाज नुमाया बहुत ज्यादा था, जबकि उनकी शायरी में सादगी, फिक्र की गहराई, इनकलाबी जज्बा और असरी शोर बहुत ज्यादा दिखाई देता था, जैसा कि आपने उनके अशार को पेश करके इसको वाज़ह किया है। यहाँ पर एक सवाल नाजिम साहब से करेंगे कि नाजिम साहब, राहत इंदौरी साहब ने उर्दू गजल

0: आवाज था।
1: क्या बात,
0: आखिरी शेर मुलाहिदा फरमाइए। शायरों का जो था शायर, यार का जो यार था।
1: बहुत खूब।
0: शायरों का जो था शायर, यार का जो यार था। डॉक्टर उर्दू का था, सारी जबां से प्यार था।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: आज की ये बज़्म प्यारे, बज़्म भी क्या खूब है। शायरे हिंदोस्तां, राहत से जो मंसूब है।
1: बहुत खूब, बहुत ही उम्दा कलाम आपने पेश किया। सामीन, अभी आप डॉक्टर मन्नान साहब को अपने अंदाज और अपने लबो लहजे के साथ राहत इंदौरी साहब को खराज अकीदत पेश करते हुए समाअत फरमा रहे थे। सामीन, आज की गुफ्तगु का लुब्बे लुबाब निचोड़ यही है कि बिलाशुबा राहत इंदौरी ने अपनी शायरी के जरिए उर्दू अदब को एक नई जिहत अता की और अपने मुनफरिद उसलूब के बाइस वो जदीद उर्दू शायरी के उफुक पर हमेशा एक रोशन सितारे की हैसियत से याद किए जाएंगे। और अब हम अपने दोनों खुसूसी मेहमान जनाब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब और इसी तरह जनाब डॉक्टर नाजिम बरेलवी साहब के बे इंतहा ममनून व मशकूर हैं कि आप हजरात ने बहुत ही उम्दा और बेहतरीन मालूमात हमारे सामीन के सामने फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाज़त। आदाब।
2: अभी सामाईन समाज फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश थी। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते।
5: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं श्रेयस नायर। पहले सुनते हैं इनसे भजन।

श्रेय नायर के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पिछले महीने की 20 तारीख से आरंभ सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। दोनों सदनों में आज निजी सदस्यों के विधायी प्रस्ताव भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब

0: में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को आज संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में आज संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प, लगन और साहस रखता है, वो जीवन की चुनौतियों से कभी नहीं हारता। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है और धैर्य, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का कल शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस पर की गई इस पहल का उद्देश्य गांधीनगर, कलोल और सानंद विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में बच्चों को पढ़ने की आदत से जोड़ना और उन्हें गांव में ही ज्ञान के व्यापक संसाधन उपलब्ध कराना है। इस ऐप से अब तक 752 पुस्तकालय जुड़ चुके हैं, जबकि 280,000 पुस्तकों के भंडार वाले 4 बड़े पुस्तकालयों को ग्रामीण पुस्तकालयों के साथ जोड़ा गया है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसका संज्ञान लेने और बलूच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा है कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके असर से आज गंगा के पश्चिमी भाग और उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba.
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना हमने लिया है फिल्म दिल से। आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। शब्द रचना समीर की है और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल तो पागल है, इस फिल्म का गाना। आवाजें हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

अभी आप सुन रहे थे यार रहमान हारमोनी अनुराधा और अनुपमा को फिल्म दिल से। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था एआर रहमान ने। और आइए अंत में सुनते हैं फिल्म अलग अलग का ये गाना, आवाज है किशोर कुमार की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के कलाकार हैं राम कृपाल यादव और साथी। पहले सुनते हैं इनसे देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे राम कृपाल यादव और साथियों से देवी गीत। अब ये सुनते हैं पारंपरिक गीत। कलाकार एक बार फिर राम कृपाल यादव और साथी।

राम कृपाल यादव और साथियों से अभी आप सुन रहे थे पारंपरिक गीत। तो वह ये सुनते हैं इन्हीं से सावनी कजरी। कलाकार एक बार फिर राम कृपाल यादव और साथी।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक माधुरी और आज के कलाकार हैं रामकृपाल यादव और साथी। अब आइए सुनते हैं इनसे देशभक्ति गीत।

राम कृपाल यादव और साथियों के गाए इस दादरा के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। पेश कार्यक्रम एक ही कलाकार। कुछ आवाजें कानों से नहीं सीधे दिल से सुनी जाती हैं। शुरू की महफिल में जब एक मीठी सी आवाज ने दस्तक दी तो लगा जैसे किसी ने दर्द को भी मुस्कुराना सिखा दिया। वो आवाज थी गीता दत्त की, जिसमें कभी मोहब्बत की नरमी थी, कभी जुदाई की तीस, कभी शरारत भरी चंचलता, तो कभी जिंदगी से रूबरू होती हुई एक उदास खामोशी।

1940 के दशक में जब गीता दत्त ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, तब शायद किसी ने सोचा नहीं था कि ये आवाज़ आने वाले वर्षों में हिंदी सिनेमा के संगीत की पहचान बन जाएगी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी, न सिर्फ वो मीठी थी, न सिर्फ दर्द भरी, बल्कि उसमें जिंदगी के हर रंग की आहट थी।

फिराया वो दौर जब गीता जी की आवाज ने फिल्म संगीत को एक नई रवानी दी। कभी उनकी आवाज में मोहब्बत का रोमानी अंदाज, कभी शोखी ने महफिल में रंग भर दिया और कभी उनकी आवाज ने रात की तन्हाई को ऐसा एहसास दिया कि सुनने वाला अपने ही दिल की आवाज़ सुनने लगे।

गुजरे जमाने की जानी मानी पार्श्व गायिका गीता दत्त पर केंद्रित एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर।

गीता दत्त की आवाज़ में नायिका की हंसी भी सुनाई पड़ती थी, उसकी आंखों का इंतज़ार भी, उसकी मोहब्बत भी और उसका टूटा हुआ दिल भी।

एक तरफ कैमरे के पीछे ख्वाब बुनता था एक फनकार, दूसरी तरफ सुरों से उन ख्वाबों की ताबीर करती थी एक आवाज़। गुरुदत्त की आंखों में जो कहानी थी, गीता दत्त के सुरों में वही रवानी थी। मोहब्बत से शुरू हुआ ये सफ़र, मगर ज़िंदगी की राहें हमेशा आसान कहाँ होती हैं। रिश्ते में प्यार भी था, फासले भी आए, और दो फनकारों की ज़िंदगी में सुरों के साथ खामोशियों ने भी अपना घर बनाया।

गुरु दत्त एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा थे, मगर शायद मुकम्मल कहानी बनने के पहले ही वक्त ने उनके पन्ने कुछ अधूरे छोड़ दिए। उनका रिश्ता 1953 से 1964 तक गुरु दत्त के निधन तक रहा। उनके 3 बच्चे हुए, तरुण, अरुण और नीना।

सचिन देव बर्मन और गीता दत्त की जोड़ी हिंदी सिनेमा के संगीत की उन खूबसूरत जोड़ियों में रही जहां संगीतकार की धुन और गायिका की आवाज एक दूसरे को पूरा करती थी। गीता दत्त की आवाज में मौजूद लोक संगीत की सहज

रहता, सूखी मिठास और दर्द को एस डी बर्मन ने बखूबी पहचाना। 1950 के दशक में दोनों की जुगलबंदी खूब सुनाई दी। बाजी, जाल, आर पार, प्यासा जैसी फिल्मों के संगीत संसार में गीता की आवाज़ ने अलग रंग भरा।

रहता, सूखी मिठास और दर्द को एस डी बर्मन ने बखूबी पहचाना। 1950 के दशक में दोनों की जुगलबंदी खूब सुनाई दी। बाजी, जाल, आर पार, प्यासा जैसी फिल्मों के संगीत संसार में गीता की आवाज़ ने अलग रंग भरा। इन दोनों की साझेदारी का सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि एस डी बर्मन गीता दत्त की आवाज़ की प्राकृतिक मिठास को बनावटीपन से ढकते नहीं थे।

0: मगर जिंदगी की पटकथा हमेशा सुरों की तरह सुरीली कहाँ होती है।
1: हो गया नन्हा सा दिल हमारा।
0: कामयाबी, मोहब्बत, रिश्ते, संघर्ष और निजी जिंदगी की उलझनों के बीच गीता दत्त का सफर धीरे धीरे एक ऐसी दास्तां बन गया जिसमें सुर तो थे मगर खामोशियां भी कम न थीं। वो गाती रहीं तो महफिलें आबाद होती रहीं मगर दिल के किसी कोने में तन्हाइयां भी पलती रहीं। दुनिया ने सुनी उनकी आवाज़ में मोहब्बत की दास्तान और वो अपनी ही जिंदगी का दर्द गुनगुनाती रहीं।

आज के एक ही कलाकार कार्यक्रम में हमने आपको जिन फिल्मों के गीत सुनवाए उनके नाम हैं। पहला गीत मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त और सखियों की आवाजों में। गीता दत्त की ही आवाज में भाई भाई फिल्म का गीत आपने सुना, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और धुन तैयार की मदन मोहन ने।

इसके बाद हमने आपको सुनाया था सुजाता फिल्म का गीत गीता दत्त और आशा भोसले की आवाज़ों में, गीत रचना मजरू की, संगीत एस डी बर्मन का था।

आर पार फिल्म का सुपरहिट गीत गीता दत्त की आवाज़ में हमने आपको सुनवाया था। गीत रचना मजरूह की थी, संगीत ओपी नैयर का। गीता दत्त की ही आवाज़ में अगला गीत हमने आपको सुनवाया था फिल्म साहिब बीवी और गुलाम फिल्म से। इसके बाद हमने आपको सुनाया था कागज के फूल फिल्म का गीत गीता दत्त की आवाज़ में, 12 o'clock। इस फिल्म का गाना गीता दत्त की आवाज़ में था। और कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने आपको सुनवाया था काला बाजार फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में। इसी के साथ आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम समाप्त करने की अपने होस्ट और दोस्त उज्ज्वल सिन्हा को इजाज़त दीजिए।

0: بولتے نغمے श्रोताओं नमस्कार, वंदना जी नमस्कार,
1: नमस्कार नेहा जी और सभी सुनने वाले दोस्तों को भी हमारा नमस्कार।
0: अरे भाई आज दिन क्या है?
1: नेहा जी दिन तो वही है जब हम कुछ गुनगुनाते हैं, जिसमें कुछ मस्तियां छुपी होती हैं, कुछ तन्हाइयों की बातें की जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें उदासियों से भर देती है, तो कुछ हमें जीवन का पाठ पढ़ा जाती है, यानी बातें नगमों की, वो भी बोलते हुए नगमों
0: की होगी।
1: जी
0: दोस्तों, आज ये जो नगमे गुनगुनाएंगे इस प्रोग्राम के साथ, उसमें दिन जो है फूल सा खिलेगा, कुछ दिन चढ़ेंगे और किसी न किसी वास्ते की बात करेंगे। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जैसे कोई रिस्क सा महसूस होगा कि हाँ ये रिस्क है क्या, या फिर
1: आंखों में कोई इशारे किए जाएंगे।
0: माय गॉड, मतलब ये जो क्लू है ना, आप संभाल कर रखिएगा कि क्या आपके मन में गाना कौन सा चला सूझा और हमारे गाने के साथ क्या वो मेल खाता है या नहीं।
1: नेहा जी हम जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जो आपने क्लू दिया है, हमारे दोस्तों के दिमाग में बहुत कुछ आ रहा होगा, बहुत सारे गीतों ने हलचल मचानी शुरू कर दी होगी ना।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन बात थोड़ी सी और तवील करते चले हम कि बातें यहाँ मोहब्बत की हो रही है, और मोहब्बत की जब बात आती है तो हम सब जानते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत सा जज्बा एक होता है।

0: बहुत सारे शायरों ने बहुत सारे शेर, गजलें, रुबाइयां लिखी है, दीवान लिखे हैं बड़े बड़े, जिसमें कि मिर्ज़ा गालिब साहब कहते हैं कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।
1: सच में उसी को देख के दम निकले जिस काफिर पर दिल आता है ना। मिर्ज़ा गालिब साहब ने ये बात कब कही और ये बात आज भी ताज़ा तरीन है। हर मोहब्बत करने वाला दिल इस बात से वाकिफ होगा। डॉक्टर इरशाद कामिल को तो जानती होंगे आप,
0: जी बिल्कुल।
1: गीतकार भी हैं, कवि हृदय भी हैं। उन्होंने भी दो प्रेमी दिल को पढ़ा, देखा, जाना, सुना, तो क्या थोड़ा सा गुनगुनाते चलें?
0: बिल्कुल, दोस्तों तक साझा करते हैं।

0: वंदना जी, एक बात मुझे बड़ी समझ से परे लगी।
1: क्या?
0: कि इस गीत के जो बोल हैं वो पंजाबी हैं। आज दिन चढ़िया
1: जी,
0: और जो सीन दिख रहा है वो बिल्कुल बंगाली, मतलब जबान पंजाबी है, स्थान बंगाली है।
1: हाँ, स्थान बंगाली है,
0: है ना।
1: हाँ, और आप ये देखिए कि जो जिक्र हो रहा है
0: जी,
1: ये एक कहानी जो बुनी गई है, जिसे खुद ही लिखा है इम्तियाज अली ने, लव आजकल, यानी कि आजकल के जमाने में प्यार किस रूप में आता है और किस तरह से हम उसको पहले तो नकारते हैं और हमें ये लगता है कि सिर्फ ये टाइम पास वाली एक चीज है और
0: हाँ।
1: वो लगावट नहीं दिखती, लेकिन जब किसी एक ऐसे व्यक्ति से भेंट होती है तब वहाँ पर वो चीज़ किस तरह से दिल में सरगोशियाँ पैदा करती हैं और दिल को धड़कने पर मजबूर करती हैं। बहुत ही शानदार गीत है, दिल के बहुत करीब गीत है। ये आगे बढ़ेगा, अरे जो लिसनर्स हैं वो भी इस गीत के साथ जुड़ते जाएंगे और अपनी जो खुद की कोई कहानी बुनी होगी, कही होगी, सुनाई होगी, किसी दिल तक पहुंचाई होगी, वो सब कुछ उनके सामने से गुजर जाएगा। तो चलिए, लुत्फ अंदोज होइए आप सब भी।

प्रीतम का संगीत दिल को छू लेने वाला। मुझे याद है जब इस गाने को मैंने पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर देखा था तो सैफ अली खान साहब और दीपिका पादुकोण लोग उनके दीवाने होते दिखे थे मुझे। और इनकी सादगी, मुझे लगता है कि सिर्फ एक साधारण सा उन्होंने परिधान पहन रखा है, लेकिन जो भाव हैं वो इस तरह से बिखर रहे हैं कि मन करता है कि उस तिलस्म में हम कैद हो जाएं और एक खुशी बरस पड़ती है। जब वो कहते हैं तेनु दिल दा वास्ता, वो सीधे रब से संवाद करते हैं कि देखो भाई रब, किसी को इन नज़रों ने पसंद कर लिया है और वो मुझे दिला दो, क्योंकि दिल दा वास्ता है आपको।

0: दिल की कसम है। तो सीधे ऊपर वाले से कस्मे वादे लेना और देना, ये मुझे लगता है कि बड़ा करीबी मामला है ऊपर वाले से भी और जिस पर नजरें इनायत हुई हैं उससे,
1: और साथ ही साथ जो एक तरह से चुनौती दी जा रही है खुदा को कि कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू। तो ये होता है ना कि दोनों, जहां की दौलत मैं उस प्रेम पर वार दूंगा जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो एक गहराई यहाँ पर, वो बात एक आ रही है नेहा जी, वो भाव आ रहा है जो मन में खिलखिलाटे पैदा कर रहा है, और सब कुछ जैसे लगता है कि बहुत सारे जो वासंतिक रंग होते हैं, इंद्रधनुष जो बारिशों में खिलते हैं, वो सब दिल के जमीन पर, दिल के आसमान पर खिल उठे हों, बिखर उठे हों। तो
0: हम रुकते हैं ना, फिर से रुकें।

0: दोस्तों आप जरा इस गीत को देखें तो कहाँ से सैफ अली खान साहब मिलने के लिए ट्रेन का सफ़र करते हैं, वो भी जनरल डिब्बे में, और बैठे कहाँ हैं, बिल्कुल जो ऊपर वाली सीट होती है उस पर आलथी पालथी मार के बैठे हुए हैं और सफ़र करके मिलने जाते हैं और फिर उसी तरह से वापस लौटते हैं। उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, बस सिर्फ एक झलक उनको मिलती है और उसी में वो अपने आप को इतना अमीर समझने लगते हैं। मतलब बहुत सुंदर, डॉक्टर इरशाद कामिल ने बहुत सुंदर तरीके से ये जो संवाद है ना रब से और उससे जिसे ये दिल पसंद करने लगा है, मुझे लगता है कि बैठकर रचा है उन्होंने, और तभी तो ये गाना हर किसी के हृदय और जहन में आ पसा। नहीं
1: जी बिल्कुल, बात है क्योंकि मोहब्बत की चल रही है नेहा जी, और मुंशी प्रेमचंद जी ने भी एक बात कही है मोहब्बत को लेकर ही
0: जी,
1: कि मोहब्बत रूह की खुराक है, ये वो अमृत बूंद है जो मरे हुए भावों को जिंदा करती है, ये जिंदगी की सबसे पाक, सबसे ऊंची और सबसे मुबारक बरकत है। तो देखिए ये बरकतें जो बरस रही हैं नगमों की शक्ल में, वहां पर एक और खूबसूरत सा नगमा दस्तक दे रहा है
0: जी।
1: तो चलिए थोड़ा सा इशारेबाजी की बातें यहाँ पर हो रही है, वो भी आंखों ही आंखों में कोई बात कही जा रही है, तो वो आंखों की जो बातें हैं उसको हम आंखों से पढ़ते हैं
0: जी।
2: आंखों

0: सादगी भी है, चुलबुलापन है और एक सहज भाव में बह लेना। देवरन साहब इतने हैंडसम शालीन दिख रहे हैं, उनको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है नज़रें ठहर सी जाती हैं। और जब आप, हम लोगों ने पहले भी देवानंद साहब का वो गाना किया था, आपको याद है, जिसमें कुतुब मीनार वाला सीन
1: अच्छा
0: था कौन सा वाला बताइए?
1: फूल तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है, प्यार का राग सुनो।
0: कुछ वैसा ही गाना, ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह पे वो शूट हुआ और लोगों के दिलों पे छा गया। और ये गाना भी वैसा ही है जब शकीला जी साथ में होती हैं और कैमरा बहुत ज़्यादा पैन नहीं होता है और कैमरे का वर्क इतना अच्छा है, एक जगह स्टैटिक है और देवानंद साहब और शकीला जी की जोड़ी और उनके एक्सप्रेशंस, मुझे लगता है कि आंखें जिस तरह से होठ अपनी बात कह जाते हैं। और उसमें ये लाइन भी कि बिखरे हैं बाल क्यों, चाल इतनी डगमग सी क्यों है, बहकी क्यों चाल है, हुआ क्या हुआ क्या
1: देखिए नेहा जी, जानिसार अख्तर साहब ने इस गीत को लिखा है, वो एक शायर रहे हैं।
0: हाँ।
1: और हमारे जो दोस्त हैं जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो जानते होंगे कि जानिसार अख्तर साहब का वास्ता जावेद अख्तर साहब से प्रगाढ़ है, क्योंकि वो उनके पिता हैं।
0: जी,
1: तो देखिए जो शायर जब कभी कुछ लिखता है तो उसकी बात ही बिल्कुल अलग हो जाती है, उसमें बहुत सारे मानी खेज रंग नज़र आने लगते हैं।

0: ये जो शकीला जी की शोखी है और गीता दत्त जी की बात हो रही थी, वो चुलबुलापन, बातों को सब समझना है लेकिन बात की जैसे शुरुआत हुई है उसके अंत आते आते तक उस सफ़र को बहुत खूबसूरत बनाना है, चुलबुलापन हो उसमें, थोड़ी सी शरारत हो, ऐसे ही तो कुछ भाव थे जानिसार साहब के। तो ज़रा देखिए कि कैसे वो जब इठलाती हैं, उन्होंने तो शायद देवानंद साहब की आंखों में कुछ पढ़ लिया था
1: है ना? या खुद को देख लिया।
0: ओ माय गॉड एक्चुअली।
1: लेकिन संगीत को भला कैसे भूल सकते हैं ओपी नैयर साहब, सदा बहार संगीतकार। पंजाबियत से भरपूर जो एक रिदम होती है उसमें ओपी नैयर साहब का कोई जवाब नहीं है। साथ ही साथ इस संगीत को जब हम सुन रहे हैं इस गीत में, तो नेहा जी बहुत सारे वाद्य यंत्र जब हमको सुनाई पड़ते हैं तो वहीं पर एक ऐसा वाद्य यंत्र हमें सुनाई पड़ रहा है इंटरल्यूड्स जब गाने के बीच में जब आते हैं, वो बताइए कौन सा है?
0: सच बात बताऊं मुझे नहीं पता चल रहा है।
1: सारंगी
0: जी।
1: तो ये बड़ा श्रेय दिया जाता है रोशन जी के बाद संगीतकार ओपी नैयर जी को कि उन्होंने सारंगी का इतना खूबसूरत प्रयोग किया है अपने गीतों में
0: जी,
1: जो कि लाजवाब बाकमाल रहा है। तो ये आगे जो बात गीता दत्त की, क्या आवाज है, रूह को छू जाती है, ऐसी मीठी बंगाली मिष्टी दोई की तरह जो आवाज है उसमें जब कोई बात कही जाती है, आहा, तो दिल जो है मीठेपन से भर उठता है।

0: जी, मुझे इसमें जो शब्द बहुत अच्छे लगे वो जोर, कि दिल पे अब ना कोई जोर है, अब ना ही कोई शोर है, और
1: हमको है
0: बहुत,
1: सब पता, दिल में
0: हाँ,
1: जो चोर
0: चोर
1: है।
0: है, कुछ नाज की भी बात हो रही है। सच में ज़रा देखिए, जब किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रेम के भाव पनपने लगते हैं और जब उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, तो शायद उसे क्रोध छू भी नहीं पाता उस समय ना।
1: और नेहा जी, साथ ही साथ उसकी शख्सियत में पला का परिवर्तन आता है कि जो कोई व्यक्ति देखने वाला, सूक्ष्मता से निहारने वाला हो, तो वो तुरंत जान जाएगा कि सामने वाले को प्यार हो गया है। उसकी चाल बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है, उसका बात करने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है।
0: और वो जब कहते हैं ना कि बैठे बैठे जीने का सहारा मिल गया, ये बहुत बड़ी बात जानिसार साहब ने कही कि जिसको ये सहारा मिल जाता है ज़िंदगी में, यकीन मानिए वो शायद ज़ीरो से सफ़र शुरू करता है और अपने आप को पाता है कि वो सिकंदर बन चुका है ना।
1: या फिर मोहब्बत से शुरू हुआ सफर इश्क की इंतहा को पार कर लेता है, जैसा कि इस गीत में सुनाई पड़ेगा दोस्तों, जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
2: शम्स की, रामपुर मेरठ और इटावा से। संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है

0: कई बार मुझे लगता है कि अपनी बात रखने में ये जो देशज बोली है वो ज्यादा काम आती है।
1: सच कह
0: रही है ना
1: जी, बिल्कुल।
0: वो जब हम ऐसे तो कहते हैं इश्क, लेकिन इसमें है इश्क
1: जी,
0: रिस्क। शायद पहला गाना भी हम लोगों ने डॉक्टर इरशाद कामिल का लिया था, और ये वाला भी जो गीत है वो डॉक्टर इरशाद कामिल का ही लिखा हुआ है। वो जानते थे कि अगर इसमें ये पुट डाला जाएगा तो लोग इसको कैप्चर कर लेंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही।
1: और देखिए, जब ये शुरुआत ही होती है इसकी, तो रेडियो पे जो तमाम लिसनर होते हैं जो अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं, उनके नाम की उद्घोषणा के साथ ही गीत शुरुआत इसकी होती है, इस गीत की।
0: हाँ?
1: तो रेडियो कितना जरूरी है जीवन में, ये चलते फिरते जब हम कहीं से गुजर रहे होते हैं किसी रास्ते से और गीत जब सुनते हैं तो हमारे मन के जो उद्गार होते हैं वो उनसे मिल जाते हैं उस गीत से। और उसी रूप में जैसा भी हमारा, अगर हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और कोई हैप्पी सॉन्ग अगर आ रहा है, रेडियो पे बज रहा है, तो हमारा मूड थोड़ा सा चेंज होने लगता है, हम तरंगित होने लगते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे हमारी रूह ही हमसे बात कर रही हो और वो ये बात कह रही हो, कब तक रूठे रहोगे,
1: और देखिए
0: बैक टू लाइफ तो आना ही है,
1: जो बिल्कुल
0: है ना?
1: और देखिए, इरशाद कामिल साहब का तो आपने जिक्र किया, लेकिन संगीतकार इस बार चेंज है, बदले हुए हैं, सोहेल से इनका संगीत है इसमें,
0: बहुत सुंदर,
1: बहुत ही खूबसूरत संगीत है।
0: एक बात वंदना जी, आपको रोकूंगी, माफ कीजिएगा। सुधीर श्रोताओं, हम लोगों ने राहत फतेह अली खान साहब की आज दिन चढ़िया में भी बात नहीं कर पाए थे और ये गीत भी राहत फतेह अली खान साहब ने गाया।

0: ये जब बात होती है कि ये जो दिलकश नगमा है और हम कह रहे हैं कि इतनी सुंदर स्टोरी लिखी गई और उस स्टोरी में एक बात है, कोई इसे कहता है कि भाई ये सोने जैसा है, कोई कहता है ना ये भाई बहुत दुख देता है, ये माटी है, कोई बोलता आ हाँ हाँ ये भैया दूर रहना दरिया है कोई बोलता नहीं जी सहरा है। मुझे लगता है हर किसी के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं ना।
1: इश्क को तो पहले ही कहा गया है एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है।
0: ओह माय गॉड। अच्छा एक और बात, जब आप मुंशी प्रेमचंद साहब के भी कुछ लाइनें आपने कही
1: जी जी,
0: तो उसमें ये था ना कि मोहब्बत एक बरकत है और जिसको मिलता है वो खुशकिस्मत समझे अपने आप को। तो इन्होंने एक चीज लिखी कि भाई ये ऐसे मौके पर होता है जो रोके से नहीं रुक सकता।
1: जी।
0: ये मौका कितना स्पेशल होता होगा नहीं कोई चाहे अगर दिल में कोई छवि बसने लगी है, अगर उसको चाही जाए कि नहीं ये छवि ना आए, तो आपके पास कंट्रोल बटन नहीं है
1: तो प्यार तो ऐसे ही होता है बिन बताए, अतिथि की तरह जिसकी कोई तिथि ना हो आने की, वैसे ही आ जाता है और वो घर का सदस्य यानी दिल का सदस्य बनकर ऐसे बैठ जाता है जम के कि पूरा कब्जा ही कर लेता है दिल पर। हमारा कोई बस नहीं रहता, दिल हमारा होता है लेकिन अधिकार किसी और के पास, सुरक्षित है सब।

0: बिल्कुल बहुत सुंदर है। कैटरीना कैफ इसमें गुड़िया की तरह लग रही हैं और इमरान खान उनके आगे पीछे दूर से डोलते हुए, जिनको ये बात बहुत बाद में इसका पता चलता है कि असल में करने कुछ और चला था और हो कुछ और गया। और जब ये बात पता चलती है तो कैसे दूरी बनाई जाए, मुझे लगता है कि जितनी दूरी बनाई जाती है करीबियत का एहसास उतना अधिक होता है। और जब वो कहते ना कि ये वो ऐसा भाव है कि आपसे कुछ भी करा सकता है, दिल में अगर कोई गांठ है तो वो गांठ भी खुल सकती है। वंदना जी, पहले मुझे इस बात का इतना भान नहीं था कि प्रेम में इतनी ताकत होती होगी कि ये दिल की कहानियों तक को बदल सकता है। मतलब ऊपर वाले ने इस भाव को मुझे लगता है सबसे प्रबल रूप में रखा है ना।
1: प्रेम ही तो एक ऐसा भाव है जिसके लिए देवता भी मनुष्य बनने के लिए धरती पर आना चाहते हैं, वो जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इतना खूबसूरत जज्बा होता है। और आपने कहा ना कि जितनी दूरी होती है उतनी करीबियत महसूस

0: महसूस की जाती है।
1: हाँ हाँ
0: तो दूरी में ही सबसे बड़ी सुंदरता पाई जाती है, और यही दूरी वाला जो एक रिश्ता है अनदेखा सा हमारा, हमारे दोस्तों के बीच भी है, जो बहुत ही करीबियत से महसूस हम करते हैं। और आज भी हमने इन तीनों गीतों के जरिए जिसे बहुत गर्मजोशी के साथ महसूस किया है, जिया है।
1: तो इन नगमों के जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जीवन के करीब ले आएं, इतने करीब कि जो बात जहन में चल रही होती है उसको धरातल पर भी महसूस करिए, क्योंकि ये जीवन जो ऊपर वाले ने दिया है बहुत अनमोल है, बहुत ही प्यारा सा है। जब हम उसे पूरी हिम्मत के साथ जीना शुरू करते हैं ना, यकीन मानिए वो जो मोतियों की बारिश होती है सच में होती है और महसूस होगी, और उसका असर आपकी आंखों में दिखने लगेगा।
0: अभी तो असर दिखाई पड़ रहा है वक्त का, समय का। तो अभी समय हो चला है इजाजत लेने का, तो हम अपने दोस्तों से लेते हैं विदा।
1: नमस्कार,
2: बोलते नगमे।
3: अभी आप सुन रहे थे हमारा खास कार्यक्रम बोलते नगमे, वाचन स्वर वंदना राठौर और नेहा गुप्ता, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की थी। सड़क पर चलते समय सदैव यातायात के नियमों का पालन करें, दो पहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य धारण करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुईं। इस दौरान लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया।

0: है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
1: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया के विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha has been adjourned sine die. The monsoon session, which began on the 20th of last month, concluded today after 19 sittings spread over 25 days. The House witnessed discussions on a wide range of legislative and national issues. Several important bills, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, the Tribunals Reforms Bill 2026, the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, and the Kerala Alteration of Name Bill 2026 were passed. However, the session also saw repeated disruptions over the issue of students' protests over the NEET paper leak, alleged police action against protesting students, and alleged anomalies in Ayodhya Ram Temple donation. Parliament has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfil the country's growing demand for critical minerals. The bill also seeks to take under its control the regulation of mineral-bearing lands having mineral contents in accordance with the parameters prescribed under the Mines and Minerals Development and Regulation Act. The BJP today accused the opposition parties of ignoring the issue faced by students in Punjab and Jharkhand. Addressing a press conference in New Delhi, BJP spokesperson Dr. Sudhanshu Trivedi claimed that the opposition parties are creating a ruckus in Parliament only to avoid the questions on student issues of Jharkhand and Punjab. The spokesperson also alleged the senior Congress leader and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has remained silent on the Jharkhand students' issues. The Calcutta High Court has cancelled all other backward classes or OBC A and OBC B certificates issued under the revised rules

रात 8 बजे संसद समीक्षा। चर्चा का विषय है कार्यक्रमों का रात्रि 9:30 पर, और संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे से। दोपहर बाद 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स, ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद 12:15 पर सुनिए प्रेम जैन का गिटार वादन। संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर आएंगे 12:30 पर। पनघट कार्यक्रम में 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी आनंद लता कुशवाहा से बातचीत, डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा 2:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5 बजे। युवाणी कार्यक्रम में 5:15

0: पर युवजन सुनेंगे दिव्या शुक्ला की वार्ता, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयागराज का योगदान। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे प्रतिमा मिश्रा के गाए लोकगीत। काव्य कॉमेडी कार्यक्रम में 7:31 पर प्रतिभागी कवि होंगे डॉक्टर पीयूष मिश्र और श्री विजयानंद। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर आपको सुनवाएंगे श्रुति मिश्रा के गाए भजन और गीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:15 पर। और सबरस कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे रात 8:30 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।
1: अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गिटार पर बजाया राग मधुमाद सारंग, वादक कलाकार श्री प्रेम जैन।

0: राग मधुमाद सारंग में गिटार वादन अभी आपने सुना। वादक कलाकार थे श्री प्रेम जैन। आपके साथ तबले पर संगत की श्री अनु बैनर्जी ने।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से लीजिए अब सुनिए संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम पेश कर रही हैं मधु कुमार।

है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं तैयार हैं आप अगले 30 मिनट तक अच्छी अच्छी बातों के लिए और बहुत ही खूबसूरत से नगमों के लिए, जिसकी फरमाइश भी तो आप ही ने की है। तो भाई पहले हम सुन लेते हैं हमारे एक श्रोता का संदेश, और ये है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी। इन्होंने लिखा है कि मुस्कुराहट की दौलत एक ऐसा खजाना है जो तन मन की खूबसूरती को तो बढ़ाता ही है, आपके नैसर्गिक सौंदर्य में भी चार चांद लगा देता है, साथ ही आपके आत्मविश्वास और लोकप्रियता में अद्भुत वृद्धि का कारण भी बनता है। अतः हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। भाई स्वस्थ रहने का तो ये राज है, आप जितना खुश दिल रहेंगे, जितना मुस्कुराते रहेंगे और जितना दिमाग से फ्री रखेंगे अपने आप को, आपका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले तो हम सुन लेते हैं आज का ये गाना, लेकिन इस गीत की फरमाइश हमें राजस्थान से भी आई है, और ये हैं रमेश चंद्र, जय नारायण, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, पार्थ कश्यप, उमेश और प्रमिला वर्मा। चाईबासा से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का अनाड़ी फिल्म का ये गाना।

किसी शायर ने क्या खूब बात लिखी है कि इश्क के बाजार में हुस्न का मेला रह गया, भीड़ है लाखों की मगर दिल अकेला रह गया। दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत का खिताब, दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत का खिताब, शिद्दत से चाहने वाला हर इंसान अकेला रह गया। ये देखिए, बात बिल्कुल सही कही गई है कि जो सच होता है ना, वो भीड़ में हमेशा अकेला ही आपको नजर आएगा, क्योंकि मक्कारों और झूठों की तो तूती बोलती है आजकल की इस दुनिया में। जितने झूठे लोग होते हैं उनका पूरा एक ग्रुप बन जाता है, और जितने सीधे और सच्चे होते हैं ना, वो एकांत में चले जाते हैं, क्योंकि उनके उस एकांत में किसी प्रकार की मक्कारी, धोखेबाजी और साजिशों की कोई जगह नहीं होती। उनको वही एकांत पसंद आता है जहां पर हो शांति और सच्चाई। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ, और

ही जो फिल्म है इसका नाम है आंखें और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। तो चलिए पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

अब हमारे पास जो संदेश आ गया है वो है शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी देवी, और ये महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि मुझे लीडर फिल्म का एक अच्छा सा गीत सुनना है। भाई ज़रूर सुनवाएंगे आपको गीत, लेकिन साथ ही साथ हमारे कुछ और श्रोता हैं जो लीडर फिल्म के इस गीत को सुनना चाहते हैं, और ये हैं पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, छत्तीसगढ़ से ही देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा देवी, अलकबीर और अजय देव, बिलासपुर से छुन्नू लाल श्रीनिवास, अनीता पुष्पा श्रीनिवास, अंजू योगिता श्रीनिवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। तो आइए सुनते हैं लीडर फिल्म का ये गाना।

दोस्तों कहा गया है कि जिंदगी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती है, हर चीज का बदलना तय है। बस देखते रहिए, पहले यहाँ किसी का मन, फिर किसी का बिहेवियर और अंत में बात करने का लहजा भी बदल जाता है। इसलिए किसी के लिए चिंतन करना व्यर्थ है। आप किसी को लेकर सोचिए नहीं, क्योंकि ये कलयुग है जनाब। जरूरत के हिसाब से इंसान अपना रंग जरूर बदलता है, तो वही फिक्र मत करिए और बढ़ते रहिए आगे, जिस तरह हम आगे आ गए अपने इस कार्यक्रम में। और फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं, और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। बड़ा छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। इस गीत की फरमाइश हमें की है कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, पटेलगर महलौत से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप जजौरिया, आरजू जजौरिया और गुड्डू। और ये देखिए जोधपुर राजस्थान से भी फरमाइश आ चुकी है, और ये हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहनी, कल्पित और बेबी गर्वी। राजस्थान से ही दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। तो चलिए सुनते हैं हम किसी से कम नहीं, इस फिल्म का ये गाना।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूं मधु आपके खूबसूरत सी फरमाइशी गीतों के साथ। जी हां, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता एक से पढ़कर एक गानों की फरमाइश करते हैं। देखिए कैसा ही गाना आ गया है कुदरत फिल्म का और आवाज है किशोर कुमार की। गाना बहुत ही चर्चित हुआ था और इस गाने को परवीन सुल्ताना जी ने भी गाया था, लेकिन इस समय फरमाइश की गई है किशोर कुमार की आवाज़ में इस गाने की। तो हम आपको ये गीत तो सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं हमारे उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने इस गीत को सुनना चाहा है। तो ये हमारे श्रोता हैं कोल सिटी बरकाकाना से अफजलता, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी सहानी और मोहम्मद अफजल। हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और पिट्टा बजाज। तो आइए सुनते हैं कुदरत फिल्म का ये गाना।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 1 बजने वाले समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बार बार व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक तथा संसदीय परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि विपक्ष का व्यवहार पूरे देश ने देखा है।
1: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है, हंगामा करना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति इस समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
2: इन कलाओं में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की सांस्कृतिक पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं।

0: ऐसी ऐसी कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगी, ये लोगों की स्मृति में ही रहती है। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवी और स्वजनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर उद्यताओं ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्व कला तक अनेक दक्षताओं को कला के व्यापक संस्कार में स्थान मिला है।
1: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है, आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 77,922 पर, जबकि निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ 24,377 पर कारोबार कर रहा था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन एडजर्न्ड साइन डाई। The monsoon session, which began on the 20th of last month, concluded today after 19 sittings spread over 25 days. The House witnessed discussions on a wide range of legislative and national issues. Several important bills, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, the Tribunals Reforms Bill 2026, the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, and the Kerala Alteration of Name Bill 2026 were passed. However, the session also saw repeated disruptions over the issue of students' protests over the NEET paper leak, alleged police action against protesting students, and alleged anomalies in Ayodhya Ram Temple donation. Parliament has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly, and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. The BJP today accused the opposition parties of ignoring issues faced by students in Punjab and Jharkhand. Addressing a press conference in New Delhi, BJP spokesperson Dr. Sudhanshu Trivedi claimed that the opposition parties are creating a ruckus in Parliament only to avoid questions on student issues of Jharkhand and Punjab. The spokesperson also alleged that senior Congress leader and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has remained silent on the Jharkhand students' issues. The Calcutta High Court has cancelled all other backward classes or OBCA and OBCB certificates issued under the revised rules introduced by the previous Trinamool Congress government in West Bengal. The court held that certificates issued under the earlier system have lost their validity. The OBC controversy dates back to the period after 2010, when the then Trinamool Congress government divided OBC communities into two categories, OBCA and OBCB. Allegations of irregularities and corruption in the issuance of OBC certificates subsequently led to legal challenges. The National Biodiversity Authority has released over 15 crore rupees in access and benefit sharing ABS proceeds from mustard genetic

0: गुंजा, अरे ओ गुंजा, या वहाँ देखा सब सखी हन तोहे जोहा थी।
1: देखा जो है वाली बात कौनो ना ही आए, कहे कि मुला जो हम तो आए गए हैं, अब अपने बहनिहारन से पहले राम राम कर लीन जाए। राम राम बहनिहारे।
0: राम राम बहिनी हरे। और बतावा गुंजा, का हाल चाल बा?
1: देखा हाल चाल मुला ठीक है। मुला सखियन के जो जोहा के जो समय दे थी तो उम्मेन भी एक अति आनंद प्रेम है। क्या कि देखा अभी जो ने चलाता है सावन, सावन में चलाता है कजरी, अपन 16 सिंगार, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी प्रकृति। देखा कुल समय इतना नीक लगे थे कि मन भावन लगे थे कि बहनी ऐसा लगे थे
0: चारों
1: कि
0: तरफ रंगे रंग, कहीं हरा तो कहीं केसरिया, है
1: हाँ,
0: ना?
1: तो जानतो बहनी इतना नीक लगत है कि कुले घरे से हरा हरा रहत है, और अपने घरे से लेके अगर बाहर जाए या कोनो अपने खेते में जाए तो कुल नीमन इतना नीक लगत है
0: सही
1: कि
0: कहा
1: सच
0: तू।
1: में भगवान कितनी नीक नीक चीजें हम सभी के दी हैं, कि कुल कितना हम अगर उनका शुक्राना
0: आभार।
1: करी, आभार व्यक्त करी तो ओहू कम है।
0: बिल्कुल सही कहा तू। देखा इतनी, मतलब वातावरण में देखा इतनी हरियाली बा, जैसे लगत है सब बस झुक झुक के हमार तोहार स्वागत करे बदे, सब
1: सच
0: पेड़ पौधा
1: सही
0: सब
1: कहो
0: हाजिर
1: बहनी,
0: हैं।
1: सच बात आ है कि हम सब जब गदेला रहे तो कितना नीमन जब अपने घरैया में जाई, अपने द्वारे के जोने चाची के लड़का गदेला रहे उनके साथे खूब झूला झूली, हाँ, और नीमन नीमन फल के जो बगीचा रहे उनमें खूब कहा।

0: बचपना एकदम अनभिज्ञ थे, तो कैसे कूद फान के सब फलन के कैसे खाए ले रहे खेते से, और कितना झूला झूलत रहे सखियन साथ, कितना
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा,
0: दोबारा नहीं आवा,
1: बिल्कुल वो पल दोबारा नहीं आवा था, सही कहा तू। अब देखा हम सब इतनी जिम्मेदारी हम सब के पड़ गई है कि हम सब बस उसका याद कर सका थी और जी तो नहीं सका थी।
0: बिल्कुल।
1: तो देखा अब तू बात करे हो गुंजा बहनी,
0: हाँ।
1: कि अपने बचपन के है ना,
0: हाँ।
1: तो तोरे बचपन में अपने स्कूले के दिन याद बा कि नहीं?
0: देखा पहले ये तो ऐसी चीजें हैं जो कबो भूले भुलाए नहीं, काहे कि देखा बचपना कबो जब बिसर जाते तो आवत नहीं। तो बहनी हम तो जाना थो, हम जो बगलिया से आवत रहे तो देखा कि कमला चाची जो है कमला चाची जो है अपने घरवा से जात रहे, तो उनके कुल 3 बिटियन है। तो हम कहे काकी सुना यह आवा, तो काकी आई तो हम कहे सुना काकी ई गदेलवा जो है बिटियन तोहार इनका कहो शिक्षा उच्छा दिलावती हाँ। तो कहा कि अरे कहाँ बिटिया देखा था हमरे बोझा इतना है, कुल घरे के काम में देखी खेते के देखी और कुल गृहस्थी के काम के साथ साथ हमारा आर्थिको सही नहीं बाटे। तो कहा पहले देखा चाची तू कथो चिंता जीन करा, आज तो ऐसे भी बिटियन के बचाओ बिटियन के पढ़ावे के बदे हर तरह के शिक्षा प्रसार चलाता है।
1: तो देखा गुंजा हम तो से यही खातिर एक चीज पूछी रही,
0: हाँ?
1: कि तोरे अपने स्कूले के दिन याद आवत है,
0: हाँ,
1: कि नहीं? तो देखा समस्या तो गुंजा तोरे मतारी बाप के चाहे हमरे
0: हाँ,
1: है ना,
0: हाँ,
1: अम्मा बाबूजी के भी समस्या रही कि बिटिया के पढ़े भेजत है, तो एक जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती कि देखा लड़कियन के पढ़े में एक तो बहुत चीज देखे के पड़त है ना, स्कूल नज़दीक है कि नहीं
0: तो
1: है,
0: हाँ,
1: है ना,
0: हाँ,
1: और कैसन माहौल में हम भेजे थे लड़की के बिटिया के अपने, है ना, काफ़ी चीज सोचे के पड़त है। तो यहाँ तक तो ठीक बा, लेकिन जब कभी कभी ऐसा हो जात ना,
0: हाँ,
1: कि हमार लड़की में गुण तो बहुत है,
0: हाँ,
1: ना, और ओकरे अंदर कौशल भी बहुत है, लेकिन तब भी वो शिक्षा के नहीं पा पावत जौना कि ओकर अधिकार बाटे, है ना। तो हमें लगा था कि शिक्षा हम सब का अधिकार बा, अधिकार हर परिवार तबे आगे बढ़ा था जब परिवार के प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होता, लेकिन जब बात बिटियन पे आ जाए तो देखा और जिम्मेदारी बढ़ जाता, काहे कि कहा जाता ना कि देखा बिटिया जो है ना एक लड़का जैसे हो था परिवार में, तो वो बिटिया आगे चल के जब शिक्षित बिटिया बन जाता ना,
0: हाँ हाँ।
1: तो वो एक सशक्त नारी में परिवर्तित हो जाता है ना। तो ना सिर्फ वो परिवार बदे बल्कि पूरे समाज बदे एक हीरा नग हो जाता है ना।
0: बिल्कुल सही कहो सरस्वती बहनी, देखा काहे से कि ओके ऊपर दो तरह की जिम्मेदारी थी, एक तो ओके मायका पहले तो रहा थे बहनी जब नान गुरुद्वार रहा थे तो उनका पहले तो बिटिया बन के शिक्षा दीक्षा दी जाती, बोला जब वो ससुरे जाते विवाहित हो जाते तो उनका दो परिवार के
1: जिम्मेदारी हो जाती,
0: अच्छी से अगर शिक्षित महिला है तो मुला अपने जिम्मेदारी के बहुत अच्छे से निभावते अकुल अपने परिवार के देखे के साथ साथ अपने जो तरक्की के रास्ता है ओके का भी समय दे दिन, अपने जो ने कहत नहीं कि अपने जो ने इच्छा है अपने जो ने क्षमता अपने जो ने मतलब कहते हैं कि एक गुण है ओका निखारे के बदे भी वो प्रेरित रहते हैं।
1: देखा गुंजा बहनी एक रीत है एक परंपरा है कि हमार जब बिटिया हरिन जोन है कुछ समय बाद जब थोड़ी बड़ी हो जाती
0: हाँ।
1: तो वो दूसरे घरे चली जाती है ना। तो देखा जब दूसरे घरे चली जाती लड़की हमार बिटिया तो उनका एक चुनौतीपूर्ण माहौल भी कबो कबो मिल जाता है ना।
0: हाँ
1: तो ऐसे माहौल में जरूरी नहीं कि तुरंत वो सबका समझ जाए और सब उनका समझ जाए, तो जब बिटिया हमार पढ़ी लिखी रहते हैं तो ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में खुद के संभाल लेते हैं और सब कुछ व्यवस्थित कर लेते हैं, है ना, और छोटी छोटी बात में चाहे बड़ी ही बात हो जाए है ना वो जल्दी घबराती नहीं है ना, और सब कुछ सोचती थी कि हम संहार ले है ना। और बात खाली विवाह तक के नहीं बा गुंजा बहनी, हमार बिटिया लोगन जन है चाहे साज श्रृंगार के क्षेत्र हो चाहे अंतरिक्ष में उतरे के बात हो चाहे हवाई जहाज उड़ावे के बात हो, हमार बिटिया हरन सब जगह अपन नाम ख्याति पाई चुकी हैं, काहे कि उनका शिक्षा का अवसर मिला रहा। तो जब हम सब अपने घर में अपनी बिटिया की शिक्षा के अवसर से वंचित न करबे तो हमार बिटिया भी अंतरिक्ष में जा सकती, हमार बिटिया भी

0: हवाई जहाज उड़ा सकत हैं, और चाहे घर के छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, सब में हमार बिटिया निपुण हो सकत हैं। बस बात है कि हम अपने बिटिया के कितना अवसर प्रदान करत हैं और कितना उन पर विश्वास रख के उनका आगे बढ़ावे में सहयोग करत हैं।
1: सच बात है बहनी, काहे कि देखा अगर हम सभी के जब बिटिया बहनी अरे शिक्षित हो जाते हैं तो शिक्षित के साथ साथ वो आत्मनिर्भर भी बन जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मुला उनका कोनो तरह की दिक्कत परेशानी या कोनो पे निर्भर रहे की जरूरत नहीं रहे बहनी, काहे कि वो कोनो भी परिस्थिति आए वो संभाल सकते हैं। वो चाहे घर परिवार से जुड़ी हो चाहे समाज से जुड़ी हो चाहे उनके खुद के स्वास्थ्य हो, अगर वो शिक्षित आए तो अपने स्वास्थ्य के भी देखभाल कर सकते हैं।
0: कहा जाता ना गुंजा बहनी की एक चा जोन होता ओकर पहली गुरु ओकर माँ होता है ना,
1: हाँ।
0: तो यही से समझ में आ जाता है कि एक स्त्री का एक बेटी का कितना महत्व है, है ना। वो बेटी जब शिक्षित हो जाता तो ना सिर्फ आवे वाली पीढ़ी की शिक्षित करत है बल्कि परिवार के अन्य दायित्व और जिम्मेदारी के भी अपनी कर्तव्य के गंभीरता से लेत है और बहुत जागरूक रहता है

0: जोन होत है ओकर पहली गुरु ओकर माँ होत है,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: हाँ।
0: तो यही से समझ में आ जाता है कि एक स्त्री का, एक बेटी का कितना महत्व है ना। वो बेटी जब शिक्षित हो जाता है तो ना सिर्फ आवे वाली पीढ़ी की शिक्षित करत है, बल्कि परिवार के अन्य दायित्व और जिम्मेदारी के भी अपनी कर्तव्य के गंभीरता से लेते है और बहुत जागरूक रहत है। और जहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं बा वहाँ जौन अंधकार बा, और जहाँ पढ़ाई लिखाई बा वहाँ जौन प्रकाश बा। ऐसे हम सब आराम से समझ सकत ही कि पढ़ाई लिखाई के, शिक्षा का जीवन में कितनी जरूरत है, और विशेषकर बेटियन के जीवन में।
1: देखा बहनी तू जैसे बतावा तू कि हमार बहनी अरे सशक्त तो बंदा है बना दे, उनका सशक्त बनाने के पीछे उनका खुद के कर्तव्य और एक अंदर की शक्ति है। काहे कि देखा कौनो ऐसे दिक्कत ना ही है जो स्त्री ना ही कर सकत, वो सब कुछ कर सकत है, उनके इतना शक्ति है।
0: बिल्कुल शक्ति के तू बात करत हूँ, तो एक बात हम कहे चाहब अपने बिटियन हरे के कि आगे कैसे हमार बिटियन खूब बढ़ चढ़ के हर चीज में भाग लें, उनकर हिस्सेदारी हो, है ना। जैसे तिल में तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग।
1: बिल्कुल सही कहो।
0: तो बिटिया हरिन एकदम तो का सबका शिक्षा के अवसर मिले तो ओका बिल्कुल आगे बढ़ के खूब हिम्मत के साथ में, साहस के साथ में ओका स्वीकार करें और खूब तरक्की करें, अपने परिवार के, अपने देश के, अपने समाज के नाम के रोशन करें। और देखा एक शिक्षित बिटिया गुंजा जोन होता ना, वो घर में स्वास्थ्य के बना के रखा था, साफ सफाई बना के रखा था, है ना, और आर्थिक रूप से अपने परिवार के सहारा होता, और अपने मायके में अपने माता पिता के, और जहाँ होकर बिया भा अपने ससुराल में वहाँ भी खूब सुविधा ले आ के रख देते है,
1: यानी कि नाम कमावत है।
0: हाँ, एक सुविधापूर्ण जिंदगी वो दे सकत है और अपन शौक भी पूरा कर सकत है, जो उनके मन में छिपी इच्छा है उनका भी वो पूरा कर सकत है। वो कोनो दूसरे पे आश्रित नहीं रहते कि देखा हम ही ना ही कर सके, वो शिक्षित है तो वो जौन अवसर ओकर इच्छा पावे के वो अवसर के वो पाए सकत है।
1: बिल्कुल देखा हमार तर जो बिटिया बहनी है उनके कुल इतना सारा योजनाओं चला है जिन्हें हमारे बिटिया शिक्षित हो सकते है, कोनो अनपढ़ ना ही हो सकते, अपने शिक्षा के अपना जीवन के अधिकार बनावे, उनके अपने शिक्षा के सबसे बड़ी जो है हथियार बनावे। काहे कि अगर हम शिक्षित आई तो कोनो ऐसे काम ना ही है जिन्हें हम सब नहीं कर सकते।
0: और अपने जीवन के गुंजा वो चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, वो जरूरी निर्णय भी ले सकते हैं समय पे। हर छोटी बात बदे ओके केहू का मुंह देखे की जरूरत ना ही, है ना, है ना। और देखा समाज में जो कुरीति है, बहुत तरह के अंधविश्वास हैं, ओका वो अच्छी तरह से समझत है, और जो अनबर गलावे वाला लोग होते वहाँ वो फंसते नहीं, अपने भी बचत है और अपने परिवार के भी बचत है। यही से हम
1: सोच के और शिक्षा के प्रभाव होते बहनी,
0: यही से गुंजा बहनी हम कहती कि बिटियन के शिक्षा पे परिवार बहुत ध्यान दे। काहे कि देखा पहले माना जात रहा कि बिटिया जो है दूसरे घरे चली जाएंगी तो हम का इतना खर्चा करी। अच्छा। तो देखा अभी समझे के बात है कि बिटिया दूसरे घरे जाती लेकिन उनके पढ़ाई में जौन तू निवेश कह देबा वह सबसे बड़ा निवेश है ओकरे भविष्य में।
1: देखा बहनी इतनी नीक नीक बात कही के बात अब चला एक ठीक बढ़िया से गौनई बहनी यानी इनके सुनाए दिया जाए और हम सब भी सुना जाए। तो चला उर्मिला श्रीवास्तव बहनी से सुन लीन जाए
0: कजरी। हाँ तो चला सुन लीन जाए।

0: देखा सरस्वती बहनी कितनी नीक के गौनई रही।
1: देखा गवनी तो कचरी बहुत बहुत बढ़िया रही। हाँ
0: हाँ
1: अब गुंजा
0: हाँ
1: हम तोहका और बहनियरन के एक ठे बातचीत सुनावे चाहती है ना। डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश। आनंद लता कुशवाहा से बात करें हैं रजनी चंद्रा। तचरा सुन लीन जाए बातचीत।
0: चला सुन लीन
2: बहनी हरे देखा आज के जौने समय बाटे वो पूरी तरह से डिजिटल युग बाटे। काहे से कि अब कौनो ऐसन चीज या कौनो भी काम बिना डिजिटल के नाई हो। तो देखा आज अपने पनघटे पे आए बटे आनंद लता बहनी उनकर बहुत बहुत स्वागत बटे। वो ई विषय पे बात करे चाहते हैं कि डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। तो आनंद लता बहनी आपके का राय है
3: डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश? आइए जानते हैं। आज की दुनिया में बच्चों की परवरिश करना सच कहूँ तो एक बड़ी चुनौती बन गया है, खासकर तब जब हर तरफ सोशल मीडिया का शोर है। तो सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल युग में हम अपने

0: बच्चों को एक साथ मजबूत और हेल्दी रिश्ता कैसे बनाएं? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पहले के जमाने में सख्त डांट फटकार, लेकिन आज मॉडर्न पेरेंटिंग करते हैं कि बात करके समझाओ। पॉजिटिव तरीके से टेक्नोलॉजी को लेकर देखिए कि अब सही तरीके से मैनेज करना सीखें। सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन। पहले आदेश दिए जाते थे, अब
1: हाँ
0: बच्चों
1: बहनी,
0: को सुनने और समझने पर जोर दिए जाते
1: बिल्कुल।
0: हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, तो हमारी सबसे बड़ी सोच है कि इस डिजिटल युग में एक बैलेंस बनाना।
1: बिल्कुल।
0: आइए सबसे पहले बात करते हैं टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, अच्छी डिजिटल आदतें कैसे बनाया जाए।
1: देखा बहनी, तो जैसे कहा तो कि बच्चन के सही समय के मतलब उनका कैसे हर समय नियमित अनुसार चलें, तो कौन ऐसे कारण आए जिसे बच्चन के समय प्रबंधन किए जा सके?
0: अगर देखिए, चलिए सीधे और साफ बात स्पष्ट करते हैं कि क्या ये सारे नियम सिर्फ बच्चों के लिए हैं? शायद यही सबसे अहम बात है। अगर हम खुद ही पर हर वक्त फोन में लगे रहेंगे तो बच्चों को क्या सीखेंगे?
1: बिल्कुल।
0: हमेशा याद रखिए, बच्चे वे नहीं करते जो बच्चे वे करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। काहे से कि देखा, हम सबे जौने करे थे, हमार गदेलन भी उही सीखा थे। काहे कि बड़े से ही छोटन सीखा थे।
0: डिजिटल युग में बच्चों पर परवरिश का मतलब मोबाइल और इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना नहीं, बल्कि उन्हें तकनीक का सही और संतुलित उपयोग सिखाना है। डिजिटल युग के बच्चों की अच्छी परवरिश के सही माध्यम हैं जो स्क्रीन टाइम की सीमा तय करें, पढ़ाई, खेल, नींद और परिवार समय को प्राथमिकता दें, हर समय मोबाइल देने की आदत न
1: बिल्कुल
0: बनाएं।
1: बिल्कुल।
0: माता-पिता खुद उदाहरण बने, बच्चे सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं, इसलिए माता-पिता भी बेवजह फोन चलाने से बचें और कांटेक्ट पर नजर रखें। बच्चा क्या देख रहा है, कौन से गेम खेल रहा है, किससे ऑनलाइन बात कर रहा है, इसकी जानकारी रखें।
1: बिल्कुल सही कहो बनी, जैसे तू कहो कि बच्चों पे नजर रखे, तो देखा माए बाप हर समय तो मौजूद नहीं रहते। अब देखा लड़का के तू दे दिया मोबाइल, अब वो कथो कुछ हो देखा था है, कभो कुछ हो देखा था है। तो देखा अगर हम हो सके तो उनसे ई चीजन के जैसे मोबाइल यंत्र है उसे दूरी बनाए रखी, हो सके तो समय समय पे उका बांध दें कि देखा गदेला हम तो का इतने मिनट के दिए ही तू कुल हमका देख तुरंत है। तो लंबा स्क्रीन देखा से आंखों में भी दिक्कत हो जाती लगन के, तो हो सके तो उसे भी अपने गदेलन के दूरी रखे। काहे से कि देखा जो तरंगे निकला थी मोबाइल के जरिए, जो स्क्रीन लंबा समय देखा वो तरंगी आंखों के जाए के बहुत ही जो कि उनके रोशनी के बहुत ही जो है खराब कर दिए थे। तो ज्यादा से ज्यादा अपने गदेलन पे उनका ध्यान दूसरी तरह केंद्रित करे।
0: तो मोबाइल को इनाम या चुप करने का साधन न बनाएं।
1: बिल्कुल बहनी।
0: रोने पर तुरंत मोबाइल देना भी धीरे धीरे आदत बन जाती
1: हाँ
0: है। रोज कुछ समय बिना स्क्रीन के रखें, साथ बैठकर खाना,
1: हाँ
0: बातें करना, कहानी सुनना, बोर्ड गेम खेलना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन सुरक्षा सिखाएं, बच्चों को समझाएं कि अपना नाम, पता, स्कूल, फोन नंबर, फोटो या पासवर्ड किसी अनजान व्यक्ति से शेयर नहीं करें।
1: बिल्कुल।
0: सोशल मीडिया की समझ में उन्हें बताएं कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर चीज सच नहीं होती और किसी की तस्वीर या जानकारी बिना अनुमति शेयर नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल। देखा काहे कि गैर कानूनी काम भी डिजिटल के माध्यम से हो जाते हैं, तो हमारा सब जो गदेला होते हैं वो अनभिज्ञ है। ई सबे जितना भी ऑनलाइन अपराध हो जाते हैं कुल गदेला के ना समझी होते, जो लड़का ना ही जाना है तो कहीं ना कहीं बैंकिंग के जरिए कभो जो है तो ओटीपी के जरिए कईयों तरह के ऐसे अपराध हो जाते। तो हम चाह के अपने गदेला के सचेत करे चे। ई बतावा कि बच्चों के कैसे ध्यान दिया जाए कि डिजिटल चीजन से वो अपने आप के रोक सकें।
0: डिजिटल दुनिया में रहकर हटकर बच्चों की दुनिया की मतलब इमोशनल मजबूती नींव कैसे रखें,
1: अच्छा।
0: मतलब अपनी दूसरों की भावनाओं को समझने की कला। जब कोई बच्चा दुखी हो या गुस्से में हो तो उसे चुप हो जाओ या रोना बंद करो कहने के बजाय उसके फीलिंग को समझिए। उन्हें ये महसूस कराइए कि जो महसूस कर रहे हैं गलत नहीं है। इससे उनका आप पर भरोसा कई गुना बढ़ जाता
1: अच्छा
0: है।
1: बहनी।
0: गले लगाकर कहिए, हम यही हैं तुम्हारे साथ। खुद उदाहरण बने। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता-पिता को करते देखते हैं। यदि आप हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो बच्चे की वैसा ही करेंगे। परिवार के साथ समय बिताते हुए समय मोबाइल दूर रखें। डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए बच्चों को तकनीक से दूर रखने के बजाय उसका सही और सुरक्षित उपयोग सिखाना ज्यादा जरूरी है। बच्चों के साथ समय बिताएं, रोज कम से कम 30 से 60 मिनट बिना मोबाइल के उनके साथ बिताएं। उनकी

0: बातें ध्यान से सुनें और
1: बिल्कुल
0: उनकी भावनाओं को समझें।
1: हाँ बिल्कुल
0: ऐसा माहौल बनाएं कि वे अपनी हर बात आपसे खुलकर साझा करें
1: बिल्कुल
0: और स्क्रीन टाइम सीमित रखें। पढ़ाई और जरूरी काम के अलावा मोबाइल का समय तय करें। खाने के समय और सोने के पहले का उपयोग न करें। पूरे परिवार के लिए डिजिटल नियम बनाएं।
1: बिल्कुल देखा कहे कि अगर हम अपने गदेला के समय सारणी बनाए थे बनी जैसे तू बताओ, तो अगर हम उनका नियमित अनुसार जैसे कि की सुबह से दिनचर्या हम बनाए दिए कि सुबह उठ के उनका अपने नित्य काम करे के है, फिर उसके बाद जो है बहनी थोड़ी देर अपने व्यायाम शरीर को व्यायाम करें, उसके बाद जो उन्हें कुछ नाश्ता है टाइम से करें बहनी, फिर थोड़ा सा अपने पुस्तकों को पढ़ाए, फिर थोड़ा सा हो सके तो अपने विद्यालय के जब बच्चे तैयार हो जाते हैं तो 12 घंटा तो उसमें निकल जाते बहनी। तो ऐसे इनके शुरुआती दिनचर्या रहते उस समय लग उनका कहीं ना कहीं एक डिजिटल चीजों से दूरी बनाई दी थी। तब ये बतावा कि जैसे बच्चन आज की शिक्षा कुछ तो डिजिटल होएगा बटे, तो हमारे सबके गदेलन अगर उस शिक्षा लेते हैं तो कितना लाभदायक बटे।
0: पढ़ाई और रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान दें। किताबें पढ़ने की आदत डालें। खेल संगीत चित्रकला योग या अन्य रचनात्मक बुद्धियों पर शामिल करें। बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें नई चीजें सीखने का अवसर दें। जैसे नैतिक और पारिवारिक मूल्य सिखाएं। ईमानदारी सम्मान अनुशासन और दया जैसी गुण बचपन से सिखाएं। परिवार के साथ भोजन त्योहार और धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की आदत डालें। डिजिटल शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए भी करें।
1: बिल्कुल
0: डिजिटल युग में सफल परवरिश का अर्थ बच्चे न केवल पढ़ाई से बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल और जिम्मेदार इंसान बने।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कोई बहनी कहे कि देखा आज के जो उन्हें समय बांटे हम सबके जो गदेला है उनका जो है शिक्षा तो जो डिजिटल के माध्यम से दिया जाता है वो काफी कारगर है। कहे कि आज के जो समय है वो डिजिटल होएगा। अधिकतर विद्यालयों में कॉलेजन में भी जैसे कि रोजगार संबंधित शिक्षा हम लेते ही तो अधिकतर डिजिटल बांटे, तो अपने अगर गदेला उससे कुछ शिक्षा प्रेरित हो के लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखा कहीं कहीं शिक्षा के माध्यम से शहरीकरण में जितने भी डिजिटल चीजें हैं बहुत लाभकारक है, लेकिन मुला कहीं कहीं ऐसी चीजें के कुछ अनभिज्ञ अज्ञानता के कारण जो है लोग डिजिटल के शिकार हो जाते हैं। मुला हम तो कहा कि अपने गदेलन का और हम गदेले का साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी अगर हम सब डिजिटल के प्रति सचेत रहते हैं तो समझ लग कि उसके सही लाभ ले सकते हैं और डिजिटल तकनीकी के सही सही उपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में भी लाभ ले सकते हैं। देखा आनंद लता बहनी हमारे पनघटे पे आयो, इतनी नीक नीक बातचीत करियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपके।
2: देखा गुंजा ये तो
1: हाँ।
2: बहुत जरूरी बातचीत रही, सबके सुने लायक रही कि सच में देखा ये आजकल के समाज में हम सब के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि ये डिजिटल युग में हम सब लड़कन के कैसे ध्यान दे और कैसे अच्छी परवरिश दे।
1: सच बात है कहे कि देखा डिजिटल जो युग है जो कि आज के कंप्यूटराइज चीजें हैं
2: लड़कन से है? सबसे बड़ी बात बा कि हम सबे
1: हाँ।
2: उनका अलग भी नहीं कर सकी
1: बिल्कुल, से, कहे से कि है ना? बिना कहे कोनो काम हो ना है
2: बिल्कुल एकदम तकनीकी से जुड़ा पूरा जीवन है हाँ, चाहे हम सब के हो चाहे लड़कन बच्चन के हो।
1: मुला देखा इतनी बढ़िया बातचीत की सुने के बाद
2: आप
1: हम सोचे थे कि बहनी हरेन से एक ही संदेश सुनवा दी जाए।
3: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: देखा सरस्वती कितना अच्छी बातचीत रही। मुला हम सोचे थे अब एक ठो बढ़िया से गौ नहीं सुन लीन जाए।
2: चला उर्मिला श्रीवास्तव बहनी से एक ठे तुलसा गीत सुनवावती तो सबे के, तो चला आनंद ला।

0: देखा कितनी नीक के गौ नहीं रे तुलसी माता के। बोला हम सब तो भोर होते ही स्नान के बाद सीधा तुलसी मैया के पास ही जाते
1: बिल्कुल
0: जल
1: सही
0: चढ़ाए।
1: कहा तू। हाँ तो चला आप तुलसी माता से रसोई घर के तरफ मुड़ जा।
0: बिल्कुल
1: हाँ बन
0: बिना
1: जा,
0: रसोईया के कोनो काम ही नहीं होत बहनी।
1: बिल्कुल सही कहा तू। तो चला आज रसोई घर में हम तोहका गुंजा मूंग दाल के कढ़ी बनाई सिखाई।
0: अच्छा
1: बनावत
0: बहनी।
1: हो कि नहीं?
0: हाँ बिल्कुल देखा इतनी बढ़िया तू लाए हो जल्दी जल्दी बतावा हमको।
1: अच्छा चला देखा धुली मूंग का दाल ले ली है ना, और दही 1 कप ले ली है,
0: अच्छा बहनी।
1: पानी 3-4 कप, हल्दी
0: हाँ
1: आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार,
0: हाँ बहनी।
1: अदरक 1 चम्मच, हरी मिर्च 2 ही ले ली है, जीरा आधा चम्मच, राई आधा चम्मच,
0: हाँ
1: हींग 1 चुटकी ले ली है, और
0: बहनी।
1: मेथी दाना 1/4 चम्मच ले ली, सूखी लाल मिर्च 2 ही ले ली है चाहे 1 ठे, और कड़ी पत्ता ले ली है 8-10,
0: अच्छा बहनी।
1: और बनावे बदे तेल चाहे घी कौनों भी चीज ले लें 2 बड़ा चम्मच। तो
0: अच्छा।
1: देखा मूंग दाल जौना है ना वो भिगो के रख दी है बहनी हरेन, कम से कम 2 ही घंटा बदे अच्छे से धो के तब
0: हाँ
1: भिगोई
0: हाँ
1: ही है ना, और
0: हाँ
1: भिगोवे के बाद जब वो फुलाई जाए तो वो पीस लें, लेकिन बहुत महीन ना आई करे का है ना। अब दही के अच्छे से फेंट लें, दही के फेंटे के बाद में उम्मा 2-3 कप पानी मिलाए दें,
0: अच्छा
1: और
0: बहनी
1: उम्मा हल्दी और नमक मिलाए दें। अब
0: बनी
1: ई
0: नमक भी डालें स्वाद अनुसार, कोनो
1: हाँ
0: धीमा खाते कोनो तेज
1: हाँ
0: खाते।
1: और जो फेटी हुई तोहार दही है, जो मैं तू
0: हाँ
1: नमक और हल्दी मिलाए हो और
0: हाँ
1: पानी मिलाए हो, ओका एक तरफ अब रख दा, ठीक है।
0: अच्छा
1: अब तू अपने कढ़ैया के ले ला और ओका
0: हाँ
1: गरम करा, और कढ़ैया जब गरम हो जाए तो उमा डाल दा 2 चम्मच भर कर घी। अब उमा राई, जीरा, मेथी और हींग डाल दा, ठीक। अब इतना डालने के बाद उमा लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, अदरक जो घिसा हुआ अदरक
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: वो, हरी मिर्च डाल दा।

का भून ला अच्छे से, ठीक है। जब भुना आ जाए तो जौन तू दही रखे हो किनारे, जब मैं पानी और नमक हरदी मिलाए रहू, वो दही के ओमा डाल दा कढ़ैया में। अब दही के धीरे धीरे धीरे धीरे चलावत जा, छोड़े नहीं, अगर छोड़ देबू तो दही तुहार फट जाए, है ना। अब उमा जो है अच्छे से उबाल आवे दे, है। और जब उबाल आ जाए ओकरे बाद में जौन तू पीसी हुई मूंग रखे हो वो मूंग के दाल के डाल दा। अब धीमी आंच पे ओका 20 मिनट तक पकावत जा, चलावत जा, है ना। और जब तुहार कढ़ी लगे देखे में कि अब गाढ़ी हो लगी है और कुछ खुशबू आवे लगे, तो उमा स्वाद अनुसार नमक डाल दा। तुहार कढ़ी जो है मूंग दाल के तैयार हो गई है, ठीक है। अब इका चावल के संगे बढ़िया से खाई ला। तो चला अब रसोई घर से बाहर ही निकला गुंजा, और चला तो के एक ठे गीत सुनाई देती फिल्म बंदनी के, चला सुन लीन जाए लता मंगेशकर से।

0: गुंजा
1: मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दे दे। कैसन लगा तुका गीत?
0: देखा मैंने ये गीत गौनाई ऐसन माध्यम है जोने की बुझा हुआ जो मन
1: मन
0: है
1: हाँ हाँ
0: उमेन जो तरंगे लावा थे खुशी के वो कोनो और नहीं लाए सकत।
1: सही, एकदम एकदम सही बात
0: ये
1: है तोरी
0: संगीत
1: बात
0: ऐसा
1: से, हम
0: माध्यम
1: एकदम
0: है,
1: सहमत ही।
0: संगीत ऐसा माध्यम है बहनी कि कुले जेवने सुख है। अगर हम कोनो भगवान से जुड़ी चाहे गीत गौनाई होए, चाहे लोकगीत होए, अपन चाहे अपने प्राकृतिक से जुड़ी होए, मिला जब सुनत है तो इतना आनंद सुख मिलत है
1: आ
0: कि समझ ला
1: देखा
0: कि सारी चिंताएं खत्म हो जाते
1: देखा कई बार गुंजा ऐसा
0: हैं।
1: होता ना, हम सब तनाव में रहा थी।

0: है ना, केहू के बात हमके खराब लग गया है, लेकिन जैसे संगीत से संपर्क जुड़त है ना, संतान में संगीत के ध्वनि जात है, तो धीरे धीरे मन बदले लगत है,
1: बिल्कुल
0: है ना। और कबो कबो तो हाथ गोड़ भी जैसे थिरके लगत है, है
1: ना। देखा जब मन पसंद की गौ नहीं रहा दे तब तो पूरा जो है तो लगत है कि हाँ हम अब अच्छे मतलब सोच विचार में आए गए,
0: हाँ हमार मिजाज एकदम बदले लगा था धीरे धीरे।
1: तो देखा हम सभी भी ऐसे जीवन जियत है, बोला जो हमार खुशी है उसका पहले ढूंढने चाहिए, कहे कि अच्छा सुखमय जीवन जिए के लिए मुस्कुराहट चेहरे पे होवे बहुत जरूरी है, और चेहरे से का मन से भी हंसे के चाहिए, ताकि हम सभी की जो शारीरिक क्रिया है कहे कि जैसा सोचब वैसे हमार शरीर भी हमका दे, वैसे हमका प्रकृतिक भी देगा। तो ये बदे अपन सोच के एकदम सकारात्मक रखें।
0: आई में तो संगीत का बहुत बड़ी भूमिका है। आ जानत हो गुंजा, देखा आजकल मौसम कैसे होता है, है ना, क्षण में बदरी क्षण में एकदम घाम हो जाता है,
1: एकदम
0: इतनी घाम हो जाता है जैसे कबो कबो तो उलझन होवे लगा था, है ना। और एकदम अचानक से जो मौसम बदलत पर तबियत भी गदिलवन के हमार तुम्हार इसे कुछ कुछ बिगड़े लगा था, है ना।
1: होते ना कि हम सभी प्रकृति के कैसे मतलब एक एडजस्ट का कहा दें कि
0: सामंजस्य, हाँ
1: संतुलन कैसे बनाए। तो जब हमारा प्रकृति डाबा डोल होते तो हम सब तो एक तुच्छ प्राणी है,
0: सही कहा,
1: जीवन जिए में थोड़ा सा सतर्कता रखें,
0: बिल्कुल,
1: और अच्छे से मतलब अपने जीवन के जो ने दिनचर्या है
0: ओका संभारे।
1: फिर
0: देखा गुंजा बहनी तू दिनचर्या के बात कहे ना, ये बहुत सही बात कहे कि बहुत सारी बीमारी आजकल के समाज में तो दिनचर्या से जुड़ी है।
1: बिल्कुल,
0: अगर दिनचर्या गड़बड़ हो जाता है तो तमाम बीमारी हम सभी के घेर लेते हैं, और बहुत सारी बीमारी तो ऐसी है गुंजा कि दवाई लेवे के जरूरत नहीं बा, दवाई भी छूट जाता अगर हम अपनी दिनचर्या के संभाल ले बढ़िया कह ली।
1: और
0: हम ये महसूस करते गुंजा तो से ये बात कहे चाहती कि जौन ई ठंडा ठंडा मौसम के बाद में अचानक से तेज से घाम से सामना हो जाते है ना,
1: धूप निकला हुआ थी,
0: तो कबो कबो जिसे माथा पकड़ लेते है, सिर में दर्द महसूस होवे लगत है, है ना। तोरे साथ हो ऐसे हो था गुंजा?
1: देखा बहनी होत का है कि जैसे अब हम एक गर्म मौसम से ठंडे मौसम की तरफ आवा, तो कुल हम सभी के जो शरीर होते है वो तापमान के एडजस्ट नहीं कर पावत, मतलब संतुलन नहीं बना पावत, जब संतुलन नहीं बना पावत तो कबो सर्दी जुकाम आए, कबो गला जाम हो जाते है, या कबो बहनी तेज बुखार भी आ सकते है, काहे कि अधिक धूप पड़े से बुखार के संतुलन आ जाते।
0: तो यही से गुंजा बहनी हमें लगता है कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ध्यान अपने हाथ में रखे के चाहिए, कि जैसे देखा पानी की बोतल हम सभी कहती कि लेके चला, भले बदरी के मौसम बाटे वो वाली घाम नहीं बा, लेकिन तब वो जब पानी से शरीर तर रहा था तो ये सब छोटी मोटी चीजें तो अपने आप ही दूर हो जाती है, है ना। तो गुंजा
1: प्रकृति के हिसाब से अगर हम सभी भैया बहनी हरे चलते तो सब कुछ अच्छा और संतुलन में चलत है। बोला देखा अब इतनी बढ़िया बढ़िया बातचीत भी भाई और इतनी बढ़िया लोक गीत गौनाई भी सुना, मुला हम सोचा थे अपन बहनी ये जो कार्यक्रम है एक ही विषय में का सोचा थे कौन राय दे चाहते, तो चला उससे जुड़ी एक संदेश सुन लीन जाए।
0: चला सुन लीन जाए।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत, आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमारा ईमेल एड्रेस है
5: pangatprogram@gmail.com, स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com, pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कौनी बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके आपके संदेश के

ये था ग्रामीण महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम पनघट। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। दो बजने वाले हैं दोपहर समाचारों की, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: Jodar 7-6, 6-4 in the men's single semi-finals at Montreal this morning to reach the Canadian Open final. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Both houses of parliament adjourn sine die with passage of 12 bills during monsoon session. Lok Sabha registers only 19% productivity amid opposition uproar. Parliament passes Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 to make mining sector more efficient. President Draupadi Murmu confers Sangeet Natak Academy fellowships and awards to over 100 artists. Several U.S. states issue special proclamations to commemorate August 15 as India Day for celebrating independence. Colombia declares an economic emergency to take measures for relief efforts following powerful earthquake. And in Canadian Open tennis, defending champion Ben Shelton to take on compatriot Brandon Nakashima in men's singles final at Montreal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुईं। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख

0: नहीं किया।
1: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
0: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
2: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
2: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए हम काम किया है।
0: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुग ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईवी सुब्बरेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
3: अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
4: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
5: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
6: झारखंड के 600 बच्चों पर FIR हुआ है। ऐसे बच्चे

0: जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर FIR करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है, ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी

0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकट्टा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
2: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
3: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रिएजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन एक दर्पण की तरह है, आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे।
2: जी
3: आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और तनुजा बाई देवांगन।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
3: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गाँव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
2: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे।
3: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
2: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आजादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
3: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था।
2: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कूल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
3: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
2: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया।

0: उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
1: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
0: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
1: हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
0: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आजादी पर ही केंद्रित रहेगी।
0: जी,
1: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
0: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आजादी के मूल्य को पहचानें।
2: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
3: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
2: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
4: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
5: कौन है?
6: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
5: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
6: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
5: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
6: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
5: ये इस शीशी में क्या है?
6: इस शीशी में खून से रंगी

0: मिट्टी है।
1: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
0: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
1: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
0: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
2: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
3: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
0: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
4: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
0: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
2: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षा

0: सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
1: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
3: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

0: बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी दो साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम
3: हाँ बाबा बताओ हमें क्या करना होगा?
1: आजादी। हाँ, अब हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
2: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं
3: सहेंगे।
0: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
4: My God, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
5: Yes, sir.
4: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
5: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
4: Good, very good. बहुत अच्छा आइडिया है।
5: Thank you, sir.
4: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
5: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
4: सिपाही।
5: यस सर।
4: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
5: यस सर।
3: भागो, भागो रे भागो, आती आए।

0: की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन।
2: हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो अपने अपने घरों में आड़ लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो
3: चलो
2: चलो चलो चलो चलो।
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
4: सिपाहियों,
5: yes,
4: इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
5: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
4: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
0: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे, फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए। अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
4: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।
1: हवाले कर दे।
4: yes.
0: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा।
6: ये क्या हुआ सर?
0: कप्तान के मरते ही वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था, इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूर वीर था। शूर वीर।
7: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर, और आइए अब सुनते हैं

0: प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत सारे जहां से अच्छा।
1: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत इतना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है। इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: अच्छा। अभी आपने सुना कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: जगबंधु
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 3 बज रहे हैं, ये सभा संपन्न होती है। अगली सभा 4 बजे

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 4 बजे हैं, दूसरी सभा आरंभ होती है।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा फेवरेट शो, वीकली शो संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस खास एपिसोड के साथ हाजिर है शाहिद, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मेजर मानिक एम जोली, सेना मेडल से सम्मानित रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इंडियन आर्मी के वेटरन हैं, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस इनका एक्सपीरियंस है, फील्ड कमांडर, कॉर्बेट इनोवेटर एंड मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के मेजर मानिक एम जॉली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शायद, बहुत अच्छा लगा आपसे आज फाइनली बात करके।
0: जी सर, हमें भी बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं, और सर आपने अपना समय निकाला, कीमती समय आपने निकाला है और आप आए हैं हमारे स्टूडियो में। सर बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत हम करना चाहेंगे, और जैसा कि हमने आपको आपके बारे में सर थोड़ा सा बताया है तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो बातचीत अभी इंटरव्यू से पहले आपसे चल रही थी तो उसमें मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ पता लगी, और लग रहा है कि ये शो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सर हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से ये शुरुआत होती है एक आर्मी ऑफिसर बनने की तरफ, जो एक एक यंग कैडेट जाता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या महसूस करता है वो, क्या जोश, वो जज्बा, वो नेशन और एक देश के लिए एक जज्बा होता है जब जाते हैं?
1: तो शायद सबके अपने अपने रीजंस होते हैं आर्मी ज्वाइन करने के, लेकिन एक कॉन्स्टेंट फिक्स्ड रीज़न सबका ये होता है कि हर फौजी का अपने देश के प्रति सर्विस करने का, माँ भारती के लिए सेवा करने का एक पक्का जज्बा फिक्स रहता है। बाकी सब एक्सक्यूज़ हैं, पर आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि एक फौजी इससे हट के जवाब दे कि हाँ मैं देश की सेवा नहीं करना चाहता था, कोई और

0: जी
1: तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो मैं भी बचपन में, मेरे नाना जी भी आर्मी में थे, तो
0: अच्छा,
1: मेरी माँ ने बचपन से ही मुझे यही कहा था तुमने फौज में ही जाना है।
0: यानी कि ऑलरेडी आपको जो है ग्राउंड बना हुआ मिल गया था,
1: हाँ जी,
0: बस
1: तो
0: आपने उस पर
1: या तो
0: अपना सफर शुरू किया।
1: या जैसे मैंने 6th, 7th, 8th क्लास के दौरान
0: जी
1: तैयारी शुरू करी एनडीए की, तो 12th खत्म होने से पहले मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था। तो
0: ओके
1: स्कूल के एकदम बाद फिर मैं एनडीए चला गया। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ,
0: जी
1: तो वहाँ से मेरी क्लास से हम 5 गए थे। तो वो शहर में भी थोड़ा, इट हैज़ दी वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोहतक सिटी का रिकॉर्ड है मैक्सिमम ऑफिसर्स
0: अच्छा
1: प्रोड्यूस करने का हरियाणा
0: ओके
1: में। तो बस हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेंड होता है आर्मी में जाने का, आर्मी नेवी एयरफोर्स मतलब।
0: जी सर, आपने मेजर मानिकम जौली हमारे साथ जो सेना मेडल से सम्मानित हैं सर, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको सेना मेडल से सम्मानित किया गया और दूसरे अवार्ड भी आपको प्रदान किए गए हैं। साथ ही आपको पीएम मोदी का मिशन इनोवेशन नेशनल चैंपियन का भी अवार्ड दिया गया।
1: हाँ जी,
0: उसके अलावा ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी जिसमें आपके पूरे करियर में लगातार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आप हासिल करते रहे अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। उसके अलावा हम और भी और चीज़ें हैं जो हमें आपके बारे में पता लगी हैं, क्योंकि आप कमीशन हुए थे कोर खरेजमेंट में
1: हाँ जी,
0: 1999 में, फिर उसके बाद आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया और आपने 10 साल से, करीब 10 साल आपने वहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रदान की और काउंटर इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर।
1: हाँ जी,
0: तो ये बहुत ही एक ना वैरायटी वाला और बहुत ही अलग अलग तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक
1: हाँ
0: आर्मी
1: जी,
0: ऑफिसर, फिर उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबा समय दिया है, सर्व किया है आपने, और जिस टाइम पर आप कमीशन हुए उस टाइम पर कारगिल वॉर का मेरे ख्याल से टाइम था।
1: बिल्कुल। हम जब कमीशन हुए 99 जून में, कारगिल वॉर चल रहा था।
0: अच्छा
1: तो जब हमारी कमीशनिंग परेड थी, हम सारे बहुत एक्साइटेड थे कि अब लड़ाई में जाने को
0: हम भी
1: मिलेगा।
0: जाएंगे। अच्छा
1: मुझे याद है कि स्टार न्यूज़ ने एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट को भेजा था हमें इंटरव्यू करने के लिए,
0: ओके
1: और जो जो लड़के इन्फेंट्री में गए थे, जो वहाँ पे लड़ाई के लिए जा रहे थे, यूनिट्स थी, तो उनका उन्होंने हमारा अलग से इंटरव्यू लिया था कि आप
0: अच्छा
1: लोग लड़ाई में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है। तो हम सारों का एक ही जवाब था, बहुत एक्साइटेड है, जल्दी भेजिए। लेकिन
0: जी
1: लेकिन लेकिन जब तक हम कमीशन हुए, एक्चुअली सीज फायर अनाउंस हो गया।
0: अच्छा
1: तो ये हम अपना, ठीक है, देश के लिए युद्ध ना होना एक तरह का अच्छी, लेकिन पर्सनली आपस में ये है कि हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि मैं उस लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं मिला।
0: हाँ, मतलब एक फौजी
1: बिल्कुल,
0: है और
1: हाँ जी,
0: वो चाहता है कि मैं किसी तरह से मैं लड़ाई का
1: बिल्कुल।
0: हिस्सा बनूं।
1: इससे बड़ा टेस्ट क्या
0: जी
1: है हमारे लिए कि लड़ाई में लड़ने का मौका मिले।
0: बिल्कुल।
1: तो वो यूँ लगा लीजिए 2-3 हफ्ते से हम मिस कर गए थे
0: अच्छा,
1: चीज़ें।
0: और सर ये भी है कि उस कारगिल वॉर में जो लोग, जो फौजी शामिल थे उस वॉर का हिस्सा थे, जिसमें से काफ़ी सारे जो फौजी थे उनको शहादत भी हुई, तो वो आपके इमीडिएट सीनियर भी थे, मतलब आपसे उनकी अच्छी खासी, जब आप ट्रेनिंग में थे तब उनसे
1: हाँ जी,
0: मिलते
1: हाँ
0: थे,
1: जी,
0: बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल। बहुतों बहुतों को हम बहुत अच्छे से जानते थे। हमारा वो हमारे से 1 या 2 कोर सीनियर्स थे। काफ़ियों को हम एनडीए में मिले थे, कुछ को आईएमए में जानते थे। जो फेमस कैप्टन विजयन थापर थे,
0: जी
1: वो मेरे साथ वाले कमरे में रहते थे। और मुझे याद है मैंने उनसे, जब वो पास आउट होके जा रहे थे, वो 6 महीने पहले पास आउट हुए थे, तो
0: अच्छा
1: मैंने उनसे, उन्होंने मेरी कैसेट ले रखी थी माइकल जैक्सन की। तो मैंने कहा
0: अच्छा
1: सर कैसेट तो वापस कर जाओ। कहते अरे यार जब नेक्स्ट मिलेंगे तब दे देंगे। मतलब
0: ओके
1: आज भी वो बात याद है। उसके बाद फिर तो
0: बिल्कुल
1: हमें यही पता लगा कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया।
0: जी
1: सुमित रॉय, विक्रम बत्रा, ये सारे
0: विक्रम
1: हमारे
0: बत्रा।
1: सीनियर्स थे।
0: अच्छा
1: और मतलब देश इनके बारे जितनी बात करे उतनी कम है। इतनी यंग एज पर, आप किसी भी वॉर में देखिए, इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स की जो रेशो ऑफ सेक्रीफाइस है, वो किसी भी देश से ऊपर मानी जाती है। क्योंकि जब हम लोग पहुंचते हैं
0: जी
1: तो सारे टैक्टिक्स एक तरफ, हम कहते हैं हम ही चार्ज करेंगे। आप हम अपने जवानों को सभी यही बोलते हैं, मेरा पीछा मेरा। तो इसीलिए ये एक प्रिंसिपली हमारी आर्मी बहुत, ना केवल प्रिंसिप एथिकली बहुत
0: एथिकली और साथ ही
1: इज़ वेरी
0: साथ
1: वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्लेस्ड, लेकिन उसका ये भी कारण है कि जितने यंग ऑफिसर्स जाते हैं, उनमें से
0: जी
1: कोई ऐसा नहीं होता तुम आगे चलो हम तुम्हारे, हम
0: हम
1: कहते हैं
0: आगे
1: हम
0: चलेंगे।
1: आगे चलेंगे तुम हमारे पीछे चलो।
0: क्या बात है, ये जज्बा तो सर काबिले तारीफ है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां और यादगार किस्से हैं जो हम मेजर मानिक के साथ डिस्कस करेंगे आज के संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही एक चीज़ और आपको मैं बता दूंगा कि जिसमें हम आगे बात करेंगे कि मेजर मानिक ऑथर भी हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो हमारे साथ है मेजर मानिक एम जौली, इंडियन आर्मी से सेना मेडल से सम्मानित। आज के रहेगी बात जारी संदेश टू सोल्जर्स में।

0: के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान मेजर मानिक एम जॉली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट मिलिट्री इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट इनोवेटर, मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट, नेत्रम डिफेंस रिव्यू के फाउंडर हैं और साथ ही सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में कश्मीर में इन्होंने ट्रूप्स को भी कमांड किया है। हम एक बार फिर स्वागत करेंगे मेजर मानिक जॉली का। सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: थैंक यू सर। थैंक यू
0: सर। मैं आपके बारे में जब बात करना शुरू करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन उसके बारे में हम साथ साथ बात करते रहेंगे। पहले सर मैं आपके वो जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके बारे में जानना चाहूँगा। आपको पहला सेवा मेडल से सम्मानित किया गया जो गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है आर्मी का, तो वो किस तरह से और किस उपलक्ष्य में आपको दिया गया?
1: ये मेरी नौकरी का पहला दूसरा साल ही था। मैं यंग कैप्टन था और कुपवाड़ा में हम लोग तैनात थे। मेरी गोरखा रेजिमेंट यूनिट का हिस्सा था मैं
0: जी।
1: तो मेरी जो यूनिट है फर्स्ट बटालियन फोर्थ गोरखा राइफल्स, तकरीबन 200 साल पुरानी हो जाएगी थोड़े दिन में।
0: ओके।
1: वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स। तो बहादुरी और ड्यूटी हमारे रग रग में तैयार किया जाता है। तो उसमें हमारी यूनिट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा था, हमने 1.5 साल में तकरीबन 100 टेररिस्ट मारे थे।
0: ओके।
1: तो यूनिट को भी साइटेशन मिला था। तो हमने बहुत ऑपरेशंस करे, उनमें से एक ऑपरेशन में मुझे अवार्ड मिला था जिसमें टेररिस्ट ने हम पर हमला किया था जंगल अच्छा। में, और उन्हें हमारे भी एक सैनिक शहीद हो गया था। फिर उन टेररिस्ट को मार के अपने शहीद सैनिक की बॉडी वापस लाने के लिए मुझे अच्छा। सेना मेडल दिया गया था।
0: तो ये पूरा एक मिशन रहा होगा जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरा एक ऑपरेशन रहा होगा।
1: हाँ
0: तो सर वो तो बड़ा टफ और बड़ा ही खतरनाक रहा होगा, कुछ बताइए उसके बारे में।
1: देखिए जो ये ऑपरेशन है आज इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, मैं और यही बात आपके लिसनर्स को बताना चाहता हूँ
0: जी
1: कि हम सब अपने घर में बैठे हैं, FM सुन रहे हैं, बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े खा रहे हैं
0: जी।
1: पर यही टफ और डेंजरस मिशन इस टाइम लाखों सैनिक कश्मीर के जंगलों में और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में कर रहे हैं,
0: अभी भी कर रहे हैं अपनी
1: इस दिस वेरी मोमेंट एज वी आर स्पीकिंग, डेली करते हैं 365 दिन। तो एक सोल्जर की लाइफ किस सेकंड आपको जंगल में कहाँ टेररिस्ट मिल जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कभी कभी आप महीनों सालों भटकते रहते हैं, आपका इनकाउंटर नहीं होता, कभी आपके एक महीने में 4 इनकाउंटर हो जाते हैं। तो इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जीरो बट पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। सो व्हाट हैपेंस, आप जाते हैं, आपको इनकाउंटर हो गया, इसमें बड़ा चांस है आपने पहले उनको देख लिया, उन्होंने आपको पहले
0: अच्छा।
1: देख लिया, वो फायर करके भागना चाहेगा, वो रुक के लड़ना चाहेगा। बहुत इतने ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं, वो ऊपर है, आप नीचे हैं, आप नीचे हैं। तो इतने फैक्टर्स डिसाइड करते हैं उस इन दैट वेरी मोमेंट कि व्हाट विल बी द आउटकम, कि इस लड़ाई से कौन कैसे निकलेगा।
0: तो सर जब मिशन पर निकलते हैं सोल्जर्स हमारे निकलते होंगे तो वो ये पता होता होगा कि या तो मतलब जीत कर वापस आएंगे मार करके या फिर
1: शहीद हो गए। ये फौज का प्रिंसिपल है हमारे यहाँ, देर इज नो रनर्स अप, यू नो, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है इंडियन आर्मी में। हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, विक्ट्री और सेक्रीफाइस। सो आप अगर आपको कहा गया है, और कारगिल वॉर अगेन फिर से जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो यंग ऑफिसर्स इतने सेक्रीफाइस हुए, क्योंकि ट्रेनिंग डे पहले दिन हम 16 साल के होते हैं जब NDA ज्वाइन करते हैं।
0: अच्छा।
1: उस दिन से लेकर जब तक 4 साल ट्रेनिंग है, कमीशन होते, एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अपने देश के लिए, अपनी फौज के लिए, अपनी यूनिट के लिए, आपके ट्रेंच में जो साथी है उस बड़ी के लिए लड़ाई लड़नी है,
0: उस बड़ी के लिए।
1: या तो आप उसके लिए लड़ते हो, वो आपके लड़ता है, ऐसी टीम बनती है।
0: क्या बात है सर, मतलब वो आपके लिए जान कुर्बान के लिए तैयार है और आप उसके लिए एक दूसरे के लिए।
1: यही एक कॉन्फिडेंस है जो आर्मी लीडर्स को कॉर्पोरेट लीडर्स इतना फर्क बनाता है, क्योंकि एक एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है
0: जी।
1: उस जवान को पता है मेरा जो ऑफिसर है कभी ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि मेरी जान खतरे में आए।
0: क्या बात है सर,
1: अगर खतरा होगा तो खुद पहले जाएगा। और एक ऑफिसर को मालूम है कि जब तक मैं हूं ये मेरे जवान मेरे से आगे लड़ने को तैयार है। तो जब ये इस तरह की
0: ये जो जज्बा है,
1: हाँ जी जज्बा रहता है, तो सब एक से बढ़कर
0: एक दूसरे के लिए, अपने साथी के लिए, बड़ी के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं।
1: और कॉन्फिडेंस रहता है कि
0: कॉन्फिडेंस रहता है,
1: अपने सुपीरियर के ऑर्डर में पूरा फेथ है कि ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि मेरी जान खतरे में। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम दुश्मन को मारने के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं गिविंग लाइफ फॉर योर कंट्री इज एन ऑनर, तो लेट दैट ऑनर बी ऑफ एनिमी।
0: क्या बात है
1: वो
0: क्या बात।
1: हाँ, तो हमारा काम है जीतना, दुश्मन को मारना। तो एक बहुत ही अलग लेवल

0: की ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी डेवलप करी जाती है आर्मी में,
1: जी
0: इसी कारण वो ऐसे ऑपरेट करती है। अगर आप उस ढर्रे को कहीं और अप्लाई करना चाहेंगे जहाँ पे लाइफ एंड डेथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो ऑपरेट वो नहीं है, सक्सेसफुल होता
1: नहीं हो सकता सर। वही चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग कितनी टफ होती है एक आर्मी ऑफिसर की, लेकिन उस टफ ट्रेनिंग के बावजूद भी वो जो जज्बा है शायद वो उससे भी ज़्यादा भारी है उस पर, उस ट्रेनिंग पर वो जज्बा कि वो जो अपने नेशन अपने वतन के लिए देश के लिए अपने बड़ी के लिए अपनी यूनिट के लिए।
0: देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। वही भी हम एनडीए जाए 16-17 साल, इट्स अ जिसको बोलते हैं इंप्रेशनेबल एज। 16-17 साल में आप दुनिया को समझना शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अब जो लोग कॉलेज जाते हैं उनके चारों तरफ, फॉर एग्जाम्पल आज का देखते हैं इंस्टाग्राम पे वायरल रील बनाना,
1: बिल्कुल सर, सोशल
0: स्टूडियो
1: मीडिया
0: मूवी
1: पूरा पूरा
0: हीरो,
1: एकदम
0: यू नो हमारे आसपास क्या होता था, हम जहाँ ट्रेनिंग करते थे वहाँ लिखा था एक गोली एक दुश्मन, जो हमारे कमरों किल डेथ बिफोर इट किल्स यू, आई विल डाई फॉर माई कंट्री, चारों तरफ आप
1: वो
0: ऐसे,
1: मोटिवेटेड
0: हाँ
1: मतलब स्लोगन्स आपको मिल
0: या
1: रहे हैं।
0: आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो कि दिन रात आप एक ही चीज़ सोचते हो कि मैं इस देश के लिए बनाऊँ और अगर कभी जरूरत पड़ेगी
1: तो मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा
0: बिल्कुल विदाउट अ डाउट,
1: विदाउट अ डाउट,
0: ये
1: क्या
0: तो
1: बात है
0: इसमें कोई हेजिटेट नहीं करेगा कभी।
1: सर। बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें जो मैं आपसे आगे भी करूंगा। अभी एनडीए के बारे में आपसे पूछूंगा कि
0: हाँ
1: आपने
0: जी
1: उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या, जाहिर है वो वक्त बड़ा ही मेरे ख्याल यादगार होता है बडीज के साथ, और इंटरेस्टिंग भी, और कुछ शरारतें भी जरूर होती हैं उस जमाने में,
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो एज ऐसी
1: तो
0: होती है और टाइम ऐसा
1: और
0: होता
1: टाइम
0: है।
1: ऐसा होता है।
0: हाँ
1: तो हम अपने लिसनर्स को यहाँ बताना चाहेंगे कि आप हमें मैसेज करें, मैसेज बहुत सारे आ चुके हैं सर, मैं आपको बता दूं और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करके हमारे आज के गेस्ट मेजर मानिक एम जॉली से सवाल कर सकते हैं। नंबर है 9868107070। सर मैं सोचता हूँ कि आगे बढ़ूँ तो कुछ मैसेजेस तो मैं अभी ले लूँ। ये असम से सर मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, ये हितेंद्र दास हैं सर, आपको भी और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए हितेंद्र। और उसके बाद मैसेज आया है स्वतंत्रता दिवस का, सब सोल्जर भाइयों का हमारा सल्यूट, हमारे भारत माँ की रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान क्या श्रेष्ठ जीवन का संदेश है। कर्नाटका राज्य विजयपुर डिस्ट्रिक्ट आराकेरी गांव से, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, आरकेडी, पंडित चन्नप्पा सरवाड़ का सर ये मैसेज है।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद आपको भी।
1: और सर ये मैसेज है, हाय अमजय अहिरवार फ्रॉम मध्य प्रदेश, क्लास 12 सर ये स्टूडेंट है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, वॉट थिंग्स शुड आई रिमेंबर ड्यूरिंग प्रिपेरेशन एंड फॉर SSB इंटरव्यू, मेनली SSB गाइडेड फॉर सिविलियन। और अजय अहिरवार सर मध्य प्रदेश है सर, इनको कुछ आप गाइड करना चाहेंगे।
0: तो शायद वैसे तो ट्रेनिंग के लिए मतलब बहुत लंबा होता है, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो
1: जी
0: अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करके इंटरव्यू की तैयारी करके कुछ और बन के दिखाना चाहते
1: अच्छा
0: हैं और वो पक्का रेसिपी टू फेलियर है।
1: अच्छा
0: आप इंटरव्यू में जैसे हैं 100% वैसे रहिए और वो तो फिर इंटरव्यू पर है, वो आपको शेयर, दैट इज
1: ठीक
0: उसको कोई
1: ठीक
0: गारंटी नहीं कर सकता, पर अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो
1: जी
0: डेफिनेटली थ्रू नहीं होंगे। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कायम रखें,
1: जी
0: इंटरव्यू की
1: जो आप
0: तैयारी को
1: हैं,
0: जो आप हैं,
1: क्या बात
0: अगर
1: है।
0: आपको पिक्चर पसंद है आप बोलिए मुझे पिक्चर देखना पसंद है, ये मत
1: अच्छा
0: बोलिए
1: अच्छा
0: मुझे
1: अच्छा
0: बुक्स पढ़ना पसंद है, क्योंकि टेबल के उधर जो बैठे उसने बहुत
1: जी
0: बुक्स पढ़ी है, पकड़ लेगा
1: तो
0: आपको ये।
1: आपको जो आप हैं वही दिखाएं
0: बिल्कुल
1: वहां पर
0: बिल्कुल
1: सर। एक और मैसेज है, जय हिंद सर जी, जय हिंद मेजर साहब, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से मैसेज कर रहे हैं सर ये। और सर ये हैं
0: आपको
1: संदेश
0: भी जय हिंद।
1: जी, शो बहुत खूबसूरत शुरू है जी, दिल को छू लेने वाली बेहद खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं। शाहिद जी नमस्ते, मानिक सर नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं सर ये मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, जय हिंद। और सर ये एक और मैसेज आ गया है, जय हिंद मेजर साहब, कारगिल वॉर तो हमने नहीं देखा है, मूवी में देखा है, लेकिन आपके जरिए हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। एडवांस 80th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, वंदे मातरम। रोहित मेहर हैं सर ये, बुदापाली विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सबको जय हिंद।
1: और सर सभी लोग इस वक्त जो है देशभक्ति के जो ना उसमें सराबोर हैं, जुनून में, जोश में, क्योंकि 15 अगस्त बस अब परसों नज़दीक ही है, और ये स्वतंत्रता दिवस जो हमें याद दिलाता है कि जो कुर्बानियाँ दी गई इस देश की आज़ादी के लिए, उन सबको हम याद करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे सर, हम बात करेंगे अब एनडीए की। आपने एनडीए में जब आप आए तो क्या माहौल था वहाँ पर, नया नया एक्सपीरियंस कैसा लगा, एक 16 साल के जब मानिक वहाँ पर आ रहे थे तो।
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत देखिए एक तो आप घर से पहली बार बाहर गए होते हैं और घर से पहली बार बाहर जाके आप किसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप
1: अच्छा
0: बिल्कुल एक वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री एकेडमी में चले गए
1: जी
0: जहाँ पे डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट,
1: बिल्कुल
0: आपका आपसे 6 महीने सीनियर वो आपके लिए

0: भगवान की तरह है, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा
1: बिल्कुल
0: फिजिकली, इट्स वेरी स्ट्रेनिंग। वैसे तो मैं स्पोर्ट्स में था लेकिन
1: अच्छा
0: एनडीए का अलग लेवल होता है, तो शुरू में आपको यू नो रूटीन इज़ वेरी टाइट, फिजिकली इतना डिमांडिंग है,
1: जी
0: तो एक बार तो हर कोई हिल जाता है
1: बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स में तो आप थे, लेकिन वो
0: या
1: स्पोर्ट्स अलग है जो हम स्कूल में करते हैं या
0: बिल्कुल।
1: आपने, लेकिन जो आप एकेडमी में कर रहे हैं।
0: बट हमारे स्कूल में बाई चांस स्पोर्ट्स की अच्छी लेगेसी थी, तो मेरे को फिजिकली तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई परफॉर्म करने
1: जी
0: में, बट ये है कि शुरू में जाके क्योंकि हम

0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो आप एकेडमी में कर रहे हैं।
0: बट हमारे स्कूल में बाई चांस स्पोर्ट्स की अच्छी लेगेसी थी, तो मेरे को फिजिकली तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई परफॉर्म करने
1: जी
0: में। बट ये है कि शुरू में जाके, क्योंकि हम यू नो अपने घर पे रहे थे, कई बच्चे सैनिक स्कूल से आते हैं, उनको थोड़ी
1: जी
0: आदत होती है।
1: ओके
0: हम पहली बार घर से आए थे, मुझे याद है कि पहले 1-2 हफ्ते में घर की बहुत याद आती है, क्योंकि
1: जी
0: चारों तरफ हर कोई आपको खाने को दौड़ता है एनडीए में, और घर पे तो जो भी है आपको
1: बिल्कुल
0: सारी
1: जाहिर है प्यार
0: सहूलियतें हैं,
1: से,
0: प्यार है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मैं एक बार काफ़ी दुखी बैठा था अपने रूम में, तो मेरे एक सीनियर आए, वो सीनियर मोस्ट थे, 6th टर्म में थे वो। तो क्या क्या हुआ? मैं कहा सर घर की बहुत याद आ रही है। तो कहते चिट्ठी लिखो।
1: अच्छा
0: तो मैं आपको बस बता रहा हूँ बस सोच कैसे होती है। मैं कहता सर चिट्ठी तो लिख चुका। कहते इधर आओ। मुझे अपने रूम में लेके गए,
1: जी
0: अपना परफ्यूम निकाला अच्छा सा, मेरे पे स्प्रे करा, कहते बस अब खुश हो जाओ, यही खुशी है। तो वही
1: जी
0: तुम्हें ऑर्डर है खुश होने का। मैं ठीक है सर। तो और उसके आई थिंक बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वी हैड वाज, हमारे टाइम वहाँ पे मेजर साहब पिक्चर की शूटिंग हुई थी।
1: अच्छा मेजर साहब अमिताभ बच्चन
0: हाँ जी।
1: और अजय देवगन। जी
0: तो उस थोड़े महीनों के लिए एकेडमी का में इतने फनी इंसिडेंट्स हुए थे,
1: अच्छा तो कई महीने वो शूट चला था।
0: आई थिंक दो तीन महीने तो चला था मेरे ख्याल से। तो
1: अच्छा
0: उसमें क्या हुआ कि 1-1.5 महीने तो चला था फॉर श्योर।
1: जी
0: अकेडमी ने मना कर दिया कि हम अपने कैडेट शूटिंग के लिए नहीं देंगे।
1: ओके
0: तो जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो बॉम्बे से यंगस्टर्स को लेके आए, उनको तो 150 चाहिए थे, उन्होंने हमारे जैसी यूनिफॉर्म पहनाई
1: ठीक है
0: और उनसे परेड वरेड कराते थे और उनके शूटिंग वूटिंग के लिए यूज़ करते थे।
1: ठीक है।
0: लेकिन अब एकेडमी में ऐसा हो गया, जब भी आपको कोई सीनियर पकड़े इधर आओ, जूनियर यू, हम तो मुंबई से आया है तो शूटिंग वाला है। तो काफी क्योस मचा हुआ था उन दिनों।
1: अच्छा
0: थोड़ी देर में सब सॉर्ट आउट हो गया और फिर एक दो सीन थे, जैसे क्रॉस कंट्री का सीन है जिसमें एक पहाड़ी के ऊपर वो दिखाते हैं अजय देवगन फर्स्ट आया,
1: अच्छा
0: तो उसमें उन्होंने हमारे कैडेट्स वगैरह को बुलाया था कि पीछे आप लोग भागना, लास्ट में ये आगे आके फर्स्ट आ जाएंगे।
1: ओके हीरो मतलब हीरो बन
0: हाँ
1: जाएंगे ठीक है।
0: हमारे कैडेट थोड़ा दिल पे लगे कि हमारे रहते कैसे फर्स्ट आ
1: अच्छा
0: जाएगा। वो आई थिंक 10-15 बार शूट करना पड़ा, हर बार हम आगे आ जाते थे कोई ना कोई। तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत, इट वॉज वेरी फनी। तो
1: अच्छा
0: हम लोग आई मीन काफ़ी क्लोजली शूट, मैं भी एक दो किसी शूट में हूँ, भीड़ में कहीं पे दिख रहा हूँ इधर उधर।
1: अच्छा हम सर मैं मूवी देखूंगा आपको देखने के
0: हाँ जी
1: लिए।
0: प्लीज। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी और
1: जी
0: उसका गाने भी, एक्चुअली इस मूवी के गाने भी बहुत अच्छे थे सभी।
1: हाँ गाने सर बड़े सुंदर गाने थे और सिंदूर सुंदर हीरोइन भी थी इसके अंदर
0: या
1: सोनाली बेंद्रे।
0: बिल्कुल
1: तो सर
0: बिल्कुल।
1: वहाँ पर गाने भी शूट हुए होंगे उसी एकेडमी में।
0: गाने शूटिंग हमने कभी देखे नहीं। आई
1: अच्छा
0: थिंक हमारे कुछ सीन्स वगैरह मैस के, पीटी ग्राउंड, क्रॉस कंट्री,
1: ये हुए
0: मिलिट्री हॉस्पिटल, ये सब होते थे। लेकिन और सोनाली बेंद्रे तो पूरी एकेडमी की फेवरेट थी।
1: अच्छा
0: मतलब आप आई डोंट नो लेट 90s में,
1: जी जी
0: एंड
1: जी
0: स्टिल टुडे शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस
1: यस
0: में,
1: ऑफ कोर्स
0: और वो एक्टिंग एज अ पर्सन शी इज सो नाइस। जिनसे मिली भी सब इतनी तारीफ करते थे कितने अच्छे से बात करती हैं। तो पूरी एकेडमी बस सारी
1: दीवानी थी।
0: दीवानी थी, कहीं जहां वो होती देखने भाग जाते थे।
1: तो मैंने तो सर आपसे बात करते करते ना वो एक सॉन्ग भी निकाल लिया है तो उसके बारे में बताइए सर कुछ कोई किस्सा किसी शूट के दौरान आपके सामने आया हो आपकी टीम के सामने आया हो।
0: हमें बस एक बार एक मिलिट्री हॉस्पिटल का वहाँ पे सीन है
1: अच्छा
0: मूवी में, तो जैसे ही होता था तो सारी एकेडमी में बात हो जाती, सोनाली बेंद्रे मिलिट्री हॉस्पिटल में आई है।
1: अच्छा
0: तो 1 घंटे में कई, मेरी टांग दर्द हो रही है, मेरी हाथ दर्द हो रहा है, वहाँ पे पहुँच गए बहुत सारे रिपोर्ट करने, सबको वापस भगा दिया था। तो
1: अच्छा
0: सब चलता रहता था वहाँ पे।
1: जी
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: अजय देवगन की कभी कोई शूट आपके आसपास आपके सामने कभी हुआ क्योंकि एकेडमी में ही शूट चल रहा था।
0: हाँ जी। वो ड्रिल ड्रिल में, पीटी में कई बार आते थे, बट आई मीन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट जो लेवल ऑफ फिटनेस, जो लेवल एनडीए कैडेट्स का होता है
1: बिल्कुल
0: वो फिल्मी हीरोज का नहीं होता। तो अक्सर मतलब थोड़ा सबड्यू करके, थोड़ा खर्च के उनसे करवाया जाता था ताकि
1: अच्छा।
0: फिल्मी इफेक्ट पूरा दिख जाए।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: रीटेक्स के साथ
0: हाँ
1: वो
0: जी।
1: सब ठीक से हो
0: पर मैं
1: जाए
0: आपको ये बता रहा हूँ, हमें बहुत अच्छा महसूस होता था। मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस होता था
1: कॉन्फिडेंस
0: कि बॉलीवुड वो बनने की कोशिश कर रहा है जो हम हैं,
1: जो आप हैं
0: जो एक कॉन्फिडेंस आता
1: बिल्कुल
0: है कि ये मतलब वो एक्टर्स हैं, ऑब्वियसली वो फौजी नहीं है, वो अंडर
1: बिल्कुल
0: ट्रेनिंग नहीं है, पर हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता था देख के कि हमने जो अचीव किया है, जो हमारी पर्सनालिटीज़ हैं, जो हमारा फिटनेस है,
1: फिटनेस है
0: वो लोग एज एन एक्टर बनने की कोशिश करते हैं टू मेक अ गुड मूवी। सो वो कॉन्फिडेंस आपके साथ सारी लाइफ रहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो मेजर साहब मैंने यहाँ पर ये उस फिल्म का जो आपके साथ यादों में जुड़ी हुई है
0: बिल्कुल
1: मेजर साहब उसका ये खूबसूरत ट्रैक निकाल लिया है और आपकी पसंद का भी है मेजर मानिक एम जौली हमारे साथ हैं सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। आप बने रहें हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में और मैसेज करते रहें।

0: शाहिद है आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जोली। इंडियन आर्मी वेटरन हैं, सेना मेडल से सम्मानित हैं और गोरखा राइफल और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे हैं। फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट इनोवेटर और मास कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के और सेलिब्रेटेड ऑथर भी हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बार बार अगर बताना भी चाहूँ तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो मेजर साहब, हम बात कर रहे थे सर आपके एनडीए के दौर की, वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्से आपने जो सुनाया और हमने गाना भी वो सुना, सोनाली बिंद्रे पर और अजय देवगन पर जो पिक्चराइज किया गया, आपने उनको देखा कि वो शूट के दौरान क्या क्या वहाँ पर इंसिडेंट्स हुआ करते थे। तो मैं आगे बढ़ूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्यों ना मैसेजेस ले लेता हूँ क्योंकि हमारे लिसनर इंपॉर्टेंट हैं, वो इंतज़ार कर रहे होंगे हम उनके मैसेज पढ़ के सुनाएं। सर मनीष इदरीसी का मैसेज है रामपुर बिलासपुर से। नमस्कार सर जी, नमस्कार मेजर साहब।
1: नमस्कार, जय हिंद।
0: ये मैसेज है, जय हिंद टू सर, आई एम अजय अहिवार फ्रॉम मध्य प्रदेश। फिर से आया इनका मैसेज और क्लास 12 प्रिपेयर्ड कर रहे हैं ये। फिर से मैसेज आया और हमने आपको बता दिया है, सर ने बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब ये मैसेज आया सर, संदेश टू सोल्जर्स, मेजर साहब जय हिंद। शो रोचक, ज्ञानवर्धक, लाभप्रद और सकारात्मक संदेश देने वाला है। मेजर साहब, इस शो से लोग इंस्पायर्ड होंगे, देशभक्ति का जज्बा कायम रहेगा, ये कह रहे हैं।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि हर दिल में देश प्रेम की आग सुलगती रहनी चाहिए। और ये एक आगे कुछ पंक्तियां लिखते हैं सर, अर्ज है, चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो ये हैं सर एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, जिन्होंने ये मैसेज किया है। और इसके अलावा मैसेज है, विलेज बरकतपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, स्टेट यूपी, नेम चरुण कुमार, आप सभी आर्मी ऑफिसर्स को मेरा जय हिंद सर।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और ये है सर, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, प्रोग्राम हमें अच्छा लग रहा है जी, खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं, करता हूं उन्हें सलाम ए वतन, सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।
1: भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत अच्छा मैसेज साहब
0: जी। सर मैसेज और भी हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ के सुनाई दूँ फिर आगे हम बातचीत करेंगे, बहुत सारे मैसेज हैं सर। ये बहुत लंबा एक मैसेज है, गुड आफ्टरनून टू यू बोथ सर, संदेश टू सोल्जर्स इज अ नाइस प्रोग्राम, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स सोल्जर्स एंड ऑल्सो योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, थैंक यू शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक एक्सपीरियंस स्पेशली रिगार्डिंग कारगिल वॉर, रिगार्डिंग योर अचीवमेंट एंड मेडल्स विच आर डिजर्विंग ऑन द 15th ऑफ आवर कंट्री इंडिया सेलिब्रेटिंग 80th इंडिपेंडेंस डे, ऑन दिस ओकेशन आई विश All Indians happy 80th Independence Day, भारत माता की जाए, अपना भारत महान है, वंदे मातरम, जय हिंद। फ्रॉम एम आर मधुसूदन, ये एम बी राजेश्वर, सन ऑफ एम बी राजेश्वर, दत्तर कॉलोनी नियर शिवालयम टेम्पल, सीता फल मंडी, सिकंदराबाद, तेलंगाना से सर ये मैसेज आया है।
1: थैंक यू,
0: काफी खूबसूरत और बड़ा लंबा मैसेज था ये। और ये है, जय हिंद सर, आपको और हमारे देश को समस्त जवान स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शबनम, बी के दत्त कॉलोनी, नई दिल्ली से।
1: धन्यवाद, आपको भी जय हिंद। और मैं बोलना चाहूँगा
0: जी जी जी
1: कि ये सारे अच्छे मैसेजेस सुन के, चाहे मैं अभी रिटायर्ड हूँ या सर्विंग
0: जी,
1: हो
0: जी,
1: किसी भी फौजी को बहुत अच्छा लगता है, जिसको बोलते हैं ना कि आपको पता है भाई हमारे देश में इतना प्रेम और रिस्पेक्ट है फौजियों के लिए।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल,
1: आप अपनी ड्यूटी करते हुए घबराते नहीं है, आपको पता है पीछे मेरा देश है,
0: पीछे मेरा देश है, देशवासी हैं सर, और देशवासी सर आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और सर हम आपके ऋणी हैं क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे देश के भीतर भी, देश की सीमाओं पर भी, देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो डेडिकेशन है देश और देशवासियों के लिए, तो वो सैल्यूट है सर हमारे सोल्जर्स को, इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स। सर मैसेजेस में लगातार अभी मैं सोचता हूँ रोक दूँ, अभी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं आपसे सर आगे बातचीत बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सर आपसे हम जानने के, फिर आप जब गोरखा रेजिमेंट में आप हुए कमीशन 1999 में,
1: हाँ
0: तो वो फिर जो सफर शुरू हुआ, हाँ अब आप बताएं कि फिर जिस तरह से आपका फिर आगे आप जाते हैं।
1: मैं तो फिर कमीशन कुपवाड़ा में था, कश्मीर में फॉरवर्ड एरिया है, वहाँ पे हमारा रोल या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कारगिल के एकदम बाद था।
0: अच्छा,
1: तो सीज फायर तो नहीं था, तो दिन रात गोलाबारी होती रहती थी।
0: अच्छा,
1: तो हम भी उन पर करते हैं, वो भी हम पर करते रहते हैं। उस टाइम ये क्रॉस बॉर्डर रेड बहुत होती, उन्होंने काफी सोल्जर्स हमारे उसमें भी शहीद हुए, लेकिन जो था मतलब वो एक सोल्जर के लिए एज अ सोल्जर
0: जी
1: एक एक्सपीरियंस था, कि आप किसके लिए सोल्जर बने।

0: अगर आपने लड़ाई नहीं देखी, अगर आपने गोलाबारी नहीं देखी, अगर आपने वो, तो इस हिसाब से फिर हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में चले गए,
1: जी
0: जहाँ पे हमने, मेरी यूनिट ने बहुत अच्छा करा, क्योंकि वो बहुत एक्टिव एरिया था,
1: अच्छा, मतलब
0: हम
1: सेंसिटिव एरिया था और
0: सेंसिटिव
1: हमेशा
0: एरिया।
1: कुछ ना कुछ हैपनिंग।
0: तो कुपवाड़ा बॉर्डर जो है, वहाँ से बहुत सारे लॉन्च पैड हैं जहाँ से पाकिस्तान टेररिस्ट अंदर भेजता रहता है,
1: ओके,
0: तो इस कारण वो बहुत एक्टिव एरिया माना जाता है वहाँ पे।
1: और वहां पर आपकी पोस्टिंग थी।
0: हाँ जी, तो आम आदमी एक्चुअली अक्सर जब भी आप बात करते हो, जंगल में टेररिस्ट ढूंढ रहे थे, पहाड़ में ढूंढ रहे थे,
1: जी
0: उसका स्केल समझ नहीं पाता कि
1: जाहिर है,
0: स्केल पे हम बात कर रहे हैं कि वो जंगल कितना बड़ा था।
1: अगर मैं इमेजिन भी करूं तब भी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता।
0: यूँ लगा लीजिए एक पूरा शहर जंगल है,
1: अच्छा
0: जिस शहर में आप लोग, आपके लिसनर रह रहे हैं,
1: जी,
0: वो पूरा शहर जंगल है, और आप 100 लोग हैं, आप
1: अच्छा
0: कितना ढूंढेंगे? और उसमें पहाड़ियां भी हैं, क्लिफ भी हैं, बर्फ भी पड़ी हुई है 20-20 फुट,
1: 20-20 फुट,
0: 20 फुट तो एवरेज आफ्टर स्नोफॉल होती है,
1: अच्छा
0: राइट? और आप 9,000 फीट से आपका बेस शुरू होता है, 15-17 हज़ार फीट तक जा रहा है, आपको सारा पेट्रोल करना है। तो अक्सर आपने देखा होगा फौजी से आप सब लोग पूछते हैं कैसा था ये था, वो कहते हैं हाँ ठीक था, अच्छा था।
1: तो यानी कि वो जो
0: ओनली
1: ठीक था
0: रीजन
1: कह
0: इज
1: रहे हैं वो,
0: समझा पाना पॉसिबल नहीं है कि वो किस तरह का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है।
1: सर मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा, वो आप बताइए
0: जी
1: प्लीज।
0: तो सी, जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे, क्लिफ्स हैं
1: जी
0: और बर्फ पड़ी हुई है, एक तो पीछे की तरफ पूरा जंगल है, चलने की जगह नहीं है, स्नो स्टॉर्म आ जाता है, ब्लिजर्ड आ जाएगा,
1: अच्छा,
0: उसके बाद ऊपर से टेररिस्ट है
1: जाहिर है
0: जो
1: जो
0: वेट कर
1: सबसे
0: रहा है,
1: बड़ा
0: जो, हाँ, जो वेट कर रहा है कि आप
1: वो
0: उसको
1: वेट कर
0: पहले
1: रहा
0: दिख
1: है
0: जाए।
1: जी,
0: खाना आपको हफ्ते में एक बार हेलीकॉप्टर से आता है,
1: एक बार
0: हाँ, जो भी फ्रेश राशन, वो आपको हफ्ते में एक बार मिल जाएगा, राइट? आपको अगर गर्म गर्म गर्म रहना है, ये 20-25 साल पुरानी बात है, तो उसमें कैरोसिन का स्टोव यूज़ करना पड़ रहा
1: ओके
0: है, मॉडर्न इक्विपमेंट उस टाइम नहीं थे।
1: जी
0: डेली आप, क्योंकि अनदर थिंग इज, ये कारगिल के एकदम बाद की बात है,
1: हाँ
0: तो इंडियन आर्मी ने, भारत सरकार ने डिसाइड करा कि कारगिल इसलिए हुआ था कि कुछ पहाड़ी हमने विंटर वैकेट करी थी तो पाकिस्तानी आकर बैठ गए थे,
1: ओके,
0: तो अब हम कुछ भी विंटर वैकेट नहीं
1: नहीं
0: करेंगे।
1: करेंगे, हम वहां पर भी अपनी ड्यूटी रखेंगे।
0: तो नेचुरली प्रेशर इज ऑन आर्मी। अब वो पहाड़ियां जहां पर हम आज तक गए भी नहीं थे, उनके
1: ओके
0: ऊपर छोटे छोटे टुप्पे, हिल, रॉक, वहां पे जाके नई पोस्ट इस्टेब्लिश करना, रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि आप अगर फौजी को ये भी बोल देंगे ना, चप्पल में जाओ फौज, बर्फ में जाके पोस्ट
1: जी,
0: बना लो, वो चला जाएगा।
1: अच्छा,
0: हमें आदत में नहीं होता है बोलना कि ये कंप्लेंट करे कि ये नहीं है, वो नहीं
1: एक्सक्यूज
0: है,
1: कुछ नहीं।
0: या तो उस हिसाब से काफ़ी डिफिकल्टी में सर्विस थी। और उस सारे में आपको अंदर आते हुए टेररिस्ट को भी रोकना है, जो अंदर आ गए उनको भी ढूंढना है,
1: अच्छा
0: आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो वहाँ पे जो गांव है, लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप, वो आपके देशवासी हैं,
1: बेशक,
0: आप नहीं
1: उनकी भी
0: चाहते,
1: हिफाजत।
0: हाँ, आपको ये नहीं चाहते वो सोचे फौज हमारे को परेशान कर रही है। तो इट इज़ अ वेरी हाई स्ट्रेस, वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। और एक ही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये इस तरह के मैसेजेस कि आपको बस
1: जहां से
0: ये,
1: हमारी बात शुरू हुई
0: हाँ,
1: थी,
0: कि मैं आपको यही बस, कि जो मैं कर रहा हूँ इस देश में उसकी वैल्यू है, ये लोग उसको मानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ,
1: जी, उनको
0: उनको
1: कदर
0: उस,
1: है इस बात की और उनको परवाह है कि भाई हमारा जो फौजी, हमारा
0: मतलब
1: भाई
0: मान लीजिए
1: है,
0: बात है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट दुनिया के एक तरफ, सारे लीडर ब्यूरोक्रेसी, और
1: बिल्कुल
0: फौजी
1: फौजी
0: एक तरफ,
1: एक
0: जो
1: तरह
0: प्यार हम फौज को मिलता है वो नहीं, और इसी कारण से
1: जी
0: आप कॉन्फिडेंटली देश सेवा में लगे रहते हैं।
1: बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये तो मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ। हम हर हफ्ते यहाँ पर संदेश टू सोल्जर्स में अपने जो हमारे आर्मी वेटरन्स हैं और जो सर्विस में भी हैं, फौजी आते हैं, तो उनसे मिलकर के वो जो देशभक्ति का जज्बा है ना सर, जो है ऑलरेडी, वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो बातें, वो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस, जो हम कभी ना महसूस कर सकते, हम कितना भी इमेजिन करने की कोशिश करें, जैसे कि आपने बताया अभी, वो हम कर ही नहीं सकते। और एक फौजी उसको एक्सप्लेन कर पाने में मतलब असमर्थ ही महसूस करेगा कि मैं कैसे बताऊं। तो ये एक अननोन सी, एक जो डेडिकेशन हम महसूस करते हैं कि वो हमारे फौजियों की है, तो वो सिर्फ एक दिल से जज्बा ही हम जाहिर कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर इसी दौरान, जैसे अब आप जब दूर होते हैं, घर से भी दूर होते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी लोकेशंस पर, ऐसे हालात में होते हैं जहां पर, जैसे आप, तो कितने टफ, तो फिर घर की भी याद आती होगी।
0: बहुत बिल्कुल। और ये दिस इज, वहाँ पे मोबाइल भी नहीं था,
1: और उस जमाने में तो
0: महीनों महीनों में बात होती थी, मैं 10-15 दिन बाद चिट्ठी आती थी,
1: 10-15 दिन में
0: क्योंकि
1: एक बार,
0: पहाड़ में वो एक खच्चर के ऊपर वो पोर्टल लेके आता था,
1: अच्छा
0: चिट्ठी दूर से दिख जाता था, 2 किलोमीटर दूर
1: मेरी
0: से आ रहा है, और सारे एक्साइटेडली बैठे रहे कि मेरी भी चिट्ठी
1: भी
0: आई है,
1: चिट्ठी
0: मेरी।
1: आएगी
0: तो जो आप फिल्मों में छोटा सा दिखाते हैं ना चिट्ठी का क्रेज, वो
1: जी,
0: मजाक नहीं है एक्चुअली,
1: अच्छा
0: आपको महीने में

0: पर चिट्ठी आनी है आपकी, और आपको लगता है यार कहीं से परिवार से, आपके दोस्तों से
1: दोस्तों
0: कुछ
1: से
0: खबर आए, तो लेटर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी वहाँ
1: क्या
0: पे।
1: बात है, मतलब
0: हाँ,
1: लेटर्स की हम आज
0: और
1: ये
0: 15 दिन से आप लिख रहे हो,
1: जी
0: आपको उसी डाक से वापस
1: वापस
0: भेज
1: भी
0: दिया।
1: भेजना है।
0: हाँ,
1: ओके
0: तो लेटर्स की बहुत वैल्यू। तो उस टाइम एक रेडियो कैसेट ये सब होता था,
1: अच्छा,
0: तो आपके पास कुछ कैसेट्स बाई चांस जो आपके साथ ऊपर चली
1: ऊपर
0: गई,
1: चली गई।
0: वो नेचुरली या तो आपकी फेवरेट बन जाती थी क्योंकि
1: हाँ,
0: और कुछ
1: सुनते
0: था
1: सुनते, क्योंकि
0: नहीं,
1: और कुछ है ही नहीं।
0: या रेडियो सुनते थे कभी अपना कभी पाकिस्तान का,
1: अच्छा,
0: दोनों कैच करते, तो बस कुछ गाने आपके फेवरेट बन जाते हैं, आप वो सुनते रहते
1: तो
0: हैं।
1: उसमें से कुछ बताइए सर।
0: तो एक उस टाइम मेरा फेवरेट बहुत अभी भी आज भी है, एक रुस्तम सर आपका पुराना गाना, फिर तुम्हारी याद आई ऐ
1: अच्छा
0: सनम, और उस गाने की एक्सटेंडेड वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो सोल्जर्स गाना गा रहे हैं,
1: ओके,
0: ये सेनापति जो है किले पे खड़ा है और नीचे
1: अच्छा
0: उसके जवान गाना गा रहे हैं, और अपने यू नो
1: परिवार को
0: परिवार को याद करते हुए, गर्लफ्रेंड को बीवी को याद करते हुए
1: क्या
0: गा रहे हैं।
1: बात है।
0: तो द होल सेटिंग ऑफ द सॉन्ग इस तरह से है कि वो सिर्फ लव सॉन्ग नहीं है, इट इज
1: जी
0: लॉन्गिंग ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हैं
1: जी
0: वो उसको याद कर रहे हैं
1: उसको
0: जिसको
1: याद
0: मिस
1: कर
0: कर
1: रहा
0: रहे
1: है,
0: हैं।
1: क्या बात है।
0: अगर
1: तो मैंने सर ये आपके कहते कहते ही सॉन्ग निकाल लिया है।
0: जबरदस्त
1: मेजर मानिकम जॉली आज के संदेश सुन के हमारे खास मेहमान, सेना मेडल सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, और मेजर मानिक की पसंद का ये ट्रैक आप भी एंजॉय करें हमारे साथ, बने रहें संदेश सोल्जर्स में, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आप सुन रहे हैं शाहिद की आवाज़, और मेरे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जौली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। और ये गाना मेजर साहब की पसंद से हमने सुना सुस्तम सौराब से। सर, यहाँ पर बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो तो उतना शायद जोशीला नहीं था, लेकिन जिस जोश से हम आगे बढ़े हैं तो प्रोग्राम खत्म होने का समय आ गया और अभी मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए बची हुई हैं, तो मैं मैसेजेस जो ऑलरेडी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए मैं उनको बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे ये जानना चाहूँगा मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी आपने एक काफ़ी बड़ा समय दिया, एक बड़ा रोल प्ले करा, तो वो क्या था एक्सपीरियंस आपका, उसके बारे में बताइए।
1: तो शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस में आप वॉलंटियर करते हैं कि मैं इसमें सर्विस करना चाहता हूँ, आपको 2 साल का प्रोबेशन रखते हैं वो।
0: अच्छा,
1: तो अराउंड 10-11 साल मैं MI में था, तो वहाँ पे मैं काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट था।
0: अच्छा।
1: और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, काउंटर इंटेलिजेंस की हमारी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए।
0: ओके।
1: इंटेलिजेंस जैसे होती है उनकी खबर लें, तो अलग अलग डोमेन में, और नॉर्थ मेरा डोमेन था तो उसमें वही नौकरी करी मैंने ज़्यादा, काफ़ी ऑपरेशंस किए हमने, काफ़ी देश में जो जासूस घूम रहे हैं काफ़ी पकड़े हैं।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह से मेन टास्क हमारा फिर ये होता है कि
0: कोई अगर इंट्रूडर है,
1: हाँ जी,
0: तो उसका पता लगाना और उसको पकड़ना।
1: या और हमारे जो बेसिकली कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस का बेस इज कम्युनिकेशन, वहां से खबर आती रहे और यहां से खबर ना जाए। बाकी सारी दुनिया इसके अराउंड बनी हुई है, ये ये दो पिलर हैं। सो अपना अपना रोल सब प्ले करते हैं। तो उसमें मैंने मैंने स्पेशलाइजेशन थी मेरी कम्युनिकेशंस की, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, जो अभी मैं पढ़ाता हूँ और फौज छोड़ने के बाद तब से वही करते हैं
0: जी। तो सर, इसमें जो जो साइबर सेल का भी जो रोल रहता है, वो भी आपने सेटअप किया, उसमें भी आप शामिल रहे।
1: तो 2001-2002 में जब नया नया इंटरनेट आना शुरू हुआ था, तो सबको समझ आया था कि इंटरनेट से कम्युनिकेशन अब होगा।
0: ओके। उस जमाने की बात,
1: हाँ,
0: है।
1: चिट्ठी फोन पे चल रहा था सारा
0: जी
1: काम।
0: जी जी।
1: तो उस टाइम देश का, आर्मी का रादर पहला साइबर सेल पुणे में मैंने सेटअप करा था। मैंने एक दो कोर्स करे थे, स्पेशली कोर्स करवाए साइबर इन्वेस्टिगेशंस के, एथिकल हैकिंग के, तो हमने समझा कि ये कैसे। तो उससे काफ़ी आर्मी है, आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी नहीं आती है पहले पकड़ने की कोशिश करती है।
0: ओके।
1: ताकि हमें एक स्टेप आगे रहे। तो फिर हमने साइबर सेल, साइबर पॉलिसी, इस पर काफ़ी काम किया।
0: अच्छा।
1: तो वो आज तक चल रहा है और काफ़ी अब तो बहुत डेवलप्ड है, पूरी डोमेन है।
0: बिल्कुल।
1: तो उस टाइम तो नया नया
0: था, तो जाहिर है टफ भी रहा होगा उस टाइम पर, उसको सब मतलब स्ट्रीमलाइन करना, उसको एस्टैब्लिश करना,
1: समझने में टाइम लगता था,
0: समझने में टाइम
1: कैसे होता है
0: जी। तो सर, अभी ये सब चीजें तो हो गई आपकी,
1: ये वो वाला जमाना था शायद जब आप किसी से ईमेल मांगते थे, वो ईमेल के साथ पासवर्ड देता था।
0: अच्छा।
1: मैं सच बता रहा हूँ, तो लोगों ने कहा पासवर्ड क्यों दे रखा था, फिर वो चेक कैसे करेगा।
0: अच्छा।
1: मतलब लोग धीरे धीरे समझ आए
0: कि भाई ये जो साइबर है ये किस तरह से काम करता है और इसमें कैसे सिक्योर रह सकते हैं। सर, इन सब चीजों के साथ साथ आप जो हैं ऑथर भी हैं, आपने किताब लिखी है कुपवाड़ा कोड्स, और इसके बारे में जरूर बताइए, इतना सब आपने किया, आप एक डायरिंग आर्मी ऑफिसर, इंटेलिजेंस पर आपने काम किया, काउंटर टेररिज्म पर आपने काम किया, आपको सेना मेडल से और दूसरे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, आपको PM मोदी के मिशन इनोवेशन के नेशनल चैंपियन के तौर पर भी आपको सम्मानित किया गया, अब आप ऑथर भी बन गए।
1: जी, तो ये अभी मैंने 1 साल पहले लिखी थी, तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऑपरेशंस को इकट्ठा करके मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, गोरखा गैरिसन।
0: अच्छा।
1: जिसमें गोरखा यूनिट और कुछ इंटेलिजेंस वाले जम्मू कश्मीर में ISI और टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं।
0: अच्छा।

0: तो ये एक स्टोरी है,
1: ये एक पूरी ये
0: सीरीज
1: सीरीज,
0: है।
1: ये फर्स्ट बुक थी उसकी, कुपवाड़ा कोड्स,
0: ओके,
1: जो कि पिछले साल आई थी और हार्पर कॉलेज के साथ है।
0: क्या बात है। तो सर, क्या आप चाहेंगे कि इसको मतलब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म या कहीं पर देखें इसको, अगर आप पिक्चराइज किया जाए इसको, फिक्शन?
1: इट इज अ वेरी गुड स्टोरी, आई होप किसी दिन इस पर कुछ बने।
0: जरूर सर, जरूर, हमारी शुभकामनाएं हैं और हम जरूर चाहेंगे कि इस पर अच्छी आपके एक्सपीरियंसेस के साथ, जो इसमें एक्सपर्टीज के साथ जो आपने लिखी है ये, उसको जरूर पर्दे पर, छोटे पर्दे पर ही सही लेकिन उतारा जाए और हम उसको देख पाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी आपने बातें करी, इतने अच्छे एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर करे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला और 80वां देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उसकी भी बहुत बहुत तमाम देशवासियों को, हमारे सुनने वालों को, और मेजर मानिक आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। जाते जाते जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते मैं सर आपसे अब ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कम से कम एक आपकी पसंद का गाना जरूर चलाऊं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपके दिल से करीब है।
1: तो मैं आपको बताता हूँ, जब एनडीए में थे तो एक पिक्चर रिलीज हुई थी बॉर्डर,
0: बॉर्डर जी बड़ी फेमस,
1: तो उसका गाना था संदेश से आते हैं
0: जी।
1: संडे को दोपहर को हर कमरे में गाना चल रहा था।
0: अच्छा।
1: और इस गाने, आई डोंट थिंक फौजी लाइफ, फौजी इमोशंस को इस गाने से अच्छा कोई कैप्चर करता है।
0: क्या बात है सर।
1: तो मैं फर्स्टली आपको थैंक यू, आपके सभी लिसनर्स को जय हिंद।
0: सर लिसनर्स तो हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं और मैसेजेस आ रहे हैं।
1: हाँ जी, और स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए। यहां पर मेजर मानिक एम जॉली की पसंद का ये गाना हम छोड़ करके जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सर को जाते जाते जो मैसेज कुछ एक तो मैं कम से कम पढ़कर सुनाई दूं। सर हेड्स ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस शेयरिंग, विश वन लाइफ वी गेट अ चांस टू लिव 1% ऑफ योर लाइफ, प्लीज शेयर योर बुक फ्रॉम यूएसए न्यू जर्सी। ये मैसेज आया है किसी का और इनका नाम मुझे नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन इन्होंने सर बड़ा दिल से मैसेज कराया।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर मैसेज। जय हिंद आपको भी।
0: और सर ये मैसेज है, सर कैन वी ज्वाइन सीक्रेट सर्विस थ्रू एनडीए और आफ्टर एनडीए, ये पूछ रहे हैं सर। समय हालांकि खत्म हो गया लेकिन मैं क्या करूं।
1: हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर, आप फौज में जाइए और कुछ भी ज्वाइन करें।
0: और सर ये मैसेज है, हेलो सर, एनडीआर एंड आरजे एंड मेजर सर, जय हिंद जय भारत सर। जैसे आप जैसे महानुभाव की बातें सुनकर यूथ बहुत इंस्पायर होते हैं, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। आप सदा स्वस्थ रहें। मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से सर ये मैसेज आया सर आपके शहर से।
1: वाह, हमारे शहर से आया
0: जी।
1: भाटिया जी थैंक यू वेरी मच, जय हिंद आपको भी।
0: और सर मेजर साहब को विजय कुमार त्रिचुरपल्ली की ओर से जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं सर। विजय कुमार है ये।
1: आपको भी विजय जी जय हिंद आपको भी।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर एम जॉली हमारे साथ थे आज, वेटरन इंडियन आर्मी, सेना मेडल से सम्मानित। और आप सुन रहे थे संदेश सुदर्श शाहिद के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर, ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी

के प्रयागराज केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहली पेशकश है द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से सोनू निगम, मोहम्मद वारिस और आनंदी जोशी की आवाजों में ए आर रहमान की धुन पर ये रचना।

0: आप सुन रहे थे सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम की आवाजों में बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म से ये गीत। गीत रचना थी जावेद अख्तर की और संगीत था ए आर रहमान का।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर और अंत में आपको सुनवा रहे हैं रंग दे बसंती फिल्म से लता मंगेशकर और ए आर रहमान की आवाज़ों में प्रसून जोशी का लिखा गीत। संगीत है ए आर रहमान का।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम इसी गीत के साथ समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवजन सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे

0: वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे श्रोता साथियों, समय हो चला है आपसे बात करने का, कुछ कहने का और कुछ सुनने का। मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट एंड दोस्त अभिषेक।
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त उन्नति।
0: और आप सुन रहे हैं युवाओं की अपनी चहकती आवाज़, योर फेवरेट प्रोग्राम युववाणी। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास एपिसोड में।
1: और साथियों, आज की हमारी बातचीत होगी उस दुनिया पर जिसमें हम सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक किसी न किसी रूप से जुड़े रहते हैं।
0: दोस्त, लोग हमारे समझ गए होंगे उन्नति, हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वो दुनिया है सोशल मीडिया की दुनिया, जहाँ एक क्लिक पर खबर, मनोरंजन, शिक्षा, दोस्ती और दुनिया भर की जानकारी हमारे सामने होती है।
1: लेकिन सवाल है, क्या सोशल मीडिया युवाओं के लिए अवसरों का दरवाज़ा है या चुनौतियों का जाल? तो हम ये कह सकते हैं कि शायद दोनों है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है।
0: बिल्कुल दोस्तों, आइए आज इसी सवाल पर करते हैं खुलकर बातचीत, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए साथियों, आज हमने बातचीत का विषय चुना है सोशल मीडिया, अवसर या चुनौती।
1: बिल्कुल श्रोताओं, आज सोशल मीडिया सिर्फ फोटो और वीडियो शेयर करने का माध्यम मात्र नहीं रह गया है। ये सीखने, कमाने, अपनी प्रतिभा दिखाने और अपनी पहचान बनाने का बड़ा मंच बन चुका है।
0: इसीलिए किसी युवा के पास अगर लिखने, गाने, अभिनय, फोटोग्राफी, डिजाइनिंग, पढ़ाने या किसी खास विषय का हुनर है, तो आज सोशल मीडिया उसे हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने का अवसर भी देता है।
1: बिल्कुल, अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो इसका काफ़ी महत्व बढ़ चुका है। ऑनलाइन लेक्चर्स, ई बुक्स, एजुकेशनल चैनल्स, करियर संबंधी जानकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी सामग्री युवाओं को घर बैठे उपलब्ध हो जाती है।
0: और बात करें अगर रोजगार की, तो सोशल मीडिया ने नए करियर भी डेवलप किए हैं जिसमें यूथ काफ़ी रुचि भी ले रहे हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप जैसे क्षेत्र युवाओं के लिए नई नई संभावनाएं उन्नति लेकर आए हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, यानी सही इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने, नेटवर्क बनाने और अवसर तलाशने का सटीक माध्यम बन सकता है।
0: बिल्कुल, और लेकिन ये भी बात है ना कि अगर हम बात करें उस एस्पेक्ट की जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा जब हम अपना समय बिताते हैं तो कहीं ना कहीं ये युवाओं की दिनचर्या और उनके स्वास्थ्य को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी करता है।
1: बिल्कुल सही कहा अभिषेक, लगातार स्क्रीन देखने से आँखों में थकान, शारीरिक गतिविधियों में कमी और नींद की दिनचर्या बिगड़ने जैसी परेशानियाँ हो सकती हैं, खासकर जब देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत बन जाए तो यह आदत कहीं ना कहीं आपको संकट में डाल सकती हैं।
0: और कई बार ऐसा भी होता है ना कि सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी का जो चमकदार हिस्सा हम देखते हैं, कहीं ना कहीं उससे हम डाइवर्ट होते हैं। अपनी तुलना हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं, जो कि कतई ठीक नहीं होता है। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि

0: ये जो चकाचौंध की आभासी दुनिया सामने हमारे इडियट बॉक्स यानी मोबाइल में दिखाई पड़ रही है, वास्तव में वो बिल्कुल ऐसी है नहीं।
1: बिल्कुल, लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स और दूसरों की उपलब्धियों की लगातार तुलना तनाव यानी स्ट्रेस को, बेचैनी को या अपने प्रति नकारात्मक भावनाओं को भी बढ़ा सकती है।
0: बिल्कुल
1: इसलिए समझना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं होती। जीवन वो है जिसे हम और आप वास्तविक धरातल पर जीते हैं।
0: बिल्कुल, वास्तविक धरातल पर जीते हैं और हमारा जीवन उन्नति तब और खुशनुमा, खूबसूरत और सुंदर बन जाता है जब हम उसमें छोटे छोटे ब्रेक्स, म्यूजिक, गीत संगीत को ऐड करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: क्यों ना
1: कहा।
0: अपने प्यारे श्रोताओं को सुनवाते चलें अपने प्रोग्राम का ये पहला गीत।

0: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया हमारे लिए अवसर है या चुनौती। तो हमने कई सारी बातें बताई, लेकिन अगर और कुछ चुनौतियों की बात करें तो साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी खबरें, गलत सूचना और निजी जानकारी की सुरक्षा उन्नति आज भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में
1: बिल्कुल
0: है। इसलिए किसी भी पोस्ट या खबर को साथियों तुरंत सच मानने के बजाय उसके रिसोर्सेज की जाँच करना बहुत ज़रूरी होता है। और अपनी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड और संवेदनशील जो तस्वीरें होती हैं उनको लेकर हमेशा

0: क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: बिल्कुल सही कहा। तो साथियों, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सोशल मीडिया पूरी तरह खराब है? जवाब है बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया का असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका कैसे, कितना और किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं।
0: यानी समस्या मोबाइल या सोशल मीडिया नहीं, बल्कि उसका असंतुलित इस्तेमाल है।
1: एग्जैक्टली। साथियों, सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं। पढ़ाई या काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक्स ले, पर्याप्त नींद ले, खेल कूद और शारीरिक गतिविधियों के लिए समय निकाले और परिवार और दोस्तों के साथ आमने सामने बातचीत को ज़्यादा महत्व दें।
0: और उन्नति, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि अपना ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, अपनी वास्तविक ज़िंदगी और अपने लक्ष्यों पर भी टिकाए रहें,
1: बिल्कुल
0: ताकि कोई भी चकाचौंध आपको अपने रास्ते से विचलित बिल्कुल भी ना कर सके।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन एक ज़िम्मेदार सोशल मीडिया यूज़र वही है जो पोस्ट करने से पहले सोचता है, क्या ये जानकारी सही है, क्या इससे

0: पर भी टिकाए रहें,
1: बिल्कुल
0: ताकि कोई भी चकाचौंध आपको अपने रास्ते से विचलित बिल्कुल भी ना कर सके।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन एक ज़िम्मेदार सोशल मीडिया यूज़र वही है जो पोस्ट करने से पहले सोचता है। क्या ये जानकारी सही है? क्या इससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है? क्या मेरी निजी जानकारी या पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो इससे प्रभावित हो रही है या नहीं?
0: और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डिजिटल दुनिया में हमारी गतिविधियों की एक डिजिटल पहचान भी बनती है, इसलिए ऑनलाइन व्यवहार भी उतना ही जिम्मेदारी से होना चाहिए जितना वास्तविक जीवन में हम दूसरों से व्यवहार रखते हैं।
1: बिल्कुल, और समझदारी की बात यह है कि किसी की तस्वीर या पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंसर्न व्यक्ति की परमिशन के बिना शेयर बिल्कुल ना करें, आपत्तिजनक टिप्पणी से बचें, फर्जी खबरें आगे ना बढ़ाएं, और अगर ऑनलाइन कोई परेशान कर रहा है तो उसे इग्नोर करने के बजाय ज़रूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति या संबंधित संस्था से मदद ज़रूर लें।
0: तो साथियों, सोशल मीडिया हमारे हाथ में मौजूद एक ऐसा औजार है जिससे हम अपनी दुनिया को बड़ा भी बना सकते हैं, और अगर सावधानी ना बरतें तो अपनी दुनिया को स्क्रीन तक सीमित भी कर सकते हैं।
1: इसीलिए डियर लिसनर्स, सोशल मीडिया से एकदम से दूरी बनाना भी ठीक नहीं है, बल्कि उसके साथ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इसलिए सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा नई चीज़ें सीखने के लिए इस्तेमाल करें,
0: हुनर दिखाने के लिए इस्तेमाल करें,
1: और डिजिटल युग में नए अवसर तलाशने के लिए इस्तेमाल करें।
0: लेकिन लेकिन लेकिन उन्नति ज़रूरी ये भी है कि अपनी सेहत, समय, रिश्तों और मानसिक शांति की कीमत के साथ समझौता बिल्कुल ना करें।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि असली सफलता सिर्फ ये नहीं कि आपकी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज़ आए, बल्कि असली सफलता ये है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद आपकी वास्तविक ज़िंदगी

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभिषेक, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो नज़दीक आ चुका है, काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और हवा में कहीं ना कहीं हमें देशभक्ति पता चल रही है। क्यों?
8: बिल्कुल, हवा में कहें कि वो गूंज, वो गीत संगीत हमें आजकल सुनाई देने लगे हैं, चाहे वो हमारे रेडियो स्टेशन के माध्यम से क्यों ना हो। हमारे डियर लिसनर्स इस स्वतंत्रता की खुशबू को महसूस कर रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ ही हमें याद आता है 15 अगस्त जैसे ही आता है, बचपन की वो यादें, स्कूल और मिठाई का वो डब्बा, हाँ, है ना, कितना उत्साह होता था।
7: हमारे स्कूल में परफॉर्मेंस होते थे, डांस होता था और पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह होते थे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वापस से हमें याद आने लगती है।
8: बिल्कुल।
7: लेकिन ऐसे में एक सवाल ये आता है कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में हमारा जो शहर है, हमारा प्यारा सा प्रयागराज है, इसमें क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा?
8: बिल्कुल, 15 अगस्त जैसा हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी अथक प्रयास और अपने संघर्षों से उन्होंने हमें और हमारे प्यारे से देश को आज़ाद कराया है, है ना।
7: और वो दिन था, हवा में हम सांस ले पा रहे हैं,
8: बिल्कुल ले पा रहे हैं, और वो आज़ादी की तिथि थी 15 अगस्त 1947 की, हम सभी जानते हैं। तो क्यों ना इसी विषय पर, क्योंकि हमारे देश

0: में जो प्रयागराज है इसका एक अलग ही स्थान रहा है क्रांति की दिशा में और क्रांतिकारियों की दिशा में।
1: बिल्कुल, तो हमारे दोस्तों को चलो बता देते हैं कि हम आज उनके लिए क्या खास लेकर के आए हैं। इस मौके पर हम उनके लिए लेकर आए हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयागराज का योगदान, और जिसकी वार्ताकार हैं दिव्या शुक्ला। तो आइए इस वार्ता के माध्यम से जानते हैं कि हमारे प्रयागराज का क्या योगदान रहा इस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में।
0: बिल्कुल,
2: सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार, मैं दिव्या शुक्ला। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत के उस ऐतिहासिक शहर की जहां केवल गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही नहीं होता था, बल्कि विचारों, आंदोलनों और बलिदानों का भी संगम हुआ था। एक ऐसा शहर जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना गया और आज हम जिसे प्रयागराज कहते हैं। लेकिन इस शहर की पहचान केवल संगम, कुंभ और साहित्य तक ही सीमित नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इलाहाबाद एक ऐसा केंद्र रहा जहां 1857 की क्रांति से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक स्वतंत्रता की चेतना लगातार दिखाई देती है। तो आइए इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटते हैं। बात सन 1857 की, जब देश के अनेक हिस्सों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह की आग फैल चुकी थी। इलाहाबाद भी इस संघर्ष से अछूता नहीं रहा। 1857 में ये स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। यहाँ सैनिकों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। इसी दौर में एक नाम विशेष रूप से सामने आता है, मौलवी लियाकत अली। ये इलाहाबाद के निकट महगांव क्षेत्र से जुड़े थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नेतृत्व किया। विद्रोहियों ने अंग्रेजी प्रशासन को गंभीर चुनौती दी। ये स्थानीय समाज के विभिन्न वर्गों में पैदा हुई उस बेचैनी की अभिव्यक्ति थी जो आगे चलकर स्वतंत्रता की व्यापक चेतना में बदल गई। आने वाले दशकों में ये भावना एक संगठित राजनीतिक आंदोलनों में बदलने लगी और इलाहाबाद इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। दिसंबर 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की और इसमें बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लेकिन इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन केवल एक बार नहीं हुआ, 1892 में कांग्रेस का आठवां अधिवेशन भी इलाहाबाद में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की। इन अधिवेशनों ने इलाहाबाद को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच बना दिया। अब यहाँ केवल स्थानीय मुद्दों की चर्चा नहीं होती थी, चर्चा होती थी भारत के राजनीतिक अधिकारों की, प्रतिनिधित्व की, स्वशासन की और अंततः स्वतंत्रता की। अब बात करते हैं उस स्थान की जिसका नाम इलाहाबाद के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है, आनंद भवन और स्वराज भवन। मोतीलाल नेहरू और उनका परिवार इलाहाबाद राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख केंद्र में रहा। स्वराज भवन में कांग्रेस से जुड़ी अनेक राजनीतिक गतिविधियां हुई और आनंद भवन राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं के विचार विमर्श का महत्वपूर्ण स्थान बना। यहीं पर बैठकर भारत के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा होती थी, रणनीतियां बनती थी और आंदोलनों की दिशा पर विचार किया जाता था। और इसी वातावरण में एक युवा राजनीतिक व्यक्तित्व तेजी से उभर रहा था, वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जीवन और इलाहाबाद एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने युवाओं और किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल भी उनके विचारों को रोक नहीं सकी। वे लिखते

रहे, सोचते रहे और भारत की भविष्य की कल्पना करते रहे। अहमदनगर किले में कारावास के दौरान उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। इससे हमें ये समझ आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल सड़कों पर होने वाला संघर्ष ही नहीं बल्कि विचारों और कलम का संघर्ष भी था। भारत की स्वतंत्रता की मांग धीरे धीरे सीमित राजनीतिक अधिकारों से आगे बढ़कर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में बदल रही थी। इलाहाबाद इस राजनीतिक विचार विमर्श का महत्वपूर्ण केंद्र था। मोतीलाल नेहरू से जुड़ी नेहरू रिपोर्ट 1928 भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण दस्तावेज बनी। इसमें भारत के लिए संवैधानिक व्यवस्था और स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया और कांग्रेस की राजनीति आगे बढ़ते हुए 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करने तक पहुंची। इस प्रकार इलाहाबाद की राजनीतिक चेतना उस विचारधारा के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा थी जिसने अंततः स्वतंत्र भारत की मांग को स्पष्ट रूप से दिखा दिया। इलाहाबाद की स्वतंत्रता गाथा में एक नाम ऐसा है जिसे याद किए बिना ये कहानी अधूरी रह जाती है। वो नाम है चंद्रशेखर आजाद, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने बहुत कम उम्र में अंग्रेजी शासन के सामने कभी न झुकने का संकल्प लिया। 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान जब वे गिरफ्तार किए गए तब वे किशोर थे। अदालत में उनसे उनका नाम पूछा गया। उन्होंने कहा, आजाद, पिता का नाम पूछा गया, स्वतंत्रता और निवास पूछा गया, जेल खाना। उनके ये उत्तर उनके व्यक्तित्व की दिशा को स्पष्ट करते हैं। बाद में वे क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तथा बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। क्रांतिकारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भगत सिंह और उनके साथियों के संघर्ष से भी जुड़े रहे। और फिर आता है 27 फरवरी 1931 का दिन, स्थान अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, जिसे आज हम सब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं। उस दिन आजाद वहां अपने एक साथी से मिलने पहुंचे थे। पुलिस को उनके वहां होने की जानकारी मिल गई थी और पार्क को घेर लिया गया। आजाद ने अपने साथी को निकलने का अवसर दिया और स्वयं पुलिस का सामना किया। उन्होंने अंग्रेजी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और 27 फरवरी 1931 को इस धरती पर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। चंद्रशेखर आजाद पार्क हमें केवल एक क्रांतिकारी की मृत्यु की याद नहीं दिलाता बल्कि हमें उनके अदम्य आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के संकल्प की याद दिलाता है। स्वतंत्रता आंदोलन को केवल शहरों तक सीमित रखना संभव नहीं था, उसे गांवों तक पहुंचाना था और इसी से एक महत्वपूर्ण नेता का नाम सामने आता है, पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्होंने किसानों व आम जनता की समस्याओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। 1930 में जवाहरलाल नेहरू व पुरुषोत्तम दास टंडन ने नेतृत्व में इलाहाबाद जिले में नो टैक्स अभियान चलाया गया जिसने किसानों को औपनिवेशिक कर व्यवस्था के विरुद्ध संगठित किया। इसका संदेश स्पष्ट था, स्वराज केवल राजनीतिक नेताओं का सपना नहीं बल्कि किसान और आम जनता का भी अधिकार है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं की। कमला नेहरू ने इलाहाबाद में राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और सत्याग्रह जैसी गतिविधियों में भाग लिया। पूर्णिमा बनर्जी इलाहाबाद की कांग्रेस राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़ी थी और इलाहाबाद सिटी कांग्रेस कमेटी की सचिव रही। किसानों और श्रमिकों के बीच राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना को पहुंचाने का काम किया। सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी। इस प्रकार इलाहाबाद की बहुत सी महिलाएं केवल आंदोलन की दर्शक ही नहीं थी, वे स्वयं आंदोलन की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्वकर्ता भी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल की भी भूमिका रही है जो अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की कैद की साक्षी बनी।

0: 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिरोज गांधी को नैनी सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। नेहरू सहित कई अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस जेल का सामना किया। जेल की दीवारें हमें याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता की कीमत केवल भाषणों में नहीं चुकाई गई, बल्कि लोगों ने अपना घर छोड़ा, व्यवसाय छोड़ा और वर्षों तक जेल में रहे। 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसका प्रभाव इलाहाबाद में भी व्यापक रहा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया, सभाएं और जुलूस आयोजित हुए। ये जन आंदोलन बन चुका था। और फिर आता है 1942 में गांधी जी का आह्वान, करो या मरो, जिसमें इलाहाबाद के विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए, युवा जुलूस निकालने लगे, महिलाएं भी आंदोलन में शामिल हुई। और इसी दौर में इलाहाबाद ने कुछ ऐसे बलिदान देखे जिन्हें आज भी याद किया जाना चाहिए। एक विद्यार्थी, उम्र 14 वर्ष, नाम रमेश दत्त मालवीय, CAV इंटर कॉलेज में 9वीं कक्षा के विद्यार्थी। वे स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित थे और राष्ट्रीय संदेश वाले पर्चे बांटते थे। 12 अगस्त 1942 को इलाहाबाद की कोतवाली के आसपास हुए संघर्ष में वे भी उपस्थित थे, जिस दौरान उनकी मात्र 14 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। जिस उम्र में आज बच्चे स्कूल की किताबें लेकर चलते हैं, उस उम्र में रमेश दत्त स्वतंत्र भारत का सपना लेकर संघर्ष कर रहे थे। उनकी कहानी याद दिलाती है कि इस संघर्ष में युवाओं ने भी असाधारण साहस दिखाया। 12 अगस्त 1942 की एक और घटना एक सफाई कर्मचारी नानका की है, जिन्होंने सिटी कोतवाली में प्रवेश किया, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जिसे वे छिपा कर ले गए थे, तिरंगा। वे कोतवाली की छत पर पहुंचकर ब्रिटिश झंडे के स्थान पर तिरंगा फहराकर उसे सलाम कर रहे थे, तभी ब्रिटिश सैनिक की गोली से उनकी मृत्यु हो गई। आज भी सिटी कोतवाली में इस घटना की स्मृति से जुड़ा शिलालेख मौजूद है। स्वतंत्रता आंदोलन में कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं, सब बराबर थे और सबका सपना एक था, स्वतंत्र भारत। स्वतंत्रता की लड़ाई केवल मैदान तक नहीं, कलम और विचारों की लड़ाई भी थी। द लीडर जैसे समाचार पत्रों ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस को मजबूत किया। इसीलिए पत्रकारिता स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक शक्ति बनी। प्रयागराज नदियों के संगम के साथ साथ 1888 व 92 में कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन, स्वराज भवन व आनंद भवन की राजनीतिक गतिविधियां, नेहरू का राष्ट्रीय नेतृत्व, आजाद का अदम्य साहस, कमला नेहरू व पूर्णिमा बैनर्जी जैसी महिलाओं का नेतृत्व, पुरुषोत्तम दास टंडन का किसान आंदोलन, नैनी जेल की यात्राएं, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में रमेश दत्त व नानका जैसे नागरिकों का असाधारण साहस, जैसे अनेक प्रकरणों ने मिलकर इलाहाबाद को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण धरती बनाया। इतिहास केवल अतीत नहीं, बल्कि हमें बताता है कि आज जो स्वतंत्रता हमें सहज लगती है, उसके पीछे कितने लोगों का संघर्ष छिपा है। प्रयागराज, इलाहाबाद की धरती हमें ये संदेश देती है कि स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन का नाम नहीं, स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी है, एक विरासत है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वचन है। और यही है हमारे प्रयागराज इलाहाबाद की कहानी। इसी के साथ मैं दिव्या शुक्ला आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: इलाहाबाद शासन, सत्ता और आंदोलन का संगम केंद्र, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। साथियों, हमारे प्रयागराज की जो भूमिका रही है स्वतंत्रता आंदोलन में या राजनीति में या शासन में, वो हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इसी विषय पर अभी आपने सुना एक वार्ता जिसका विषय था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयागराज की भूमिका या उसका योगदान, और वार्ताकार थी दिव्या शुक्ला। उम्मीद है आपको ये वार्ता पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। और उन्नति, जो हमारे प्रयागराज की बातें हुई, जो क्रांतिकारी उसका योगदान था, वो हमारा देश उसे हमेशा याद रखेगा।

0: इसी के साथ अभिषेक, अब हम याद कर रहे हैं हमारे इतिहास के उन किरदारों को जिनकी जिंदगी से हमें कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिलता है। और आज के प्रेरणा पुंज में भी हम हमारे भूले बिसरे नायक बटुकेश्वर दत्त की कहानी के बारे में जानने वाले हैं।
1: दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त भारत के महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे हैं, जिनका जन्म 18 नवंबर 1910 को हुआ था और उनका बचपन और शिक्षा मुख्य रूप से कानपुर में हुई और बहुत ही कम उम्र में वो देश की आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित हो गए थे। और कानपुर में ही उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे युवा से जिनका नाम इतिहास में अमर हो चुका है।
0: उनका नाम था भगत सिंह। जी हाँ, दोनों के बीच मित्रता हुई और आगे चलकर दोनों क्रांतिकारी गतिविधियों में साथ आए। बटुकेश्वर दत्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से भी जुड़े, यानी उस समय में जब ज़्यादातर युवा अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे, ये युवा अपने देश के भविष्य के बारे में सोच रहे थे।
1: और साल 1929 तारीख 8 अप्रैल जगह थी दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और वहाँ मौजूद थे दो युवा क्रांतिकारी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और फिर असेंबली में बम फेंके गए, वहाँ पर क्रांतिकारी पर्चे बांटे गए
0: और ये कार्यवाही ब्रिटिश सरकार की नीतियों और प्रस्तावित कानूनों के विरोध में की गई थी। क्रांतिकारियों का उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि अपनी राजनीतिक बात को ऐसी आवाज़ देना था जिसे सत्ता अनसुना ना कर सके।
1: यानी उनका संदेश था, हमारी आवाज़ को अनसुना मत करो। और उन्होंने क्रांतिकारी पर्चे भी बांटे और नारे भी लगाए, मगर वो दोनों वहाँ से भागे नहीं बल्कि स्वयं गिरफ्तारी दी।
0: और यही बात इस घटना को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को सार्वजनिक रूप से सामने रखने के लिए गिरफ्तारी तक का सामना किया। हर चुनौती उनके सामने होने के बावजूद वो पीछे नहीं हटे।
1: लेकिन दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही।

0: गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला और 12 जून 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को असेंबली बॉम्ब केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन जेल पहुंचने के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ।
1: राजनीतिक बंदियों के साथ व्यवहार और जेल की परिस्थितियों के विरोध में दत्त, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल की। यानी उनके लिए क्रांतिकारी सिर्फ एक दिन का काम नहीं था, ये लगातार संघर्ष था और यही हमें बहुत बड़ी सीख भी देती है।
0: कई बार असली साहस लंबे समय तक मुश्किलों का सामना करने के बाद दिखाई देती है। और साथियों, बारी आती है उस तारीख की, यानी 23 मार्च 1931 को, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। लेकिन बटुकेश्वर दत्त जीवित थे और उन्हें अपने साथी की शहादत के बाद भी जेल और संघर्ष का लंबा दौर देखना पड़ा।
1: 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी भागीदारी रही और फिर उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। यानी वर्षों का संघर्ष, बार बार जेल जाना, लेकिन फिर भी देश के लिए उनका समर्पण जारी रहा।
0: आज़ादी के बाद उनका जीवन अपेक्षाकृत गुमनामी और कठिनाइयों में बीता। 20 जुलाई 1965 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में अपने जुनून, अपने क्रांतिकारी संघर्षों के कारण हमेशा जीवित हैं। और उन्नति, मुझे लगता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें रहीं जो हमारे देश के भूले बिसरे नायकों के बारे में थी, है ना। और हमारे श्रोता साथी फिर से इंतज़ार कर रहे होंगे एक म्यूजिकल ब्रेक का।

0: इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अंतिम मोड़ पे है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो रहता है उसका भी जवाब दे देते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब है रेचल कार्सन।
1: और साथियों हमारा आज का सवाल है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? आप अपना जवाब भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी पर जो कि है yuvvaniald@gmail.com। इसी के साथ मुझे अभिषेक को,
0: मुझे यानी उन्नति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी यूजन अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें अपनी दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुईं। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध

0: प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। श्री बादल की हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरोमणि हमले की जांच के आदेश दिए हैं। ये पिछले 2 वर्षों में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अल कायदा ए कायदा ए हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियावेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:05 और 16 सेकंड हुए हैं। ये समय है आपको जानकारी देने का आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। तो पहले आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

आज के शेष कार्यक्रमों में आपको बता दें 9:30 पर होगा चर्चा का विषय है कार्यक्रम, इसे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और 8:00 सुनेगा संसद समीक्षा। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे किसान चर्चा और प्रतिमा मिश्रा के स्वर में कजरी। 6:50 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में काव्य कॉमेडी के अंतर्गत सुनेगा विजयानंद और

डॉक्टर पीयूष मिश्रा का काव्य पाठ। श्रुति मिश्रा के स्वर में भजन और गीत सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 8:15 पर रात 10 बजे, और सबरस कार्यक्रम होगा 8:30 पर। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।

और अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल शाम 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:20 पर गांधी चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उत्तम नीति पर विचार। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:35 पर किसान भाई सुनेंगे प्रदीप कुमार सिंह से विजय शंकर सिंह की बातचीत, कृषि रक्षा रसायनों का उचित प्रयोग और समाधान। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 6:45 पर आपको सुनाएंगे डॉक्टर प्रकाश खेतान की वार्ता, डीजेनरेटिव सर्वाइकल माइलोपैथी एक जानकारी। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का 29वां भाग सुनिएगा 7 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन और 12:15 पर और रात 10:30 पर सुनाएंगे गीता बैनर्जी का उपशास्त्रीय गायन। नमस्कार प्रयागराज इस कार्यक्रम के साथ जुड़िएगा 8:45 पर और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत जरूर कराएं। वॉइस ऑफ प्रयागराज आप सुनेंगे 10:05 पर। इसमें कल आपको सुनाएंगे डॉक्टर जीएम तोमर से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत का दूसरा भाग। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर सुनाएंगे आशुतोष श्रीवास्तव के स्वर में भजन। सुबह 10:30 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा, कलाकार होंगे सूर्य प्रकाश पटेल और साथी, और 11 बजे होगा एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम। युवाओं का यूथ एक्सप्रेस कार्यक्रम होगा 11:30 पर। युववाणी में 5:15 पर युवचंद सुनेंगे कान्हू मुर्मू के ऊपर केंद्रित प्रेरणापुंज और खेल जगत अंग। हेलो ग्रे लक्ष्मी ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:15 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 2:30 पर। नन्हे मुन्नू के कार्यक्रम नन्ही दुनिया से शुरू होगी हमारी सायंकालीन सभा 5 बजे। बच्चे सुनेंगे टीकाकरण के विज्ञान के बारे में जानकारी। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे अवधेश चंद्र यादव की वार्ता, डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी और सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों के स्वर में कचरी। इंग्लिश प्रोग्राम होगा रात 8:30 पर, सुनिएगा डॉक्टर ऋतुराज त्रिपाठी की वार्ता ह्यूमन बॉडी एंड फूड। गजलों पर केंद्रित कहकशा प्रोग्राम 9:30 पर होगा और 10 बजे आपको सुनवाएंगे लक्ष्मीकांत वर्मा का लिखा नाटक वतन के लिए। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। मोहम्मद असलम पुत्र कमरुद्दीन खान जो पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, सूचित करते हैं कि उम्मे ऐमन 11 फरवरी 2026 को पीजी कॉलेज से

लापता हैं। इनकी आयु करीब 19 वर्ष है, चेहरा लंबा है, ऊंचाई 5 फुट 3 इंच, रंग गोरा है। इनके बाल काले हैं, इन्होंने गुलाबी रंग का कुर्ता और सलवार पहन रखा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें। फ़ोन नंबर है 9696017655। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 9696017655। एक अन्य सूचना के अनुसार वीरेंद्र कुमार यादव, जो महमदपुर थरवई कुंडा के रहने वाले हैं, सूचित करते हैं कि अर्चना यादव 25 जून 2026 को अपने थाना कुंडा के आसपास से खो गई हैं। इनकी आयु करीब 20 वर्ष है, शरीर की बनावट एक गहरा मजबूत जिस्म है, चेहरा लंबा है, आंखें काली हैं, इनका रंग गेहुआ है, काले घने लंबे बाल हैं इनके, इन्होंने सफ़ेद रंग का सूट और सलवार पहन रखी है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें। फ़ोन नंबर है 7379113277। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 7379113277। श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र जग्गू, जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, सूचित करते हैं कि रश्मि शर्मा पत्नी भर शर्मा 15 जून 2026 को ग्राम इटहल से खो गई हैं। इनकी आयु करीब 17 वर्ष है, रंग गेहुआ है, चेहरा गोल है, आंखें औसत हैं, इनकी लंबाई 5 फिट, इन्होंने कुर्ता आसमानी रंग का पहन रखा है और आसमानी चप्पल पहन रखी है। इनके बारे में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें। फ़ोन नंबर है 7408378939। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 7408378939।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब आइए सुनते हैं समूह सुरों में देशभक्ति रचना।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे शुरू की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित संस्कृत में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। संसद सदनद्वयस्य उपवेशनम् अनिश्चितकालाय स्थगितम्। प्रावृत्सत्रे 12 विधेयकानि पारितानि। विपक्षानां कोलाहलेन लोकसभायाः कार्यसाधकता केवलम् 21% एवावशिष्टा। संसदा खनिजविकासः नियमः च संशोधनविधेयकं 20-26 पारितम्। अनेन खननक्षेत्रम् अधिकं कार्यदक्षं तथा निवेशकानाम् अनुकूलं भविष्यति। अद्य नवदेहल्यां राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः कलासाधकेभ्यः प्रतिष्ठितं संगीत नाटक अकादमी सम्माननं व्यतरत्। चीन रूस देशौ भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतां प्रत्यभिनन्दतां, स्वकीय समर्थनं च पुनः

के साथे साथे ना एक ऐसा विषय पे बात करे आए हैं, जैसे एक चर्चा करे आए हैं कि जौन जिंदगी से जुड़ा है। जैसे किसान भाई अपने खेत में उजाला हरियर देखा चाहत है ना, वैसे हर इंसान चाहत है कि ओके अखियां से दुनिया देख सके, अखियां से अपन रोशनी से उजाला देख सके। तो भैया जैसा कि आप सगे समझ गए हुई हैं कि हम बात कर रहे थे एक महत्वपूर्ण विषय के। हाँ भैया, जो दूसर के लिए जरूरी है उजियारा, और उजियारा तब हो सकत है जब हम सब मिल करके एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी, वो है नेत्रदान महादान। भैया देखा, हम सब बीज बोई थी तब फसल अच्छी होते, तो यहू ए तरह की एक मुहिम कह सके थे इस विषय पर चर्चा करे कि हम सभी अगर नेत्रदान के मुहिम में आगे बढ़ब, एक बीज बोब, तो कहूँ ना कहूँ अपने समाज के प्रति हम सब अच्छा करब, और आपन जौन भाई बंधु हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके दुनिया में एक रोशनी, एक उजियारा ला के सके थे। तो हमारे जौन भी सुने वाले किसान भैया हैं, उनसे हमार यह अरदास है कि नेत्रदान महादान से जुड़ें और औरन के जिंदगी में खुशहाली लाएं, उजियारा लाएं। और भैया बात बत कही तो आगे भी होत रही, मुला जब तक अपने पंचायती में ढोल नगाड़ा नहीं बाजे तब तक कुछ नीक नहीं लागत है। तो आज देखा, जैसे हम कहें ना कि सावन के महीना है, तो सावन के महीना में कजरी सुने के अपना ही मजा है। तो आज अपने पंचायती में प्रतिमा मिश्रा दीदी के कजरी है, हम तो कहा पंच भैया भी सुने और हम हो अपने पंच भैया के साथ कजरी सुने।

पंच भैया देखा सावन का महीना लागल है और आसमान माँ बादल छाए हैं। कहूँ रिमझिम फुहार पड़त है तो कहूँ किसान भैया खेत माँ फसलन की देखभाल करत हैं। खेत में देखा भैया फसलन का देखभाल तो करे के पड़त है कि कहूँ तनिको लापरवाही हुई तो पूरे फसल के नुकसान हो जाए और फसल हमारे सब के खराब हो जाए। लेकिन भैया हम सब खेती बाड़ी करत हैं, किसान भैया लोगन दिन रात मेहनत करत हैं तब जाके कहूँ फसल अच्छी होत है। लेकिन आज हम खेती बाड़ी की

0: किशन भैया देखा कितना सुंदर कजरी गीत गायन प्रतिमा मिश्रा दीदी से हम सभी सुनत रहे। क्या है कि सावन की कजरी की मिठास ही कुछ ऐसन होत है कि मन सीधे गांव की गलियन और हरिहर खेतवन में घूम जाते। और कजरी के साथ साथ सावन माह में एक और बात सिखावत है कि प्रकृति हमका बिना कुछ मांगे बहुत कुछ देत है। जैसे कि फल, हम सभी फल खाए थे लेकिन पेड़ फल देते हैं, नदियाँ पानी पीते हैं और धरती हमारे सभी के अन्न देते। तो हमहूँ कुछ ना कुछ ऐसे परोपकार अपन जीवन में करे के चाहिए, जैसे कि नेत्रदान, महादान, एक परोपकार तो अपन जीवन में करे के चाहिए। और बात बात कही तो आगे भी होत रही पंच भैया। देखा आज बृहस्पतिवार के दिन बाटे, तो आज अपने पंचायती में किसान चर्चा बाटे। अशोक कुमार जी से मनोज कुमार भैया के बातचीत बाटे। आप पंच भैया हरे का सुना जाए और गुना जाए।
1: आज भैया देखे अपने खेती किसानी का अनुभव दे बदे आज अपने बीच आमंत्रित हैं श्री अशोक कुमार, ग्राम दस्सू कपूरा, जिला कौशाम्बी के हैं। हम आपसे ई जाना चाहब कि जैसे ई तो मान लें खरीफ का समय चलत बा और यह समय में आपका खेती किसानी में काय हो रहा बा?
2: खेती किसानी में भैया देखा धान और लगवा दिया है न, धान की बढ़िया से खाद वाद की छिड़काव करवा दिया। अब धान की कटे से पहले जो अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं अभी से नहीं, ओके खातिर कुछ हल्का धान लगवा दिए, जैसे कि आलू बो आवक है, टाइम से आलू बो जाए और मटर बो जाए।
1: हम आपसे ही जानना चाहब कि जैसे इस समय आप धान का मुख्य रूप से खेती किए हैं तो कितना खेत में आप लगाए हैं?
2: हम भैया 17 बीघा में धान लगवा दिया है।
1: तब तो काफी मात्रा में आपका धान लगा है, तो फसल कैसन चलत है इस समय?
2: फसल तो ठीक है भैया।
1: अच्छा, पानी की व्यवस्था?
2: पानी की व्यवस्था नहर चल रहा है।
1: अच्छा,
2: और नहर के बाद निजी ट्यूबवेल भी है, समरसेबल भी।
1: तब ये साल तो बरसात भी ठीक ठाक है, कोनो पानी की दिक्कत आए ना हुई?
2: हाँ, पानी की तो दिक्कत ना है भैया।
1: ये बतावे कि धान जब इतना बड़े पैमाने पे आप खेती करते हैं तो हर साल करते हुए यही तरीके से?
2: हाँ, हर साल
1: तो का मतलब एमन कुछ लाभ भी दिखत है?
2: हाँ, लाभ तो भैया प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो महंगाई के हिसाब से धान 17 बीघा की कीमत बहुत हो जात भैया।
1: तो कौन ढंग से खेत का तैयारी करते हैं और कब करते हैं धान के फसल बड़े?
2: देखा भैया, सबसे पहले तो किसान के चाहिए कि अपने मिट्टी की जांच करवा लें।
1: अच्छा, आप मतलब का जो ना कि आप जांच करवाए हैं माटी का?
2: हाँ भैया, हम तो
1: कब कराओ थे, कैसे कराओ थे?
2: हम तो हर 6 महीने में जांच करवाए थे भैया। फसल बोवे के पहले मिट्टी की जांच करवाई ली थी, जैसन फिर रिजल्ट आवत है वही पैमाने के हिसाब से मिट्टी में जितना जैविक खाद की जरूरत पड़त वही हिसाब से डालित भैया।
1: अच्छा, तो रासायनिक खाद का भी तो जरूरत पड़त हुई?
2: हाँ भैया,
1: तो रासायनिक खाद का भी प्रयोग करत हुई है?
2: रासायनिक खाद का भी प्रयोग करत
1: भैया। अच्छा, तो ये बतावे जैसे माटी का जांच जो है ये बहुत जरूरी हो तो आप कौन ढंग से कराओ थे, का विधि है कर बतावे तनी?
2: देखा भैया, सबसे पहले तो

0: किसान के चाहे कि खेत में किसी भी चाहे चारों किनारों में से किसी में से भी एक बड़ा सा गड्ढा बना ले और उस गड्ढे में चार छोटे छोटे गड्ढा बनावाएं और चार छोटे छोटे गड्ढे में सामने सामने के गड्ढे से कोने कोने के गड्ढों से दो गड्ढों में से मिट्टी भर लें और मिट्टी भरने के बाद अलग अलग पन्नी में मिट्टी भर लें और उसके बाद परीक्षण केंद्र पे भेज दें मिट्टी का।
1: तो एक जांच कराओ में कोनो दिक्कत परेशानी
0: ना
1: आवत है?
0: भैया कोई दिक्कत नहीं,
1: अच्छा, का कोनो मन फीस वीस भी पैसा वैसा भी लगत है?
0: ना ही सरकारी है, सब सरकारी सेवा, कोई पैसा नहीं
1: सरकारी
0: उसमें।
1: सेवा। और कितना दिन
0: हाँ
1: में एकर परिणाम मिल जाता है?
0: इके परिणाम तो भैया 5-6 दिन में मिल जाता बा।
1: 5-6 दिन में मिल जाता है, तो बढ़िया बात है। अगर हम कहीं की माटी का जांच करवा ले तो उसे पता चल जाता है कि भाई हमारे माटी में कौन चीज़ का अधिकता बा, कौन चीज़ का कमी है।
0: हाँ
1: और
0: भाई
1: वही तरीके से अगर संतुलित जो ना खाद का प्रयोग करें तो ऐसे अपन उत्पादन भी बढ़िया हुई और खेत भी अपन बना रही। अब जैसे आप धान मुख्य रूप से खेती किए हैं तो उमन जो ना कि कुछ देर से पके वाली फसल भी हुई, कुछ पहले भी पके वाली फसल हुई?
0: हाँ भैया, जैसा देखा कि हमके आलू लगवावे के, मटर बोवावे के, तो उसके लिए कुछ बहुत पहले से वह जो पहले से फसल पक जाता है वो वाली फसल उसमें लगवा दी है, और जिससे वो धान कट जाता है, वो धान कटे के बाद आलू लगवा देते, अगैती आलू लगवा दे थन और अगैती वाली मटर बोवा दे थन,
1: अच्छा
0: जिससे
1: अच्छा
0: कि सबसे पहले बाजार में आ जाते हैं, तो प्रतिदिन मंडी में भिजवाए से कुछ आमदनी बढ़िया
1: बढ़िया
0: मिल जाती
1: बढ़िया
0: उससे।
1: दाम मिल जाता है भाई। हम कहें कि कोनो भी चीज़ अब आलू भए चाहे सब्जी का खेती भए, अगर उस समय से उकर पैदावार हुई तो उकर दाम बढ़िया मिली, और बाद में सब कर इकट्ठे जब पैदा हो जाता है
0: हाँ
1: तो उस समय दाम कम हो जाता है। इस समय धान के अलावा और कौन कौन चीज़ का खेती किए हैं आप?
0: धान के अलावा भैया इस समय देखा तो कुछ मिर्चा उर्चा जो सब्जी उब्जी है,
1: तो
0: सब्जी
1: सब्जी
0: दो
1: में का
0: तीन,
1: का है इस समय?
0: नेनुआ तरोई है, बैगन है, चिचड़ा है, 3-4 मेहर के सब्जी बोवा दे हैं, जिससे बाजार बाजार के मंडी में भिजवाए दे थे, तो अच्छी आमदनी में।
1: तो मतलब कितना खेत में लगाए हैं आप?
0: सब्जी उब्जी का रोजगार करवा दें 1.5 बीघा में लगभग।
1: तो मैंने फायदा बुझा था सब्जी खेती
0: हाँ
1: से एकदम।
0: फायदा तो बहुत बढ़िया हो जाता
1: खाए का
0: भैया।
1: भी काम चलते थोड़ी
0: हाँ
1: बढ़िया
0: खाए
1: से
0: का भी
1: एकदम,
0: काम चल
1: और
0: जाता,
1: भैया ऐसे जो ने कि 4 पैसा नगद आमदनी तुरंत का तुरंत मिलत हुई।
0: हाँ तुरंत का तुरंत मिल जाता
1: तब
0: भैया।
1: ये हम आपसे अपन का आपका अनुभव जानना चाहब कि जैसे आपका सब्जी का फसल तैयार भे, नेनुआ भे चाहे तरुई भे,
0: हाँ भैया
1: तो कौने ढंग से कर व्यवस्था करत हैं कि भैया रोज का रोज निकलत जाए और सही ढंग से बाजार में पहुंचत जाए ताकि बासी ना होके पावे और सही दाम एकर मिल जाए? का करत हैं आप एकरी खातिर?
0: देखा भैया, सबसे पहले तो मिर्चा उर्चा जो फसल है ना, इसमें सब्जी के लिए सबसे पहले सुबह उठना पड़ता है, और उठे के बाद सबसे पहले तोड़वाए के का मंडी भिजवाए पड़ता है, और जिससे कि अच्छे रेट से बिक जात बना भैया।
1: तो ये बतावें कि कौन ढंग से आप मंडी भिजवाए बदे का कोनो अपन साधन है?
0: नहीं अपन निजी साधन हो भैया।
1: रबी की फसल में का का कौन कौन चीज का खेती करते हैं आप?
0: रबी का फसल में देखा भैया, जैसा कि इन सरसों और दो तीन वैरायटी के बोवाए दे धन, जिससे कि पशुओं का भी इसमें काम चल जात
1: खली
0: बा,
1: मिल जात हुई।
0: खरी उन मिल जात भैया, हमारा भी हो जात बा। मटर उटर बोवाए दे थे, दाल वाली मटर। गेहूँ
1: पशुपालन में आप का किए हैं?
0: पशुपालन में भैया देखा, हम 3 ठो गैया रखे हैं, 2 भैंसी हैं, जिससे कि एक टाइम में दूध 25-30 लीटर हो जात बा भैया, और 4-5 लीटर घर में लग जात बा खाए के लिए, और बाकी शाम सुबह बेचवाए दे थे दूध, तो जिससे नगद रुपया मिल जाता है, और भैंस के खाए के लिए भी हो जाता है, राशन पानी के
1: बिल्कुल
0: लिए।
1: बिल्कुल। कुछ हरा चारा का भी व्यवस्था करत हुई हैं?
0: हाँ भैया हरा चारा के लिए चरी रुई बुवाई दे थन, और कटे के पहले फिर से दोबारा चरी बुवाई दे भैया, ऊंच खेत में जैसे पानी नहीं रुकत बा भैया, वही खेत के लिए चरी रुई बढ़िया होत बा भैया।
1: अच्छा, तो गोबर भी हो जात हुई?
0: हाँ भैया गोबर हो जात बा
1: तो
0: भैया।
1: गोबर का खाद आप प्रयोग करते हैं खेत में
0: हाँ
1: अपने?
0: गोबर का खाद प्रयोग करी भैया,
1: अच्छा, ज़्यादातर मतलब गोबर और जैविक खाद प्रयोग करते हैं कि रासायनिक खाद?
0: नहीं ज्यादातर गोबर वाली खाद ज्यादा प्रयोग करी
1: अच्छा,
0: भैया।
1: तो भाई देखे ये तो जितने लोग वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि रासायनिक खाद से ज़्यादा अगर जैविक खाद का प्रयोग करें तो ऐसे अपने माटी का संरचना भी बना रहता है और साथे साथे पैदावार भी बढ़िया होता है, फसल का गुणवत्ता भी बढ़िया रहता है, और वही के साथ साथ लागत में भी कमी आवत है। हम आपसे जानना चाहब कि बाग बागवानी में का किए हैं?
0: बागवानी में भैया बगीचा तो बहुत बड़ी है भैया, आंवला उमला की बगीचा है, और महुआ हुआ भी है, आम का भी है, अमरूद इस समय निकल रहा है, अमरूद और नींबू निकल रहा है
1: अच्छा
0: बागवानी में
1: अच्छा तो
0: भैया।
1: मतलब ये बिक भी जात हुई।
0: जी भैया
1: अशोक कुमार जी, आप आएन और अपने खेती किसानी का बाग बागवानी का अनुभव बताएं, आपसे बातचीत किए भैया, आप जानकारी दिए ना करीब बदे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखा भैया, अशोक कुमार भैया से मनोज कुमार सिंह कितना फरियाए के बतायान, और अशोक कुमार भैया बतायान कि कैसे माटी के जांच कराए के, फसल चक्र के अपनाए के, अपन फसल उत्पादन के हम सबे बढ़ाए सके थे। देखा किसान भैया, खेती बाड़ी करे में, अपने खेती किसानी करे में सबसे बड़े ध्यान दे के जरूरत होते कि समय समय पर

देखभाल करें, समय समय पर माटी की जांच करावत रहें। और एक जो सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है वो है जागरूकता। देखा, तकनीकी के समय है, जौन किसान भैया तकनीकी के साथ आधुनिकता के साथ अपन खेती किसानी करत हैं, उनकर फसल उत्पादन अच्छा होते हैं, लेकिन ओकरे साथ जरूरत है कि हम सबे जैविक खेती की ओर भी ध्यान दे। अपन परंपरागत जौन खेती है, परंपरागत खाद है, ओका भी इस्तेमाल करें, जैसे कि रासायनिक खाद के इस्तेमाल कम हो सके। तो हमार कहे के मतलब इतना है कि हम सबे अपन अगर जागरूक रहें, जानकारी बढ़ावे के चाहे तो बढ़ाए के अपन फसल के उत्पादन अच्छा कह सके थी। और अगर आपके अपन कार्यक्रम पंचायत घर से कोनो तरह के जानकारी, कोनो तरह के सुझाव चाहे तो या अपन प्रतिक्रिया दे के चाहे तो हमार सभा के व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। नंबर एक बार और नोट कर लें, 800-492-6250। किसान भैया ये आप सभी के कार्यक्रम है, इमा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी मैसेज कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं और कोनो तरह के जानकारी चाहत हो तो ओकर बता सकते हैं। हमारे सभी के फेसबुक पेज पर भी आप सभी कमेंट कर सकते हैं। तो भैया अब आपसे विदा ले के समय होते हैं, तो पंचो राम राम।

0: अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की।
2: इस कार्यक्रम के आयोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जो जय हिंद। ज्योति बहनी।
1: हाँ रामजीत भैया।
0: देखो हम पंच अपने खेती पाती में काम तो करबे करी थे, मूल कऊ दाय ऐसा हो जात है कि हमारे जो फसल है वही में कीड़ा लग जात है और कऊ दाय तो नुकसान इतना बढ़ जात है कि पूरी पूरी फसल खराब हो जात है।
1: बिल्कुल भैया, देखो यही लिए जो है कृषि रक्षा रसायन का प्रयोग करे चाहिए। जब भैया हम लोग कृषि रक्षा रसायन का उपयोग करी और जो निर्देश पैकेट पर या डिब्बे पर लिखे गए हैं उनका देख पढ़ ली जाए और जैसे कोई बात नहीं समझे में आ रही है तो कृषि रक्षा केंद्र पर जाके उसका समझ के तब अपनी फसल में प्रयोग करा जाए।
0: बिल्कुल बहनी, कुल मिलाई के वही के इस्तेमाल से पहले वही के जानकारी हुआ बहुत जरूरी है। और बहनी एक चीज हम और सुने रहन एक जने से कि वह कहते रहे कि जो डिब्बा हुआ था ना वही पे छोट छोट चिन्ह बना रहा था और कऊ दाएं लालो बना रहा था, तो जौन लाल वाला हुआ था वही के इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करे चाहिए, कहे वही से बहुत नुकसान हो सकत है।
1: बिल्कुल सही कहे हो। और जब हम अपने खेते में जो है रसायन का प्रयोग करे चली तो हाथे में दस्ताना पहन ली और मुंह पर अपने मास्क लगा ली, अपने पूरे शरीर का ढक ली और आंखन में चश्मा जरूर पहन ली भैया।
0: बिल्कुल बहनी, और साथ ही साथ अपने आस पास कौन कौन नई चीज हो रही है वनहों का जाने चाहिए और ये सब बात हम जानी थे आज की खबरें में।
2: गोबर पराली।

0: और कचरे से बनेगी ऊर्जा। केंद्र सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG को बढ़ावा देने के लिए 23,731 करोड़ रुपए की गोबरधन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पशुओं के गोबर, पराली, कृषि अवशेष, प्रेस मड और नगर निकायों के जैविक कचरे से CBG तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2036 तक देश में घरेलू CBG उत्पादन को मौजूदा स्तर से करीब 10 गुना बढ़ाना। योजना के तहत CNG और पाइप्ड गैस में CBG की अनिवार्य ब्लेंडिंग भी की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2027 में 3%, 2028 में 4% और 2029 से 5% ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए गोबर और कृषि अवशेष से अतिरिक्त आमदनी के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही कचरे का बेहतर प्रबंधन, प्रदूषण में कमी और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिलेगी।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: ज्योति बहिनी।
4: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो हम पंच बाग बाग तो लगौबे करी थे।
4: हाँ।
2: मूल कऊ दाय का हो जाते है कि वही के समय समय पर का कुछ करे है वही का समझ ना पाए और वही से अपन बाग खराब हो जाते है।
4: बिल्कुल भैया, देखो खेती के साथ अगर फल फूल हुआ करते हैं तो देखो कितना अच्छा लागत है।
2: बिल्कुल बहनी, यही बदे आज की बात माँ विषय है अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन, और यही पे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कुंदन किशोर भैया।
5: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, अमरूद के बागों में इस समय सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुंदन किशोर साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन की बात करें तो अमरूद की बागवानी जहां शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या गुंजाइश है?
6: नमस्कार सभी किसान भाई और बहनों को। जो भी किसान भाई हमारे अमरूद की खेती करना चाहते हैं, ये ध्यान रखें कि भारतवर्ष में अमरूद एक बहुत महत्वपूर्ण फल के तौर पर सामने आ रहा है और हमारे देश का ये चौथा सबसे महत्वपूर्ण फल है। इसकी उत्पादकता तो वैसे 15 टन प्रति हेक्टेयर है हमारे यहाँ, लेकिन बड़ी गुंजाइश है कि अगर हम इसकी खेती अच्छे से करें इसकी उत्पादकता काफ़ी बढ़ सकती है और 25 टन तो हम आराम से उत्पादन कर सकते हैं। जो नए पौधे लगाने जा रहे हैं इसमें जो है अधिक घनत्व के पौधों को लगाने की जरूरत है, जिसमें कि हम कम से कम 800 से 1000 पौधे एक हेक्टेयर में लें, जैसे 3 मीटर और 4 मीटर की दूरी पर हम अमरूद के पौधे को लगाएं। दूसरा, हमारा संस्थान एक तकनीक जो है ट्रेनिंग सिस्टम जिसको कहते हैं अलग, उसको कहते हैं एस्पेलियर ट्रेनिंग सिस्टम,
5: यानी छत्रक प्रबंधन।
6: छत्रक प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है और उस छत्रक प्रबंधन में हम 1500 से 2000 पौधे को उसमें लगा सकते हैं, और अधिक पौधे होने के कारण उसके अच्छे से हम प्रूनिंग की एक जो है तकनीक बताते हैं किसानों को, ताकि उसका जो उत्पादन है लगभग 50% आसानी से बढ़ने की संभावनाएं होती।
5: डॉक्टर साहब, चूंकि रोपण का समय है तो जहां योजना है तो कौन कौन सी प्रजातियां चुने जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से बाजार के हिसाब से अच्छा रहेगा?
6: देखें, हमारे संस्थान ने श्वेता, ललित, लालिमा, धवल और एक नई वैरायटी भूषण, ये 5 वैरायटी हमारे अमरूद के तैयार किए गए हैं। ये सभी वैरायटी बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे VNR की भी वैरायटी उत्पादन करते हैं, उसके साइज बड़े होने के कारण उसका बाजार में अधिक मूल्य मिलता है, आकर्षण है और मूल्य जो है वो अधिक मिलता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो हमारे देश की प्रजातियाँ हैं उसमें

0: भी उतना ही पोटेंशियल है
1: और स्वाद अलग है।
0: स्वाद अलग है। हमारे जो अपने वैरायटी हैं उस पर भी तवज्जो दें ताकि हमारा भी जो वैरायटी है वो आम जो कंज्यूमर हैं वहां तक पहुंच पाए और हमारा जो उद्यानिकी है वो आगे बढ़ता रहे।
1: डॉक्टर साहब, जहां अमरूद की पुरानी बागवानी है, व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं, वहां खड़ी फसल में इस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण काम है?
0: अब देखिए, आप देखेंगे तो अमरूद की मुख्य फसल जो है एक बरसात के सीजन में आ गई और दूसरे जो है वो जाड़े के सीजन में आती है।
1: हाँ,
0: ऐसा देखा गया है जो बरसात के अमरूद होते हैं वो थोड़े फीके होते हैं
1: और बाजार भाव भी कम,
0: बाजार भाव भी कम है, और उसमें जो है एक होता है फल मक्खी, उसका ज्यादा जो है प्रकोप होता है। और बरसात में क्या है कि आप बहुत दिनों तक अमरूद को नहीं रख सकते, अगर दो दिन नहीं बिका अमरूद तो किसानों को घाटा हो जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम जाड़े के फसल को लें जो हम लोग प्रेरित करते हैं तो उसमें ये सभी चीज़ें नहीं होती हैं
1: जी,
0: तो इसका हम रेगुलेशन करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं क्रॉप का रेगुलेशन, और उसको हम करते हैं प्रूनिंग के द्वारा कि अगर आपने प्रूनिंग मार्च अप्रैल में किया तो आपको फल मिलेगा बरसात में
1: जी,
0: और अगर आपने प्रूनिंग को डिले करके जून कर दिया, जून में कटिंग किया तो फल मिलेगा जाड़े में
1: जी।
0: तो मैं किसानों को ये कहता हूँ कि मार्च के जो है उसको फल को कम करें और प्रूनिंग करें आप
1: जून
0: में, ताकि आपको
1: जाड़े की फसल
0: जाड़े के
1: अच्छी।
0: फसल आपको अच्छे से मिल पाए।
1: डॉक्टर साहब, आपने पोषक तत्व प्रबंधन की बात की, तो अमरूद के जो फलदार वृक्ष हैं उनकी भूख मिटे इसके लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कब, कितना और कैसे करना है?
0: हम एक पौधे में कितने फल हों ये निर्धारित करना बहुत जरूरी है। किसान भाई क्या करते हैं कभी कभी कि बहुत ज्यादा फल छोड़ते हैं तो फल का साइज घट जाता है, फल कम छोड़ेंगे तो साइज बढ़ जाएगा, और जितने फल होंगे उसके अनुसार हमको उसको लवण देना है। एक साधारण भाषा में कहते हैं कि हम लोग लगभग 300 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फॉस्फोरस और लगभग 400 ग्राम पोटास प्रति पौधा हम लोग बताते हैं
1: हर साल,
0: और ये हमको कम से कम तीन स्टेज में देना चाहिए
1: जी।
0: एक महत्वपूर्ण स्टेज है जब हम प्रूनिंग करके नए पत्ते निकलते हैं उस समय देना जरूरी है, दूसरा जब फल बढ़ रहे हो तब देना है, जैसे अगस्त सितंबर में हमने एक बार दे दिया, और फिर हम फल जब तोड़ लेते हैं तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट बाहर चला जाता है तब एक न्यूट्रिएंट की जरूरत। इस तरह से अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उसका प्रबंधन करेंगे तो हमारा जो अमरूद की खेती है वो बेहतर होगा।
1: डॉक्टर साहब, कई बार बेसल डोज में बागवान भाई अगर नहीं दे पाए हैं पोषक तत्व तो पानी छिड़काव भी कर सकते हैं?
0: आजकल बड़ा अच्छा तकनीक आया है कि हमारे पास पानी में घुलने वाले खाद उपलब्ध है,
1: जल विलेय,
0: उसमें जैसे आप कहेंगे 18-18-18, मतलब नाइट्रोजन 18% है, फॉस्फोरस 18% है, पोटास भी 18% है, कहीं कहीं ये 20-20-20 में भी उपलब्ध है। इसका छिड़काव हम कर सकते हैं, इसका छिड़काव 3 ग्राम से लेके 4 ग्राम प्रति लीटर हम इसमें घोल दें और पौधे में स्प्रे करें। फिर इसके साथ हमको बोरोन की जरूरत पड़ती है
1: जी,
0: बोरोन का छिड़काव हमको करना बहुत जरूरी है
1: क्योंकि पोषक तत्व
0: का वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे जो मिट्टी है इसमें बोरोन कम है,
1: काफी कमी दिखती है,
0: तो इसलिए उसका छिड़काव साथ में ही हम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर हमारे संस्थान ने भी तैयार किया है और वो पोषक तत्व तो हम उसमें 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, उसको हम लोग फसल प्रभात कहते हैं
1: जी,
0: वो उपलब्ध है किसानों के लिए 5 ग्राम प्रति लीटर। अगर वो उपलब्ध नहीं हो तो कोई भी सूक्ष्म तत्व का मिक्सर बाजार में उपलब्ध होते हैं, अच्छे ब्रांड का लें और वो आप छिड़काव करें तो वो भी पोषक तत्व आप जो मैनेज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बागवान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा नंबर है 9337962793 या 93-37-96-27-93, इससे संपर्क कर सकते हैं। जो भी जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हैं अमरूद से संबंधित प्रश्नों का उत्तर हम जरूर देंगे, तो पौधे का फोटो इस व्हाट्सएप पर भेजें, निश्चित रूप से आपको सही जानकारी प्राप्त होगी।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: मैं यही कहूंगा कि ये एक तो विटामिन सी पूर्ण फल है, दूसरी इसमें आम से अगर कंपेयर करेंगे इसमें बहुत कम कीड़े लगते हैं और इसको बहुत ज्यादा लवण की भी जरूरत नहीं है,
1: यानी पोषक तत्व
0: की जरूरत नहीं है। एक सामान्य हमारे किसान भाई

0: इसकी खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तकनीक की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पेस्ट मैनेजमेंट कीट प्रबंधन की ज़रूरत नहीं है, तो हम एक अच्छा सेफ फ्रूट कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं और बाज़ार में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर हम जाड़े के फल अच्छे गुणवत्ता के साथ लें, तो किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है।
1: डॉक्टर कुंदन किशोर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन इस समय क्या कुछ करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ज्योति बहनी।
3: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो बादल इस समय गहराए रहा है और जो सावन का छटा है वो हर जगह देखे मिल रही है।
3: तो तुम्हार मन जो है कुछ मनोरंजन करे है हमका लागत है।
2: बिल्कुल बहनी, ऐसा में तो कैसे मनोरंजन न कीन जाए।
3: तो चलो भैया एक लोकगीत लेके आए हैं।
2: हाँ,
3: नकटा।
2: हाँ,
3: जो वंदना मिश्रा जी की आवाज में है। हे सैया हमका
2: बिल्कुल
3: सुन लीन जाए।

0: भाई वाह, अब तो बजरिया घूमिन लियो, अब तो ठीक है, अब चलो कार्यक्रम में। देखो हम पंच अपने खेती पाती में काम तो करबे करी थे, मूल कऊदा ऐसा होत है कि हम जितना सोची थे उतना कह ना पाई थे, और कऊ किसान ऐसे हैं जे वो से बढ़ के काम कर लिए थे, और यह सबका हम जानी थे आज के किसान में।
1: सही कहे भैया। तो देखो आज जो है विषय जो हम लेके आए हैं केला और अमरूद उत्पादन है ना, जी के वार्ताकार हैं हरीश कुमार वर्मा भैया, तो यका सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे बागवान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बाराबंकी जनपद के फतेहपुर ब्लॉक के रामपुरवा गांव के केला अमरूद उत्पादन से जुड़े हरीश कुमार वर्मा भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: किसान भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। इस समय मेरे पास केला है और ताइवान पिंक अमरूद है।
2: रकबा कितना कितना है?
3: मेरे पास 5 एकड़ केला है, 4 एकड़ ताइवान पिंक अमरूद है।
2: तो अमरूद से शुरुआत करें कि कहां से मन में जगा कि आप तो केला उत्पादन से हमेशा से जुड़े रहे
3: जी,
2: ताइवान पिंक अमरूद की तरफ रुझान कैसे हुई?
3: इसलिए हुआ क्योंकि केला में लगातार कुछ दिन से करते हुए मिट्टी में कुछ ऐसे फंगस डेवलप हो गया जिनसे केले के पौधों को नुकसान हो रहा था, फसल को नुकसान हो रहा था, तो केला के विकल्प में मुझे अन्य कोई फसल चाहिए थी। तमाम इधर उधर विचार करने के बाद चूंकि धान गेहूं में हमको उतना उत्पादन या प्रॉफिट नहीं मिलता जितना मुझे केला में मिल रहा था, तो उसके विकल्प स्वरूप मैंने देखा कि ताइवान पिंक की आज बाजार में मांग बहुत अच्छी है, खाने में बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी डिमांड है, रेट भी अच्छा है, तो मैंने ताइवान पिंक अमरूद लगा दिया।
2: तो आपने लगाया कब?
3: मेरे पास 4 एकड़ अमरूद है जिसका 2 एकड़ मैंने 2023 में लगाया था। 2023 में लगाने के 1.5 साल कंप्लीट होने के बाद में उसकी मैंने बिक्री शुरू करी, उससे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने नया 2 एकड़ और लगाया।
2: यानी लगभग 4 एकड़?
3: 4 एकड़ जी।
2: और केला?
3: केला मेरे पास 5 एकड़ है, क्योंकि मैं पहले तो केला का कुछ बड़ा काम करता था लेकिन जमीन में वही फंगस के कारण क्षेत्रफल काफी कम कर दिया, और ये जो 5 एकड़ केला भी मेरे पास है वो नई जमीन में है, यानी कि जहां पर हमने इसके पहले केला का उत्पादन नहीं करा था।
2: यानी फफूंद जनित बीमारी लगने की संभावना बिल्कुल नहीं है?
3: जी, केला रोपण के पहले गर्मियों में जब हमको धूप मिलती है, गर्मी होती है, बहुत ही ध्यान देना होता है कि जितनी गहरी और अच्छी जुताई हम करेंगे उतना मेरा पौधा अच्छे से विकास करेगा। बारिश के समय जाड़ा आने के पहले लगभग 4 महीने का जो समय होता है उसमें जितनी अच्छी हम देख रेख कर लेंगे, चूंकि जाड़े में मौसम का दुष्प्रभाव जाड़ा के कारण पाला के कारण हमारे केला का विकास सही नहीं होता है, तो इसके लिए जाड़ा शुरुआत होने के पहले हम अपने पौधे को 3-4 फीट का बढ़ा लें, और ऐसा हम तब कर सकते हैं जब अच्छी जल निकास व्यवस्था हो, समय समय पर उसको जो भी फर्टिलाइजर देना हो, खेत को खरपतवार मुक्त रखें, तब उसकी हम ऐसा 4 फीट का वो कर सकते हैं।
2: अभी आपकी फसल किस हालत में है केला?
3: लगभग 70% फूल आ चुका है, 30% में अगले 10-15 दिन में फूल आ जाएगा।
2: यानी आपकी अगेती फसल है?
3: हाँ, थोड़ा सा अगेती है और इसकी कटाई लास्ट अगस्त से शुरू हो जाएगी।
2: उस समय भाव अच्छा रहेगा?
3: बहुत ज्यादा संभावना होती कि शुरुआत में लाभ अच्छा मिले।
2: और अमरूद में कौन कौन सी बारीकी आपने किया?
3: अमरूद में अभी 1-2 साल से फ्रूट फ्लाई और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होता है, थोड़ा सा होता था, लेकिन पिछले साल से कुछ ऐसा हुआ मौसम में दुष्प्रभाव हो सकता है तो फ्रूट फ्लाई की बहुत समस्या आ गई, तो इसके लिए अब अमरूद के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि उसकी बैगिंग की जाए, फल की बैगिंग की जाए।
2: तो आप अमरूद की बैगिंग की तैयारी में हैं?
3: जी, मेरी बैगिंग मैं राजस्थान से मंगवा चुका हूं, मेरी बैगिंग मेरे घर पे आ गई है। अभी जैसे ही मेरा नींबू के आकार का जो फल होगा तो उसकी बैगिंग हम शुरू करवा देंगे।
2: अमरूद की बागवानी में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप, उसकी रोपाई से लेकर के पूरे साल?
3: जी, अमरूद की फसल में ये जो ताइवान पिंक प्रजाति है ये चूंकि घना लगता है, 8x10 की हमारी दूरी है, हमारे जो पहले के पौधे होते थे उनकी अपेक्षा इसको नमी सब कुछ बहुत अच्छा सा चाहिए, तो पर्याप्त नमी देना होता है, चूंकि ये ऐसी प्रजाति कि इसमें साल भर फूल से

0: फल बनते रहते हैं।
1: जी
0: थोड़ा सा साल भर में दो समय ऐसा होता है कि तब थोड़ी सी हैवी फ्लावरिंग होती है या फ्रूट बनता है। वैसे फल मिलेंगे पूरा साल, तो उस समय जिस समय फूल से फल बन रहा हो या फल का विकास हो रहा हो, उस समय हमारे पौधे को नमी का बहुत ही ध्यान देना जरूरी
1: और
0: होता है।
1: खुराक भी।
0: जी, खाद की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन जब हमारा फूल से फल बन रहा हो, जैसे हमको इसमें यूरिया का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, एनपीके आप डाल सकते हो, पोटास से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें ड्रिप इरिगेशन से आप उसको ऐसे दे सकते हो, मतलब पोटास की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए।
1: ताकि मिठास रहे, क्वालिटी
0: जी,
1: रहे,
0: क्वालिटी पोटास,
1: रोग धोक और कीड़ा मकोड़ा न
0: जी,
1: लगे।
0: उनका थोड़ा प्रभाव कम होगा।
1: तो कुल मिला जुला करके केला अमरूद उत्पादन करके आप खुशहाल हैं।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि जो हम पारंपरिक खेती पहले करते थे उनकी अपेक्षा में जो केला में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, और केला के विकल्प में जहाँ पर केला नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणवश, चाहे फंगस के कारण या अन्य कोई कारण, तो उसके विकल्प में ताइवान पिंक अमरूद, इनकी खेती मेरे हिसाब से उपयुक्त।
1: पूरे साल की लागत की बात करें तो एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं
0: जी
1: और आपका मुनाफा कितना होता है केला अमरूद में?
0: डॉक्टर साहब, इन चीज़ों को मैं अलग अलग करके बता सकता हूँ, साल भर में तो नहीं बता सकते। केला में लगभग 1.25 लाख रुपए एकड़ की लागत आती है। अगर औसत दर्जे का मुझे रेट मिल जाए तो लगभग 3 साढ़े 3 लाख का बिक जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि 2 लाख रुपए से 2 लाख या 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक हमको शुद्ध लाभ हो जाएगा, लेकिन ये 15 महीने में होता है।
1: और अमरूद में
0: अमरूद में लगभग 1 एकड़ की लागत एक साल में प्रथम वर्ष होगी लगभग 50-60 हज़ार रुपये, और द्वितीय वर्ष में इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि अमरूद में एक काम ज़्यादा होता है, हर साल उसकी कटिंग करना, और जितना आप कटिंग करोगे, जितनी अच्छी आप कटिंग करोगे, आपको उत्पादन उतना ही अच्छा मिलेगा, फल का साइज और उसका स्वरूप दोनों बेहतर होंगे।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हम किसान भाइयों से अपने यही निवेदन करेंगे कि अगर वो केला उत्पादन करते हैं तो केला में जो उनको लाभ हो रहा था, जैसे उनको काम करने में अच्छा लग रहा था, तो अगर किन्हीं कारणवश केला उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो उनका आकर्षण इधर अगर होता है तो उसके विकल्प स्वरूप अच्छी चीज़ है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, मेरा मोबाइल नंबर है 800-900-2122, 800-900-2122, 800-900-2122।
1: हरीश कुमार वर्मा भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी कहानी थी कि आप केला के लाल तो है ही हैं, आपने नई शुरुआत की है अमरूद उत्पादन की और तरबूज उत्पादन करके आप खुशहाल हैं और किसान भाई आपसे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रामजीत भैया।
4: हाँ ज्योति बहनी।
3: देखो खेती पाती करक समय अगर हमका मौसम का हालचाल बढ़िया मिल जाए
4: हाँ।
3: तो देखो कितना हमका जो है सुविधा हो जाते। तो देखे हैं तुम्हारे हाथे में यहाँ मौसम की जानकारी है।
4: भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 अगस्त से जो 19 अगस्त तक का मौसम है कि संभाग में कहूँ कहूँ पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है और चेतावनी में देखा जाए तो मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के चेतावनी है।
3: तो भैया किसान पंच अपन तैयारी रखें और अपने खेतन की मेढ़े सुधिया लिए भैया।
4: बिल्कुल बहनी बहुत जरूरी है। और अब पंच भाई का बताए दिन जाए अपने कार्यक्रम का पता। तो कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18

0: विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन नंबर 226001।
1: रामजीत भैया।
0: हाँ ज्योति बहनी।
1: अब देखो हम अपन ईमेल आईडी बता दे, तो ईमेल आईडी लिख लिए सब लोग, farmandhomeairlko@gmail.com।
0: बिल्कुल बहनी, और देखो समय हो चला है तो पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

समाचार। मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा ये अभियान। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू हो गया नया ड्रेस कोड। 15 अगस्त से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में लगाई जाएगी वंदे मातरम वाटिका। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा 150 पौधों का रोपण। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा में जीपीओ और पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अयोध्या में गांधी पार्क के सामने से शुरू हुई यात्रा का शुभारंभ राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने किया। वहीं बाराबंकी में जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बिजनौर में राज्य मंत्री कपिल

0: अग्रवाल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मैनपुरी में अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। फतेहपुर में स्कूली बच्चों ने 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा मानव श्रृंखला बनाई। मऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कानपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तिरंगा अभियान घर घर पहुंच रहा है। मैं प्रदेशवासियों से, कानपुर वासियों से अपील करता हूं, घर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर के अपने घर पर तिरंगा फहराएं और बिठोर के हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है, यहाँ से ऐसी शुरुआत करें कि अपना राष्ट्र प्रेम, अपना राष्ट्र प्रथम की भावना से हम घर घर जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश को नंबर एक पर ले जाने का काम करेंगे।
0: प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद कानपुर देहात में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने लगभग 1200 फीट लंबे तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बहराइच में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने तिरंगा अभियान के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
2: मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी और उस विचारों को, उस सोच को, जो आज पूरे देश में एक साथ हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। पूरे देश भर के कोई गांव, गली, शहर, नगर कुछ भी नहीं बचेगा जहां तिरंगा ना हो। और ये सोच जो डेवलप हुई है, निसंदेह मुझे भारत के प्रति, अपने देश के प्रति एक करने के लिए, संगठित होने के लिए एक बढ़िया अवसर देती है।
0: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में बदलाव के क्रम में रामलला की सेवा में लगे सभी अर्चक अब एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। धार्मिक समिति ने अर्चकों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है, जिसे 15 अगस्त से लागू किया जाएगा। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे।
3: हमारी संत समिति ने निर्णय लिया है कि वो सूचीबद्ध जो यानी कि सिला हुआ वस्त्र ना हो, ऐसा रेशमी सिल्क का वस्त्र होगा, नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय होगा। शरदकालीन ऋतु में ऋतु के अनुसार होगा वस्त्र, लेकिन कलर वही रहेगा, पीत वस्त्र में रहेंगे सभी लोग, ये तय किया गया है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुईं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया था। उच्चतम न्यायालय की वाद सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागची एवं न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ इस मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में 34,947 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विज्ञान और तकनीक की आवश्यकता पर बल दिया।
4: जल प्रबंधन 5 करोड़ का खर्च करके एक सुंदर इसमें 3 प्रकार का विलोम को हुनर सिखाते, एक 28 लाख रुपया का खर्च करके इसरो का बड़ा सेंटर बनाया है। इसरो के चेयरमैन खुद ये देखने के लिए आए और हमारे बच्चों को तैयार किया और आज 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे जिस तरह उसका दिखाते समझाते हैं कि ये है क्या, क्या टेक्नोलॉजी है, हम गगनयान के लिए क्या काम कर रहे हैं, चंद्रमा की धरती पर हम कैसे उतरे, ये सब आज इतने होशियार हो गए हैं, मैं जानता हूं तो मुझे भी समझाने लगता।
0: प्रदेश के वन विभाग की

0: तरफ से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को सभी 75 जनपदों में वंदे मातरम वाटिका स्थापित की जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दीपक कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान में आम नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी। एक रिपोर्ट।
1: प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी।

0: डे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां एक अशोक चक्र बनाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: रक्षाबंधन पर्व के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक परिवहन व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने 26 से 31 अगस्त तक प्रदेश में अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि त्योहार से पहले और उसके बाद यात्रियों की संख्या को देखते हुए परिवहन निगम को अधिकतम बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर यात्रियों की अधिक आवाजाही के मद्देनजर इस दिशा में अतिरिक्त सेवाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यात्रियों की मांग के अनुसार लखनऊ और कानपुर समेत विभिन्न प्रमुख गंतव्यों के लिए भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में गोमती नदी को सीवेज प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत व्यापक कार्य योजना तैयार की है। शहर से निकलने वाले सीवेज को सीधे गोमती नदी में पहुंचने से रोकने के लिए नालों की टैपिंग, फ्लो डायवर्जन, एसटीपी की क्षमता बढ़ाने और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे के बाद गोमती नदी में गिरने वाले 45 नालों की पहचान हुई है। राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह ने बताया कि विभाग ने नए नालों की पहचान की है, जिन्हें जल्द शोधित किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होने के बाद कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। गोरखपुर में आज तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अयोध्या और आसपास के जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा नदी, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी व अयोध्या में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा ये अभियान। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड, 15 अगस्त से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में लगाई जाएगी वंदे मातरम वाटिका। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा 150 पौधों का रोपण। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं काव्य कॉमेडी के अंतर्गत कविता पाठ। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले विजयानंद से उनका काव्य पाठ।
3: मेरी पहली कविता का शीर्षक है जागो भारत के युवा जगो। जागो भारत के युवा जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। इस मातृभूमि पर संकट है, मैं तुम्हें बताने आया हूँ। जागो भारत के युवा जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। इस मातृभूमि पर संकट है, मैं तुम्हें बताने आया हूँ। जब रावण का आतंक बढ़ा तब युवा राम ने अंत किया। जब रावण का आतंक बढ़ा तब युवा राम ने अंत किया। जब कलुषित हुई भावना तो श्याम ने कंस विध्वंस किया। जब कलुषित हुई भावना तो श्याम ने कंस विध्वंस किया। जब स्वाभिमान टकराया तो राणाकर की तलवार चली। जब स्वाभिमान टकराया तो राणाकर की तलवार चली। वीर शिवा की लोहू लोहित हर हर करती खरधार चली। वीर शिवा की लोहू लोहित हर हर करती खरधार चली। सन 57 में मंगल ने जब दम दम में ललकारा था। सन 57 में मंगल ने जब दम दम में ललकारा था। लक्ष्मी बाई ने

झांसी में अंग्रेजों को संहारा था, लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों को संहारा था। आजाद भगत बिस्मिल गेंदा, आस फाक भी नहीं रहे। आजाद भगत बिस्मिल गेंदा, आस फाक भी नहीं रहे। बेदी पर मर गए मगर अत्याचारों को नहीं सहे। बेदी पर मर गए मगर अत्याचारों को नहीं सहे। चाहते तो घर में सो लेते, पत्नी बच्चों में खो लेते। चाहते तो घर में सो लेते, पत्नी बच्चों में खो लेते। शासन की चमचागिरी कर वो सुख की नींदें सो लेते। लेकिन मातृभूमि के हित फांसी फंदों को चूम लिया। लेकिन मातृभूमि के हित फांसी फंदों को चूम लिया। अब्दुल हमीद ने बलि देकर प्राण लुटाकर झूम लिया। अब्दुल हमीद ने बलि देकर प्राण लुटाकर झूम लिया। आज उन्हीं की रक्षित माँ के आंखों में पानी है। आज उन्हीं की रक्षित माँ के आंखों में पानी है। सुधाकर हेमराज का सिर कटकर बना निशानी है। सुधाकर हेमराज का सिर कटकर बना निशानी है। तुम भी तो उनके वंशज हो, भर लो जोश भुजाओं में। तुम भी तो उनके वंशज हो, भर लो जोश भुजाओं में। मातृभूमि के रक्षण हित भर दो जोश फिजाओं में। मातृभूमि के रक्षण हित भर दो जोश फिजाओं में। जागो भारत के लोग जगो, भारत का मान बढ़ाना है। जागो भारत के लोग जगो, भारत का मान बढ़ाना है। निज देश धर्म की रक्षा में प्राणों की भेंट चढ़ाना है। निज देश धर्म की रक्षा में प्राणों की भेंट चढ़ाना है। भारत माँ को श्रेष्ठ बनाकर बंधु प्रेम फैलाना है। भारत माँ को श्रेष्ठ बनाकर बंधु प्रेम फैलाना है। जागो भारत के युवा जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। इस मातृभूमि पर संकट है, मैं तुम्हें बताने आया हूँ। मेरी अगली कविता है, अलग अलग सी है दोस्ती न जाने क्या होगा। अलग अलग सी है दोस्ती न जाने क्या होगा। कदम कदम पर बनी है सलीब न जाने क्या होगा। अलग अलग सी है दोस्ती न जाने क्या होगा। कदम कदम पर बनी है सलीब न जाने क्या होगा। धरा पर गगन से उतरे हैं साए, न जाने मेरे देश का नसीब क्या होगा। धरा पर गगन से उतरे हैं साए, न जाने देश का नसीब क्या होगा। मेरी सांसें खुशबू उन्हीं की देती हैं। मेरी सांसें खुशबू उन्हीं की देती हैं। इससे बढ़कर वो मेरे करीब क्या होगा। इससे बढ़कर वो मेरे करीब क्या होगा। जिसकी सोच को चाटा है धन के दीमक ने, जिसकी सोच को चाटा हो धन के दीमक ने, वह आदमी ही नहीं अदीब क्या होगा। वह आदमी ही नहीं अदीब क्या होगा। धन के लोलुप गरीब दिखते हैं, धन के लोलुप गरीब दिखते हैं। नसीब उनका अमीर क्या होगा। कर लेकर कर से उछालते रोटी, कर लेकर कर से उछालते रोटी। ऐसे लोगों में तमीज क्या होगा। गंगा आज पहाड़ों के सिर पे बह निकले, गंगा आज पहाड़ों के सिर पे बह निकले। इससे बढ़कर मंजर अजीब क्या होगा। इससे बढ़कर मंजर अजीब क्या होगा। अलग अलग सी है दोस्ती न जाने क्या होगा। कदम कदम पर बनी है सलीब न जाने क्या होगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, बेहतर नहीं कहते। जाने क्यों लोग मुझे किस लिए बेहतर नहीं कहते। न जाने क्यों लोग किस लिए मुझे बेहतर नहीं कहते। मुझसे लाभ लेकर भी वे अक्सर नहीं कहते। ये तो भाग्य है वरना ये जमाने वाले, ये तो भाग्य है वरना ये जमाने वाले। मुझको मेरे ही समय का सिकंदर नहीं कहते। ये तो भाग्य है वरना ये जमाने वाले, मुझको मेरे ही समय का सिकंदर नहीं कहते। नेक सिद्धांत झुकने नहीं देते मुझको, नेक सिद्धांत झुकने नहीं देते मुझको। मेरे विश्वास को वो पत्थर नहीं कहते। मैं पढ़ा लिखा हूँ एहसास नहीं है उनको, मैं पढ़ा लिखा हूँ एहसास नहीं है उनको। वरना अपनी औकात से बाहर नहीं होने देते। मैं जैसे हूँ खुद हूँ वो समझते हैं मुझको, जैसे खुद हैं वैसा ही

0: वे समझते मुझको, वरना सबका इस तरह विश्वास न खोने देते, वरना सबका वे इस तरह विश्वास न खोने देते, न जाने मुझे किस लिए वे बेहतर नहीं कहते, मुझसे लाभ लेकर भी वो अक्सर नहीं कहते।
1: आप सुन रहे थे विजयनंद से उनका काव्य पाठ, और अब आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर पीयूष मिश्र से उनका काव्य पाठ।
2: मेरी पहली कविता का शीर्षक है बांसुरी को अधर दीजिए। जिंदगी को सफर दीजिए,

हर गली हर कली फूल में स्नेह का भाव भर दीजिए, पांव चलते रहें इसलिए, पांव चलते रहें इसलिए, हौसले को ही पर दीजिए, हौसले को ही पर दीजिए, जिंदगी को सफर दीजिए, मौन को स्वर मुखर दीजिए, शिव

दीजिए, लोग खिंचते चले आएंगे, लोग खिंचते चले आएंगे, बांसुरी को अधर दीजिए, बांसुरी को अधर दीजिए, मौन को स्वर मुखर दीजिए, जिंदगी को सफर

अंक सबको सिफर दीजिए, मौन को स्वर मुखर दीजिए। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है छंद सारे नजर नहीं आते। तुम

खोया यही जिंदगी का अजब सिलसिला है, यही जिंदगी का अजब सिलसिला है। हमें जो मिला है दुआ से मिला है,

0: से ये सुंदर किला है, उसी की कला से ये सुंदर किला है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पीयूष मिश्र से उनका काव्य पाठ। इसके साथ ही काव्य कौमुदी कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
2: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
1: ये आकाशवाणी का प्रयास

श्रुति मिश्रा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे मीराबाई की भक्ति रचना, और अब आपको सुनवा रहे हैं सूरदास की भक्ति रचना श्रुति मिश्रा के स्वर में।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए आज ही अपने फोन पर न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज को मीडियम वेव 295.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा का 271वां सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान उच्च सदन की उत्पादकता महज 39.17% रही। उच्च सदन में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तथा नीट प्रश्न पत्र लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के कारण उच्च सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच आज तक गतिरोध दूर करने पर सहमति न बन सकी। बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता को सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में

राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73% कोयले से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन घोटाला था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में खनिजों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी के माध्यम से किया गया है और पहले के विपरीत अब किसी ब्लॉक का आवंटन नामांकन के आधार पर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 65% से बढ़कर 85% हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 96% हो गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज राजस्व का केवल करीब 11% हिस्सा ही मिलता है, जबकि 88% हिस्सा तो राज्यों के पास चला जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि ये संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंधना द्रुमुक के डॉक्टर एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडी के सदस्य एल के सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रुमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना की निंदा की। सदन के नेता नड्डा ने कहा, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया।
अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र

के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधानों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही। उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एक नए संकल्प के साथ मिलेंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मॉनसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मॉनसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला था, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में

0: खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मानसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा वो इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्रवाई में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं रॉक स्टार फिल्म से AR रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज़ों में इरशाद कामिल के लिखा ये गीत। संगीत है AR रहमान।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लगान फिल्म से उदित नारायण, अलका याग्निक और सुखविंदर की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोलों को धुन दी है ए आर रहमान ने।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम। शुरुआत कर रहे हैं चंदू आत्मा की आवाज में इस भजन से।

0: इसके साथ ही सबरस कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अल कायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के

0: ली विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
1: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई। लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
4: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है। क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को। देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया। वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
5: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 520 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती

0: विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
1: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1,500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम

0: बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने अपोजिशन पर पार्लियामेंट में बहस से फरार अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया जबकि हुकूमत उसके लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट का रवैया जमहूरियत बिलखसूस पार्लियामानी जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि पार्लियामेंट बहस तबादला ख्याल और कानून साजी से मुतालिक कार्रवाई के लिए है लेकिन लगातार नारेबाजी और एहतजाज से मानसून इजलास में ऐवान की कार्रवाई मुतासर रही। जनाब रिजिजू ने कहा कि मानसून इजलास के दौरान 12 बिलों को मंजूरी दी गई लेकिन उनमें से सिर्फ एक पर दोनों ऐवानों में बहस हो पाई। उन्होंने ये भी बताया कि इस इजलास के दौरान लोकसभा की कारकर्दगी 19% और राज्यसभा की कारकर्दगी 39% रही।
1: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: जनाब रिजिजू ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि पहली मरतबा पार्लियामेंट में आए कई अराकीन पार्लियामेंट बार बार की रखनांदाजी के सबब पार्लियामेंट का तजुर्बा हासिल नहीं कर पाए। कोयले और कानकनी के वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पार्लियामेंट की जानिब से आज मंजूर किए गए कानकनी और मादनियात की तरक्की और इंजबात से मुतालिक तरमीमी बिल से किसी रियासत के हकूक सलब नहीं होंगे और किसी रियासत के महसूलाती ढांचे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब रेड्डी ने कहा कि इस बिल का मकसद बड़े मादनियात की पैदावार में इजाफा करना है। उन्होंने कहा कि मरकज हुकूमत के मजमूई अंदाज नज़र के जरिए कानकनी के शोबे में सरमायाकारी और रोजगार को बढ़ाने के सिलसिले में काम कर रहा है।
2: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आज़ादी से एक दिन कबल कल मुल्क से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे नशर होगा। अंग्रेजी में खिताब के बाद दूरदर्शन के तमाम चैनलों पर इसे हिंदी में भी नशर किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में दूरदर्शन पर खिताब के नशरी के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इलाकाई जबानों में इसको नशर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने मुतालिका इलाकाई नेटवर्क्स पर रात 9:30 बजे खिताब को इलाकाई जबानों में नशर करेगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि तिरंगा हर शहरी के फख्र की अलामत है और यह मुल्क के ज़बरदस्त इत्तेहाद की अक्कासी करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने शहरियों से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने घरों पर तिरंगा लहराने और इस मुहिम में शामिल दूसरों के साथ जुड़ने की अपील की। जनाब शाह ने सभी से तिरंगा के साथ अपनी सेल्फी हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने की भी अपील की। मुल्क की मजमूई बरामदात बशमूल साजो सामान और खिदमात इस साल जुलाई के महीने में 80.14 अरब अमरीकी डॉलर रही, जो 13.3% का साल बसाल इजाफा है। कॉमर्स की वजारत की जानिब से जारी किए गए आरजी आदाद शुमार के मुताबिक बरामदात के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी की क्यादत साजो सामान की खेप की वजह से रही, जो पिछले साल के मुकाबले 19.6% बढ़कर 44.24 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। मुल्क के साजो सामान की तिजारत के खसारे में पिछले महीने 31.5% का साल बसाल इजाफा होकर ये 15 अरब अमरीकी डॉलर तक जा पहुंचा। मौजूदा माली साल में अप्रैल से जुलाई के अरसे के दौरान साजो सामान की बरामदात मजमूई तौर पर 73.78 अरब अमरीकी डॉलर रहने का तखमीना है, जो कि सालाना बुनियाद पर 17% का इजाफा है। वहीं खिदमात की बरामदात का तखमीना पिछले महीने 35.89 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो कि पिछले साल 33.74 अरब अमरीकी डॉलर था। इस साल जुलाई के महीने में मजमूई दरामदात में 15.83% का इजाफा हुआ और ये पिछले साल की इसी महीने के 82.16 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 95.16 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने यौम आज़ादी से कबल कौमी राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के अहाते में आज माजूर अफराद के साथ खसूसी बातचीत की। बातचीत के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने माजूर अफराद के तजुर्बात सुने और उनकी हुसूलियाबियों की खूब तारीफ की। اس خصوصی تقریب نے

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शाइन 2026 युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं ICMR महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत।
1: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा देने और देश के युवाओं को विज्ञान तथा अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में ICMR लगातार महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में शाइन 2026, शाइन मतलब साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर्स का दूसरा संस्करण 11 और 12 अगस्त को देश भर में आयोजित किया गया। देश के 83 ICMR केंद्रों पर स्कूली बच्चों को प्रयोगशालाओं में जाने, वैज्ञानिकों से बातचीत करने और स्वास्थ्य अनुसंधान को सीधे तौर पर समझने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश के केलोंग से लेकर केरल तक और दमन दीव से लेकर नागालैंड तक देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 30,000 बच्चे इस पहल से जुड़े हैं और इसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर बहल, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर बहल, सबसे पहले शाइन 2026 के सफल समापन पर आपको ढेर सारी बधाई हो। दो दिनों तक ये चला, देश भर के 83 केंद्रों पर हजारों स्कूली बच्चों ने ICMR की प्रयोगशालाओं और अनुसंधान गतिविधियों को करीब से देखा। आपके लिए इस पूरे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव क्या रहा?
2: ये कार्यक्रम हमने पिछले साल शुरू किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हर युवा को, हर स्कूली बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए कि वो एक दिन एक साइंटिस्ट की तरह व्यतीत करे, कम से कम साल में एक बार। तो इससे प्रेरित होकर हमने ये प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस साल 30,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो मेरा अनुभव अपना रहा इसमें, जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे इम्प्रेस किया, वो ये था कि बच्चों की जिज्ञासा जो हमने देखी और जिस तरह के सवाल उन्होंने पूछ रहे थे मुझसे भी, क्योंकि मैंने भी पर्सनली दिल्ली में कुछ बच्चों से इंटरेक्ट किया, और जिस तरह के सवाल वो प्रयोगशाला में और जो एग्जीबिशन लगी थी उनमें और जो साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन में जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे, उसको पूछ के बहुत ही प्रसन्नता हुई के बच्चों में इतनी जिज्ञासा है, इतना कुछ वो जानना चाहते हैं और इतने अच्छी तरह से उन्होंने इसको लिया, और बहुत अच्छा फीडबैक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये हमें दिया है कि उनको इस प्रोग्राम से आने से उनको कितना अच्छा इस बारे में लगा और आगे उनकी सोच पे इसका क्या असर।
1: बच्चे यानी नेक्स्ट जनरेशन ही हमारे देश के असली भविष्य है। डॉक्टर बहल, क्या बच्चों ने कोई ऐसा सवाल पूछा

0: जो आपको अभी तक याद है?
1: एक्चुअली तीन बच्चों ने मुझसे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे लगा कि कोई बड़ा साइंटिस्ट भी पूछ सकता है ऐसे सवाल, इतने अच्छे सवाल थे। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि हम आईसीएमआर कैसे आगे आने वाले किसी भी महामारी के लिए तैयारी कर रहा है, कैसे हम जल्दी वैक्सीन बना पाएंगे, कैसे हम जल्दी कोई डायग्नोसिस बना पाएंगे, इसके लिए आईसीएमआर क्या कर रहा है। तो इतना अच्छा सवाल था क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ये, और आईसीएमआर इस एरिया में इतने अच्छे काम कर रहा है पहले से ही। तो मैंने अच्छे से बच्चों को इस बारे में समझाया कि किस तरह हम महामारियों को और कोई भी आने वाली बीमारी को, नई बीमारी को किस तरह से ढूंढेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हमारे देश के होने वाले नागरिक, जो विकसित भारत के शायद पहले नागरिक होंगे, वो बच्चे इस तरह का बहुत ही जिम्मेवारी वाला सवाल पूछा हमने। इसी तरह एक बच्ची ने पूछा कि वायरस और कैंसर का क्या रिलेशनशिप है। और जैसा आपको पता है कि अभी ही हाल ही में HPV वैक्सीन लॉन्च हुई है, और इतना मुझे अच्छा लगा कि बच्ची पूछ रही है कि कैसे वायरस जो है वो कैंसर करता है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर उसने ये भी पूछा कि क्या कैंसर की कोई नई तरह की वैक्सीन बन रही है। तो मुझे ये सब चीजें तो कटिंग एज है और बच्चों की ऐसी जिज्ञासाएं हैं, तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा और उनको इसका जवाब देने में मुझे अति प्रसन्नता हुई कि किस तरह से हम कैंसर को, जैसे सर्वाइकल कैंसर या हिपैटिक कैंसर को वैक्सीन के जरिए हम रोक सकते हैं, किस तरह से जो इम्यूनिटी हमारी है, इम्यून सिस्टम है, वो हमारे को कैंसर से बचाता है, और हम किस तरह से उसके ऊपर नए नए ट्रीटमेंट्स कैंसर के ला रहे हैं, और पूरे
0: जी
1: विश्व में कैंसर पे किस तरह का रिसर्च हो रहा है, ये बताने का मुझे मौका मिला ऐसे प्रश्न को पूछ सुनने से। और भी कई तरह के क्वेश्चन मैंने उनके देखे जब मैं प्रयोगशाला में गए और वहां पर पूछ रहे थे कि जिस तरह मस्कीटो का लाइफ साइकिल है, इसका क्या मतलब होता है, क्या ये सिर्फ जो अंडे हैं ये सिर्फ पानी में पनपते हैं, उस तरह उन्होंने देखा कि किस तरह से ये होता है। तो ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा है।
0: बिल्कुल। आपसे अगला सवाल हमारा ये है कि शाइन में कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों के साथ सीधे बातचीत का अवसर मिला। क्या आपका मानना है कि ऐसी पहल से बच्चे साइंस को केवल अब एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि करियर और नेशन बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना शुरू कर चुके हैं?
1: जब किसी चीज को बच्चा देखता है और एक अपने स्कूल में एक विषय की तरह देखता है, एक किताब पढ़ के देखता है और कुछ छोटे मोटे प्रयोग करता है, लेकिन जब वो आके ये देखता है कि किस तरह से रिसर्च जो चीजों को चेंज कर रही है, कोई नई चीज, नया डायग्नोस्टिक या नई वैक्सीन बनाने में मदद कर रही है, तो उस एज पे, उसके दिमाग पे उसका एक बहुत अच्छा और बहुत गहरी छाप पड़ती है, और उससे उसकी ना सिर्फ जिज्ञासा बढ़ती है बल्कि उसको ये भी समझ आने लगता है कि ये भी एक ऐसा चीज है जो हम कर सकते हैं। यही नहीं कि हम सिर्फ डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या कुछ और इस तरह की अपने प्रोफेशन करें, बल्कि हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं।
0: और इस काम में आईसीएमआर, जैसा कि आप बता रहे हैं, बच्चों को मदद करने के लिए बेहद तत्पर है। डॉक्टर राजीव बहल, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जिनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्रेसिजन मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ बड़ी तेजी से स्वास्थ्य क्षेत्र को बदल रहे हैं। क्या एआई और नई टेक्नोलॉजीज के आने से आने वाले सालों में भारत के हेल्थ रिसर्च को कोई इसमें फंडामेंटल चेंजेस, बदलाव आ सकता है?
1: बदलाव आ सकता है और अवश्य ही आएगा, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजीज भारत ने अपने आप भी विकसित किए हैं, अपनी हमारी जिस तरह की कैपेसिटीज डेवलप हुई हैं इस देश में पिछले सालों में, जब से हम आजाद हुए हैं तब से हम अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले एक दशक में खास तौर एक तरह का कॉन्फिडेंस जो आया है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ इसको यूज करेंगे बल्कि हम इसमें अग्रसर रहे, जिस तरह से भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में उदाहरण के तौर पे यूपीआई को यूज करके जिस तरह से डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल उसमें अपना सिक्का जमाया पूरे विश्व में, इसी तरह से भारत डिजिटल हेल्थ में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से

0: हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेंगे, ये ऑलरेडी हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह जीनोमिक्स इंडिया में हो रहा है, ऐसा इस तरह की चीज जो आज हम कर रहे हैं, वो हम वही सब कर रहे हैं जो विश्व में कहीं भी ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, वो हमारे पास भी उपलब्ध हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज भी स्वास्थ्य से एक तरीके से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, और क्लाइमेट चेंज के कारण नई तरह के की हेल्थ चैलेंजेस, इन्फेक्शस डिजीजेस का खतरा बढ़ रहा है। आईसीएमआर इन इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स के लिए अपनी रणनीति में, खासतौर पर रिसर्च की रणनीति में, किस तरीके की बदलाव ला रहा है या क्या तैयारी कर रहा है?
0: क्लाइमेट चेंज इसी रफ्तार से होता रहा, इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो ये हमारे लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स करेगा। हेल्थ उसमें से एक प्रमुख प्रॉब्लम है जिसको क्लाइमेट चेंज से हमें देखें तो बहुत मुश्किल होने वाली है अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहा। तो रिसर्च क्या कर रहा है और रिसर्च इस बारे में क्या हम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने ये एस्टैब्लिश किया है कि इस तरह की वार्मिंग से, इस तरह के क्लाइमेट चेंज से क्या असर आएंगे और क्या असर हो रहे हैं। जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीजेज में अब डेंगू जिसको कहा जाता है, जो बुखार आता है डेंगू होता है,
1: जी
0: वह बीमारी जो है वो उन इलाकों में भी बढ़ रही है जहां पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे जो वेक्टर है डेंगू का, जो मच्छर है, वो वैसे वैसे उसका प्रकोप बढ़ रहा है। इसी तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे कि कार्डियक डिजीज और हाइपरटेंशन, ये बीमारियां जो हैं इनका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है जब क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसे ही जो किडनी फेलियर है देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये भी डिहाइड्रेशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी इसका प्रभाव रहता है। तो पहली चीज तो हम ये कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हो रहे हैं उसको समझ के वो हम सामने लाए। जो हमारी रणनीति है वो है इनकी एमिलियोरेशन, यानी कि इनको किस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशंस को रखते हुए इनको किस तरह से हम इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा काम करने का समय है, क्या हम उसमें बदलाव ला सकते हैं? क्या हम भरी दोपहर में लोगों को बाहर काम ना करना पड़े इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस तरह के घर बना सकते हैं कि जो उस तरह से गर्म ना हो जैसे कि हमारे ऑर्डिनरी घर होते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं?
1: आप मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि उपचार के साथ साथ बचाव यानी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पर भी आईसीएमआर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसके बारे में भी लोगों को जागरूक बना रहा है।
0: बिल्कुल, ये इंटरवेंशंस जो प्रिवेंशन के हैं और हेल्थ के जो दुष्प्रभाव क्लाइमेट चेंज के हैं उससे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसका इलाज, जैसे अगर हीट स्ट्रोक और दूसरी तरह की जो तकलीफें होती हैं उसका इलाज करना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि हम किस तरह से एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको रोकें और दूसरा के उसके प्रभावों को कम करें।
1: डॉक्टर राजीव बहल, यदि शाइन में शामिल कोई 15-16 साल का बच्चा ये कार्यक्रम सुन रहा है और आपसे ये सवाल पूछता है कि मैं अभी से वैज्ञानिक बनने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप उसे क्या सलाह देंगे?
0: तो मेरी सबसे पहली सलाह तो ये है कि अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, उसको सोचिए। ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ सब्जेक्ट को याद करना है, ये सोचिए कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं अगर बच्ची है तो वो क्यों होता है, इसको किस तरह से हम सोचें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको इन डेप्थ उसको जाके समझ के और कोशिश करें जानने की कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या है और उसको कैसे साइंटिस्ट ने पहचाना। दूसरी चीज ये है कि अपने मन को खुला रखें। अपने को इस वक्त आप 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं, आप अपने को एक क्यूरियस स्टूडेंट के रूप में, जैसे कि आपने देखा हमारा मैस्कॉट है डॉक्टर क्यूरियो, और उसका नाम ही हमने इसलिए रखा है कि यह आपकी क्यूरियोसिटी को आप रखें। और आज आपके पास अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने टीचर्स के अलावा, आपके पास और भी बहुत संसाधन हैं, जैसे कि आप एआई अपने किसी पेरेंट्स की मदद से या अपने किसी बड़े की मदद से भी एआई के

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये है अगस्त का महीना और अगस्त का महीना जोश खरोश से भरा रहता है। हर तरफ उमंग, उल्लास और खुशियों का माहौल, और इस माहौल में दो नारे सबसे ज़्यादा गूंजते हुए नज़र आते हैं, सुनाई पड़ते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और इस जयकारे के साथ हम अपने आज़ादी का जश्न मनाने वाले हैं। बस दो ही दिन या कह ले सिर्फ एक दिन दूर है इस जश्न से, तो क्यों ना अभी से रंग जाए इस बसंती चोले में और सब मन सब जुबान यही कहे वंदे मातरम।

किसी ने क्या खूब कहा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त जी की इस रचना ने आज़ादी के संघर्ष के समय में बहुत जान फूंक दी थी बुझे हुए दिलों में, और लोग एक साथ एक आवाज़ में आज़ादी की मांग के लिए नारों के साथ आगे बढ़ गए और देश आज़ाद हुआ। परिणाम, हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने नियमों पर चल रहे हैं और अपने देश के शासन को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज़ादी के इस पर्व के लिए जिन लोगों ने इतने बलिदान दिए, इतने अपने जीवन का सर्वस्व लुटा दिया, उन सभी को प्रणाम करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम इस आज़ादी के जश्न को मनाएं। और ये ना भूलें कि भारत एक है और भारत की विभिन्नता में एकता अखंड है।

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे।

देखेंगे हम अब जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। आज वो दिन आखिर आ ही गया, हमारी जमी हमारी, हमारा आसमां हमारा, और हमने फतेह की है आसमान पर भी और जमी पर भी अपना परचम लहराया है। तो उन शहीदों की जो सपने थे उनको साकार करने की बारी अब हमारी, उन्होंने जो सपना आज़ादी का देखा वो हमें दिला कर गए, और इस आज़ादी को बरकरार रखना और इस देश की आबरू शान और शौकत को बना के रखना हमारी जिम्मेवारी, और हम इस जिम्मेदारी को कितना निभा पा रहे हैं यही अवसर है हमें अपना अवलोकन करने का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से दीजिए अपनी रेडियो सखी शिप्रा श्रीवास्तव को इजाजत, नमस्कार। लेकिन उसके पहले एक बात कहना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं उनके बारे में अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत हमें ज़रूर कराएं फेसबुक के माध्यम से, और अपने रेडियो सेट के अलावा अपने फ़ोन पर भी आप हमें सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। तो आज ही डाउनलोड करिए अपने फ़ोन

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं बांसुरी वादन। कलाकार हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो आइए सुनते हैं बांसुरी पर राग भोपाली, कलाकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया।

अभी आप बांसुरी पर राग भोपाली सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनिंदो चटर्जी और बांसुरी पर थे रूपक कुलकर्णी। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच